0: दोस्तों, हम सभी एक मुसाफिर की तरह ही यहाँ पर हैं। बस अपने अच्छे कर्म करते रहिए और चलते रहिए।
1: मुसाफिर हूँ।
0: किशोर कुमार की आवाज में परिचय फिल्म से सुनते हैं ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में फिल्म राम तेरी गंगा मैली से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, सब कुछ उस प्रभु के हाथ में है। अगर वो बनाना चाहता है तो बनाएगा।

और अगर बिगाड़ना चाहता है तो बिगाड़ेगा, हम तो केवल कठपुतली मात्र हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अली बाबा और 40 चोर फिल्म से ये गीत।

0: 90 वर्षों की वो मधुर गूंज, अनगिनत आवाजें, अनगिनत एहसास, संगीत, संस्कृति और यादों से सजा आकाशवाणी का सुनहरा सफर,
1: जहां हर कहानी में छुपा है एक दौर, हर आवाज में बसता है अपनापन,
0: जिसमें मिलिए आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानिए रेडियो जगत के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिन्होंने अपनी आवाज और प्रतिभा से पीढ़ियों के दिलों को जोड़ा।
1: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग।

दोस्तों, भोर सुहानी से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पांचवीं तिथि, तदनुसार 26 मई 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण। 6:44 का समय रहेगा श्री रामचरितमानस गान का।

7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात। आज सवेरे इस कार्यक्रम का समय रहेगा 7:30 पर।

सुबह 10:10 का समय रहेगा कार्यक्रम विश्व दर्पण का, दिल का मेल बॉक्स। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 10:30 पर। सुबह 11:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम तस्वीर, झांसी, उत्तर प्रदेश।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड वुमेन एंड फैमिली शो घर आंगन, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह दोपहर 12:10 पर। कलाकार बेमिसाल, इस कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 1:10 पर। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देशभर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोप वे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Nina Rakel. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. The foreign ministers of Australia and Japan arrived in Delhi yesterday. U.S. Secretary of State Marco Rubio had arrived for a four-day visit to India on the 23rd of this month. More from our correspondent.
2: The foreign ministers' meeting this year comes at a time of global uncertainty and West Asia crisis. The Quad, comprising India, the U.S., Australia and Japan, has emerged as a key grouping largely focusing on peace, security and stability in the Indo-Pacific region. The Quad nations have come together with a commitment to work as a force for global good and to support an open, free and inclusive Indo-Pacific that is prosperous and resilient. Quad has adopted a positive and practical agenda focusing on

मंगल की इस प्रभात सुबह के 6:11 और ठीक 33 सेकंड हुए हैं। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर मुक्ता है आपके साथ। कहते हैं बजरंग बली सभी गुणों और निधियों के दाता हैं। संत कहते हैं कि श्री राम की भक्ति प्राप्त करने का सबसे सुलभ मार्ग श्री हनुमान की शरण में जाना है। तो फिर आइए मंगल की इस प्रभात करते हैं अर्पण श्री हनुमान के चरणों में। सुप्रभात।

सबही पहर तुम्हारी आसा, मन वचन कर्म कहे रैदासा। भक्त कवि रैदास की अनन्य भक्ति और ईश्वर के प्रति एक भक्त का पूर्ण समर्पण भाव कि प्रभु मुझे हर पहर आपकी ही आशा है, मुझे आस भी केवल आप ही से है, मेरा हर वचन हर कर्म मेरा मन सभी में केवल आप ही बसे हैं।

0: श्रद्धा के, भक्ति के, समर्पण के ये कुछ क्षण जो जीवन में अर्पण के भाव को करते हैं और सुदृढ़। अर्पण का ये भाव रोजाना हम आपके लिए लेकर आते हैं सुबह 6:10 पर। जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन।

0: के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

6:28 आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मुक्ता के साथ ये है अर्पण। जो हो चुका वो अच्छे के लिए हुआ और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। श्रीमद् भगवद् गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि ईश्वर की योजना को समझ पाना इंसान की सीमित बुद्धि के वश में नहीं है, इसीलिए हर हालात में एक परमपिता परमात्मा पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ते रहना है।

हमारे भौतिक ज्ञान का आधार हमारा मन होता है। जो मन को अच्छा लगे वो अच्छा है, और जो बुरा लगे वो बुरा। हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का आधार हमारी आत्मा है, जो हमारे हर अच्छे बुरे को जानती है। सच्चा ज्ञान वो है जो मन को आत्मा के साथ जोड़ दे, जिस ज्ञान से मन और आत्मा साथ नहीं मिलती वो तो बस ज्ञानी हो जाने का वहम है, और इसी से मन में अहंकार पैदा हो जाता है, और जहां अहंकार है वहां ज्ञान हो ही नहीं सकता।

तेरी जोत में जोत आई, तेरी जोत में जोत समाई, गुरु ज्ञान से मुक्ति पाई, संतों की संग प्रीत निभाई। अर्पण का ये भाव जीवन में हमेशा बना रहे, सत्य का ये ज्ञान हमेशा साथ रहे, कि जीवन आया है तो जीवन जाएगा भी, मृत्यु आई है तो वो किसी नए के आगाज का ही संदेश दे रही है।

6:44 और ठीक 36 सेकंड हो चले हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब समय है श्री रामचरितमानस के पाठ का। आइए मिलकर श्रवण करते हैं।

पूरी अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास छाया है। माता के आग्रह पर जगत के स्वामी ने बाल रूप के रुदन से जननी की शंकाएं दूर कर दी हैं। शिशु के रोने की अत्यंत प्रिय ध्वनि सुनकर अन्य रानियां तथा दास दासियां हर्षित हो दौड़ पड़ी। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर महाराज दशरथ को परम आनंद हुआ। राजप्रसाद वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि से गूंजने लगे। जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को सोना, गौएं, मणिमाणिक आदि दान स्वरूप भेंट किए गए। जगह जगह तोरण द्वार आदि बने हैं। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है। स्त्रियां सोने के कलश तथा थाल में मंगल द्रव्य लेकर राजमहल में प्रवेश कर रही हैं। घर घर बधावे बज रहे हैं। कैकेयी तथा सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। पूरी नगरी इस प्रकार सजी धजी है जैसे सारे श्रृंगार करके रात्रि स्वामी से मिलने आई हो, किंतु सूर्य का प्रकाश देखकर लजा गई हो। राजमहल वेद पाठ की कोमल ध्वनि से गूंज रहा है।

6:54 और ठीक 21 सेकंड हो चले हैं। अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का पाठ। आइए अब संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में समाचार सुने।

0: रिपब्लिक ऑफ कांगो अथ युगांडा देशेषु इबोला संक्रमणम् अंतर्राष्ट्रीय चिंतायाः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालत्वेन घोषितम्। एतदनन्तरं नगर विमानन महादेशालयेन विमान विपणीनां कृते एका मानक संचालन प्रक्रिया प्रसारिता। अत्रावधेयस्पदं वर्तते यत् विमानेषु अनिवार्य रूपेण पदक्षेपाः विहितव्याः भविष्यन्ति। यथा इबोला संकटं दृष्ट्वा यदि कस्यापि यात्रिणः ज्वरः, दौर्बल्यं, पीड़ा, शिरोवेदना, कंठदाहः, वमनम् इत्यादीनि लक्षणानि दृश्यन्ते तर्हि सः सद्यः एव विमान कर्मचारिभ्यः आगमानन्तरं चिकित्सा विभागेभ्यः सूचयेत्। महानिदेशालयेन स्पष्टीकृतं यत् भारते आगमनात् एकविंशति दिनानां मध्ये यदि एतादृशानि लक्षणानि उत्पद्यन्ते तर्हि यात्रिणः निर्दिष्ट चिकित्सालयेभ्यः चिकित्सा साहाय्यं प्राप्नुयुः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य यावत् मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, विदर्भ क्षेत्रेषु उष्ण स्थितिमुद्दिश्य रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता। विभागेन आगामी द्वित्री दिनेषु हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्येषु तीव्र उष्ण तरंगस्य पूर्व सूचना प्रख्यापिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य यावत् छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड राज्येषु अपि भवितुं संभाव्यते। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः अवदत् यत् सर्वकारः योग प्राकृतिक चिकित्सा माध्यमेन कृत्स्नेहि देशे निवारक स्वास्थ्य सेवाः सुदृढीकरोति। नवदिल्ल्यां आयुष मंत्रालयस्य संसदीय परामर्शदात्री समित्याः चतुर्थ उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्री जाधवः अवचत् यत् योगः, प्राकृतिक चिकित्सा च समग्र निवारक स्वास्थ्य सेवायै भारतस्य शाश्वतं योगदानं वर्तते। अस्मिन् उपवेशने भारते योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रस्य विस्तारे, स्वास्थ्य संवर्धन सम्बद्धेषु प्रयासेषु तथा च पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनां वैश्विक प्रसारे च विस्तरेण चर्चा अभवत्। सः अग्रे सूचितवान् यत् सम्प्रति विश्वस्य 90+ देशेषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः समारोहः आचर्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन

की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह का 29 मई को गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रूपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोमिरल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। रिजर्व बैंक ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में आरबीआई शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हर फूल खिलने से पहले कली बत्ता है। जनाब, प्रकृति हर तरीके से देती है इशारा, सिखाती है जीवन जीने की कला। सफलता की खुशबू का फूल भी कली के धैर्य और विश्वास से ही खिलता है। 7:11 और ठीक 14 सेकंड। गोल्ड सुप्रभात है आप सबको मंगल की मुक्ता के साथ।

0: जी हाँ, मैं तो अक्सर ये बात कहती हूँ कि जिनके पास गम और खुशी बांटने वाले लोग हैं ना, बहुत किस्मत वाले हैं वो लोग। और ऐसे साथ को संभाल कर रखना भी होता है बहुत जरूरी। हाँ, फिलहाल कुछ चीजें ऐसी हैं जो बांटी नहीं जा सकती। अब पूछिए क्या। जो बाहर गर्मी है वो आप ही झेल सकते हैं, आपके साथी को अपनी गर्मी झेलनी है। आज के तापमान की अगर बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। सूर्योदय हुआ था सुबह 5:25 पर और सूर्यास्त का समय है शाम 7:11 का। वायु की गुणवत्ता का स्तर भी अनहेल्दी कैटेगरी में ही जा रहा है, तकरीबन 166 है। और वैसे भी बहुत तेज धूप हो तो बाहर निकलने से बचना ही चाहिए। हालांकि मौसम विभाग और अब जो प्रिडिक्शन हम देख रहे थे आने वाले 10 दिनों की, उसमें शुक्रवार को मौसम अच्छा हो रहा है। जी हाँ, 40 से नीचे दिख रहा है पारा, लेकिन फिलहाल ये जो गर्मी है इससे बचना है तो करना क्या है ये।
1: ठंडे ठंडे पानी से

0: जी हाँ, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्रभात को गोल्ड सुप्रभात बनाते रहिए। जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जी हाँ, आकाशवाणी का 90 वर्षों का इतिहास और 90 वर्षों में आपको मनोरंजन के साथ साथ जानकारी भी देता रहा आकाशवाणी, इसीलिए इन्फोटेनमेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसा ही साथ आपका और हमारा हमेशा बना रहे।

0: नमस्कार,
1: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग।
2: मुझे चलते जाना है।
1: पर्यटन से तात्पर्य मनोरंजन, ज्ञान वर्धन या आराम के लिए यात्रा करने से है। ये नई जगहों को जानने और विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव करने का एक शानदार माध्यम है। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी नीना अराकल मैथ्यू। नमस्कार नीना।
3: हेलो मनोज, इट्स ऑफिशियली वन ऑफ दोज स्टे इनसाइड काइंड ऑफ डेज, बट दे से वर्क इज गॉड, गॉड इज वर्क, एंड स्टेपिंग आउट समटाइम्स बिकम्स एब्सोल्युटली इनएविटेबल। The weather might be too warm, but your day doesn't have to be. Let's make today incredible and stay hydrated to keep our mind and body cool to tackle the rising mercury as we welcome all our listeners tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashwani network. We bring to you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we give the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day. That is 26th of May 2026. Let's begin with the headlines, Manoj.
1: जी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
4: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है

0: और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है, जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, वायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: President Draupadi Murmu will undertake a three-day visit to Sikkim beginning today. During her stay in Sikkim, she will attend various events and visit several places. The Sikkim government has made elaborate arrangements to welcome her. We have a report.
2: President Draupadi Murmu will visit Namgyal Institute of Tibetology today on the first day of her visit to Sikkim. President Murmu will also visit the Orchidarium and flag of pink buses for the women in Gangtok. Tomorrow, she will visit the Nathula Pass and also attend the convocation of the Sikkim University at Gangtok. Nearly 14,000 degrees will be awarded in the ceremony. On the last day of her visit, President Murmu will present the President of India's Police Colour Medal to the Sikkim Police at Paljor Stadium in Gangtok. Manas Pratim Sharma, Akashvani News, Gangtok.
3: जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोप वे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोप वे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं।
1: Directorate General of Civil Aviation, DGCA, has issued a standard operating procedure for airlines following the World Health Organization's declaration of the Ebola disease outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda as a public health emergency of international concern. The DGCA said airlines operating connectivity with Uganda and Congo are required to ensure mandatory filing and collection of self-declaration forms before passengers disembark. More from our correspondent.
4: DGCA has made it compulsory for airlines to broadcast specific health announcements during flights to help identify possible Ebola cases early and prevent the spread of the disease. Passengers have been asked to immediately report symptoms such as fever, weakness, muscle pain, headache, sore throat, vomiting, diarrhea or bleeding to the airline crew members as well as immigration or medical authorities upon arrival. The DGCA further stated that if symptoms develop within 21 days of arrival in India, travelers should seek medical assistance from designated hospitals and inform the airport health office. For suspected cases on board an aircraft, the SOP directs that the passenger should be relocated to the rear of the aircraft and, if possible, three rows in front and adjacent seats should be kept vacant. Airlines have also been instructed to maintain adequate stock of triple layer masks, disposable gloves, PPE kits, hand sanitizers and biohazard disposal bags. With Anand Kumar, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
3: सरकार ने कल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपूर्ति और वितरण विनियमन संशोधन आदेश 2026 अधिसूचित किया। ये संशोधन उन घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को अतिरिक्त राहत और सुविधा प्रदान करता है जो बाद में पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संशोधित प्रावधानों के तहत उपभोक्ता पीएनजी कनेक्शन प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर एलपीजी कनेक्शन समाप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि उपभोक्ता पीएनजी रहित क्षेत्र में एलपीजी कनेक्शन को भविष्य में फिर से शुरू करने के लिए एक ट्रांसफर वाउचर प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रालय ने बताया कि यह संशोधन उन उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत और लचीलापन प्रदान करता है जो बाद में ऐसे क्षेत्रों में स्थानांतरित हो सकते हैं जहां पीएनजी का बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं हो सकता है।
1: India Meteorological Department, IMD, has issued a yellow alert for heat wave conditions today in Delhi. Heat wave conditions in the national capital are expected to continue till tomorrow, with maximum temperatures remaining between 44 and 46 degrees Celsius. Severe heat wave conditions are likely also today in places over

0: हरियाणा, चंडीगढ़, ईस्ट मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ एंड वेस्ट राजस्थान. सिमिलर वेदर कंडीशंस विल परसिस्ट ड्यूरिंग द डे इन पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, कोस्टल आंध्र प्रदेश, ईस्ट राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तराखंड एंड वेस्ट मध्य प्रदेश.
1: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से राहत नहीं है. कई जगहों पर तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है. बुंदेलखंड सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में है. लगभग हर जिले में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है. बांदा में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो देश के सबसे गर्म स्थानों में से एक है. इस बीच राज्य में बिजली की मांग ने नया रिकॉर्ड बनाया है. उत्तर प्रदेश में कल 31,824 मेगावाट बिजली की अधिकतम मांग दर्ज की गई, जो राज्य के साथ साथ देश में अब तक किसी भी राज्य की सबसे अधिक बिजली आपूर्ति मानी जा रही है.
0: The government has debunked a digitally altered video of the Prime Minister Narendra Modi in which a claim was being made that all Aadhaar card holders will get electric bicycles. The fact-check unit of the Press Information Bureau, PIB, clarified that the Prime Minister and the government have not made any such announcement. The unit informed that the circulating video is fake and AI-generated. PIB has urged citizens to be aware of such fake news and advise them to always verify information through official sources.
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल.
2: खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से. भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया. अविका सिंह ने 4 गोल किए. प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे. 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा. और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा. मैच धर्मशाला में शाम 7:30 से शुरू होगा. इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा. उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे. पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी. पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्तो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी.
1: और अब रुक करते हैं महानगरों के समाचारों का. पहले दिल्ली की खबर. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स के माध्यम से इस महीने की 6 से 23 तारीख के बीच दिल्ली के सभी 13 जिलों में लगभग 2,65,000 लोगों तक राहत पहुंचाई गई है. श्रीमती गुप्ता ने बताया कि लोगों को गर्मी और निर्जलीकरण से बचाने के लिए लगभग 1,13,900 लीटर ठंडा पीने का पानी भी वितरित कराया गया. दिल्ली की एक और खबर. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर दोनों राज्यों के आपसी सहयोग को और मजबूत करने तथा विकास के विभिन्न आयामों पर विस्तृत चर्चा की. श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दोनों राज्यों का सतत विकास और परस्पर सहयोग विकसित भारत के साझा लक्ष्य को गति प्रदान करेगा.
0: News from Chennai. The Indian Institute of Technology Madras launched an advanced maritime research facility aimed at strengthening indigenous ship design, ocean engineering research and hydrodynamic testing capabilities in the country. Built with 4.5 crore rupees in CSR funding from Mazagaon Dock Shipbuilders Limited, a defence public sector undertaking under the Ministry of Defence. The facility is expected to support research linked to marine vehicles, naval technologies and offshore systems. The new circulating water tunnel facility inaugurated at IIT Madras Satellite Campus Discovery in Thayur near Chennai recently is designed to provide a stable uniform flow test section for advanced hydrodynamic investigations involving ship models, propellers, bluff bodies and underwater structures. The institute said the facility is also expected to improve research and teaching डिपार्टमेंट ऑफ ओशन इंजीनियरिंग।
1: और अब मुंबई महाराष्ट्र की खबर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिया है कि वे अपनी सेवाओं की समीक्षा करें और उन्हें सरकारी प्रक्रिया पुनर्रचना GPR फ्रेमवर्क के तहत लाएं ताकि जनता को सरल, त्वरित और पारदर्शी सेवाएं मिल सकें। मुंबई में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सरकारी सेवाओं में अनावश्यक प्रक्रियाओं, कागजी कार्रवाई और चरणों को कम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केवल सेवाओं की संख्या बढ़ाने के बजाय उनकी गुणवत्ता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। महाराष्ट्र मुंबई की एक और खबर। महाराष्ट्र के मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री नीतेश राणे ने कहा कि राज्य सरकार ने इस्तेमाल न होने वाली नावों और जहाजों की रिसाइकिलिंग के लिए एक प्रभावी नीतिगत ढांचा तैयार करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन को बढ़ावा देना और स्क्रैप प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व अर्जित करना है। मुंबई में राज्य सचिवालय में जहाज रिसाइकिलिंग पर आयोजित एक बैठक में श्री राणे ने कहा कि सेवा मुक्त जहाजों की रिसाइकिलिंग के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करना अब समय की मांग है।
0: कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया इनॉग्रेटेड द 108 एम्बुलेंस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इन बेंगलुरु टू स्ट्रेंथन द स्टेट्स इमरजेंसी हेल्थ केयर सिस्टम। आरोग्य कवच 108 फ्री एम्बुलेंस सर्विस ऑपरेट्स अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन ऑल द 31 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका। द लॉन्च ऑफ द गवर्नमेंट ओन्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन मेकिंग रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पॉसिबल बाय ब्रिंगिंग ऑल द हेल्पलाइन under one unified platform. This has integrated 108 Arogya Kavach helpline with 104 Arogya Sahayavani, 112 emergency response support system, 14,416 telemanas, 181 women helpline and 1098 child helpline.
1: अब कोलकाता पश्चिम बंगाल की खबर। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नीलम मीणा को मनोज कुमार अग्रवाल की जगह पश्चिम बंगाल का नया मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति को निर्वाचन आयोग ने मंजूरी दी है। गौरतलब है कि नए मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया तब शुरू हुई जब मनोज कुमार अग्रवाल ने राज्य के मुख्य सचिव का पदभार संभाला। कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति मुख्य सचिव के पद पर रहते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता।
0: न्यूज फ्रॉम हैदराबाद। तेलंगाना गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला मेट विद ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर्स ऑफ द 2025 बैच एट लोक भवन यस्टरडे। द ट्रेनिंग ऑफिसर्स आर currently undergoing training in Telangana. The governor advised the young officers on important values and responsibilities. He emphasized that they must maintain the highest standards of integrity and commitment. The governor also stressed the importance of inclusive development and good governance. He encouraged the trainee officers to stay connected with the common people they will serve. They should discharge their duties with sincerity and compassion, he advised.
1: और अब महानगरों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल जानते हैं। दिल्ली में आज लू चलने की संभावना है। यहां का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज आसमान साफ रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आज आंशिक रूप से बादलों के घिरे रहने और बिजली गिरने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं नीना से।
0: यस मनोज, Chennai is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 30 degrees Celsius and the maximum will be around 40 degrees. Bengaluru is expected to have partly cloudy sky with one or two spells of rain or thundershowers. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and maximum will be around 33 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with the possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The temperature will hover between minimum of 30 degrees and a maximum of 42 degrees Celsius.
1: और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र।

0: था। आज 26 मई है। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 1889 में एफिल टावर का पहला लिफ्ट आधिकारिक तौर पर जनता के लिए खोला गया था, जिससे लोगों को पेरिस के इस आधुनिक अजूबे की ऊंचाई से शानदार नजारा देखने का मौका मिला।
1: In 1897, Bram Stoker's famous gothic horror novel Dracula was first published in London on this day. The novel defined modern vampire fiction by cementing classic tropes such as vulnerability to sunlight, crosses and garlic into popular culture.
0: 1950 में आज ही के दिन ब्रिटेन में पेट्रोल की खरीद पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय से लागू की गई राशनिंग को आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था।
1: द बीटल्स इन 1967 रिलीज अ रेवोल्यूशनरी स्टूडियो एल्बम STT.STT। Pepper's Lonely Hearts Club Band Pepper's Lonely Hearts Club Band in the United Kingdom permanently changing the landscape of modern rock and pop music.
0: आज ही के दिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में आधिकारिक तौर पर शपथ ली थी।
1: In 2014, World Health Organization confirmed that Ebola has reached Sierra Leone.
0: 2020 में आज ही के दिन जेके रॉलिंग ने बच्चों की कहानी द इकाबोग को ऑनलाइन किस्तों में प्रकाशित करना शुरू किया। ये कहानी लॉकडाउन के दौरान बच्चों के मनोरंजन के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराई गई थी। और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है।
1: Today we remember Jimmy Rogers, the father of country music. Born on September 8, 1897, Rogers rose to fame in the late 1920s with a sound that was unlike anything audiences had heard before. His distinctive rhythmic yodeling became his signature, earning him nicknames like the Singing Brakeman and the Blue Yodeler. What set Rogers apart was that his popularity came not from endless tours, but from his recording some of the earliest in country music history. Those records captured the spirit of rural America and laid the foundation for generations of artists who followed. His influence reached beyond country, touching blues and inspiring musicians across genres. Though his life was tragically short, he passed away in 1933. His legacy remains monumental. Jimmy Rogers didn't just sing songs. He created a new musical language, one that still echoes in the heart of country and roots music today. From the railroads to the recording studio, Jimmy Rogers gave America its first true country star, and his voice continues to yodel through history. Let's listen to this song.

0: आज पुण्यतिथि है के विक्रम सिंह की। उनका जन्म 26 मई 1938 को हुआ था। वे एक भारतीय राजनीतिज्ञ और फिल्म निर्माता थे जो अपने वृत्त चित्र सत्यजीत रे इंट्रोस्पेक्शंस और फीचर फिल्म तर्पण के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं। इतिहास के व्याख्याता के रूप में थोड़े समय अपनी सेवा देने के बाद वे 1962 में भारतीय रेलवे यातायात सेवा में शामिल हो गए। भारत सरकार के साथ अपनी सेवा के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों का निर्वाह किया। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म तर्पण का संवाद।
1: अरे बहुत देख ली ठाकरों की ठगराई, आज फैसला हो के रहेगा।
2: भाई टुकड़ों पे पले और माने यहाँ निकाले।
3: सरपंच का धर्म भी कभी निभाया तूने? ठाकरों के अलावा किसी और का भी ख्याल किया है तूने?
4: अरे मैं फद्दू की बकरी नहीं हूँ जो मार डालेगा।
5: केशम इतनी हिम्मत हो गई तेरी? अरे कुएं से पानी भरे। अरे भाइयों उठा के फेंक दो।
6: ठाकुर ठाकुर
5: ठाकुर ये अन्याय करता।
0: आज पुण्यतिथि है आशा लता विश्वास की। उनका वास्तविक नाम मेहरून निशा था। उनका जन्म 17 अक्टूबर 1917 को भुज में हुआ था। वे एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री और निर्माता थीं, जो मुख्य रूप से 1930 के दशक से लेकर 1960 के दशक के मध्य तक हिंदी सिनेमा में सक्रिय रहीं। वे लक्स की

0: ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय अभिनेत्रियों में से एक थीं। उनकी मुख्य फिल्में आजादी, देशभक्त, चार आंखें, श्रीमान फंटूश आदि हैं। आइए सुनते हैं उनके द्वारा निर्मित फिल्म का संवाद।
1: एक अर्जी लिखो, हाँ जी सरकार को, हाँ जी दरबार को, हाँ जी वो गोरा गोरा, हाँ जी वो सूखा छोरा, हाँ जी चोरी मोरा।

0: आज जयंती है राम किंकर बैज की। उनका जन्म 26 मई 1906 को बांकुड़ा बंगाल में हुआ था। वे भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। आधुनिक भारतीय मूर्ति कला के अग्रदूतों में उनकी गणना होती है। संभाल परिवार, मिलकॉल, महात्मा बुद्ध, मिथुन, सुजात व रविन्द्रनाथ टैगोर का पोर्ट्रेट आदि उनके प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं। अपने दृढ़ संकल्प से वे भारतीय कला के प्रतिष्ठित प्रारंभिक आधुनिक कलाकारों में से एक बने थे। भारतीय कला में उनके अतुल्य योगदान के लिए वर्ष 1970 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और आज जयंती है मनोरमा की। उनका जन्म 26 मई 1937 को राजमन्नारगुड़ी तंजावुर जिला तमिलनाडु में हुआ था। वे दक्षिण भारतीय सिनेमा की सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेत्री और गायिका थी। उन्होंने 1500 से अधिक तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम किया। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था क्योंकि उन्होंने 1000 फिल्में पूरी की थी। वर्ष 2002 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आइए सुनते हैं उनका एक गीत। आज जन्मदिन है दिलीप जोशी का। वे एक भारतीय अभिनेता हैं जो हिंदी फिल्मों और टेलीविजन में काम करते हैं। उन्हें लंबे समय से चल रहे भारतीय हिंदी भाषा के टेलीविजन सिटकॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। उनकी मुख्य फिल्में फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन आदि हैं। आइए सुनते हैं उनकी एक फिल्म का संवाद।
1: जय भोलेनाथ, जय हो प्रभु सबसे।
2: ओ भैया किधर, ये लिफ्ट साहब लोगों के लिए है, कॉमन लिफ्ट उधर है, चलिए।
3: देखो भैया, शिव प्रसाद।
2: हमारा नाम गौरी शंकर है।
3: गौरी शंकर? अरे गौरी शंकर हो या शिव प्रसाद हो, क्या फर्क पड़ता है, आखिर दोनों नाम भगवान शंकर का ही है ना।
2: हाँ ये तो है, जय भोलेनाथ।
3: अच्छा देखिए,
4: Miles Dewey Davis III was more than a jazz trumpeter. He was a visionary who reshaped the sound of the 20th century. From his early days at Juilliard to playing alongside Charlie Parker, Davis was always at the cutting edge. His birth of the cool sessions helped define cool jazz, while his collaborations with John Coltrane and Gil Evans produced masterpieces like Sketches of Spain and Kind of Blue, the latter still regarding as one of the most popular jazz albums of all time. Miles Davis passed away in 1990.

0: अब एक कविता। बादलों के बीच आंखों के जोड़े हंसों की तरह चलते हैं, गिरती है एक बूंद आंगन में, सिहरते हैं पत्ते, एक लंबी उदासी के बाद फिसलती है एक चट्टान, बेहद अंधेरी रात में झिंगुरों की रुंझुन के साथ आता है गंध का एक झोंका, आसमान के उस पार बिगड़ैल नदी का है शोर, शहर में बुझ गई है लाल हरी पीली बत्तियां, बादलों के बीच कड़कती है आवाज, अकेलेपन में भी बेहद है शोर। ये काव्य रचना है त्रिनेत्र जोशी की। आज जयंती है त्रिनेत्र जोशी की। उनका जन्म 26 मई 1948 को रानीखेत उत्तराखंड में हुआ था। घूम गया कई मोड़ गर्मियां चिट्ठी जाते हुए, झिलमिल नेकांत भीतर बाहर, महानगर आदि आपके काव्य संग्रह है। और श्रोताओं, अब आपसे विदा लेने का समय हो चला है, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
1: स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ सुपर्ब डे।
0: नमस्कार।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रूपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर।

0: गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटॉक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटॉक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटॉक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह दो दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रूपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधान

0: का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
2: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
0: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और PV सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदाम्बी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में PV सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्तो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद फरहत।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है, पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने

0: और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान, धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं। ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत, क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देशभर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक, प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और एआई में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रूपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship at Margao in Goa. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans in Qualifier 1 in Dharamshala this evening. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. The foreign ministers of Australia and Japan arrived in Delhi yesterday. US Secretary of State Marco Rubio had arrived for a 4-day visit to India on the 23rd of this month. Our correspondent has filed this report.
3: The foreign ministers' meeting this year comes at a time of global uncertainty and West Asia crisis. The Quad, comprising India, the US, Australia and Japan, has emerged as a key grouping largely focusing on peace, security and stability in the Indo-Pacific region. India is hosting the meeting in its capacity as the current chair of the coalition. The Quad nations have come together with a commitment to work as a force for global good and to support an open, free and inclusive Indo-Pacific that is prosperous and resilient. Quad has adopted a positive and practical agenda focusing on contemporary issues and challenges such as health security, climate change, critical and emerging technologies, and strengthening the maritime domain awareness of regional countries. Suparna Saikia, Akashwani News, Delhi.

0: stop slipping on oil. The paper says how renewable energy can make India resilient to oil price shocks. The Indian Express states, live-in rules, polygamy ban as Assam introduces uniform civil code bill. With Trump administration's new policy, 7 lakh green card seekers left US in state of anxiety, writes the Economic Times. City swelters, warmest May night in 14 years, says the Times of India. And finally, the Tribune cites Chhattisgarh government turns former Naxal hit areas into tourist hubs, with tribal culture helping the communities develop a sense of ownership while generating income. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a three-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। क्वाड मुल्कों के उजराए खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में होने वाली है। सदरे जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी की वजह से इसके रुक जाने के बाद से वहां फंसे हुए 300 से ज्यादा सयाहों को बचा लिया गया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल ने आलमी सेहत तंजीम की जानिब से इबोला वबा को सेहत इमरजेंसी करार दिए जाने के बाद एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रूपये फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। गोवा के मारगांव में ख्वातीन की सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में मालदीव को 11 गोल से करारी शिकस्त दी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड मुल्कों के उजराए खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेंगे। इसमें ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा पेनी ओंग, जापान के वजीर खारजा तोशीमित्सु मोतेगी और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो शिरकत करेंगे। ये उजरा मुख्तलिफ तरजीही शोबों में क्वाड इश्तराक को आगे ले जाने पर तबादले ख्याल करेंगे, मौजूदा क्वाड इकदामात की पेशरफ्त का जायजा लेंगे और भारत बहरुल काहिल खित्ते के हालात व वाकयात, नीज बाहमी दिलचस्पी के दीगर बैनुल अक्वामी उमूर पर गौर व फिक्र करेंगे। आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल खित्ते के क्वाड के नजरिए के ऐन मुताबिक ये उजराए खारजा पिछले साल 1 जुलाई को वाशिंगटन डीसी में मुनक़िदा बातचीत पर आगे कदम बढ़ाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और जापान के उजराए खारजा कल नई दिल्ली पहुंचे हैं, जबकि अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के 4 दिन के दौरे पर इस महीने की 23 तारीख को यहां आ गए थे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: क्वाड के वज़राए खारजा की ये मीटिंग एक ऐसे वक्त हो रही है कि जब आलमी सतह पर गैर यकीनी के हालात हैं और मगरबी एशिया का बहरान भी जारी है। भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान पर मुश्तमिल क्वाड ग्रुप भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमन सलामती और इस्तेहकाम पर तवज्जो मरकूज करते हुए एक कलीदी ग्रुप के तौर पर उभरा है। भारत क्वाड के मौजूदा सदरनशीं होने के नाते इसकी मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। क्वाड के मुल्क आलमी सतह पर फलाह बहबूद के लिए एक ताकत के तौर पर काम करने और खुले, आजाद और जामे भारत बहरुल काहिल खित्ते की हिमायत के तई अहद के साथ यकजा हो रहे हैं। क्वाड ने एक मुसबत और अमली एजेंडा इख्तियार किया है जिसमें सेहत की यकीनी फराहमी, आबो हवा की तब्दीली, अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों, नीज बहरी निजाम को मुस्तहकम बनाने जैसे मौजूदा मामलात और चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज की गई है। दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
2: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी और कई मुकामात का दौरा करेंगी। सिक्किम सरकार ने उनका इस्तकबाल करने के लिए वसी इंतजाम किए हैं। सदर जमहूरिया शाम को गंगटोक में तिब्बती उलूम के नामग्याल इदारे में जाएंगी। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू कल नाथुला पास का दौरा करेंगी, जहां वो तैनात सिपाहियों के साथ गुफ्तगू करेंगी। कल ही वो गंगटोक में सिक्किम यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद तकरीब में शिरकत करेंगे। इस मौके पर तकरीबन 14,000 डिग्रियां पेश की जाएंगी। अपने दौरे के आखिरी दिन मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में एक तकरीब में सिक्किम पुलिस को सदर जमहूरिया के पुलिस परचम से सरफराज करेंगी। मरकजी वजीरे दाखिला अमित शाह मुल्क के सरहदी इलाकों का दौरा करेंगे और सिक्योरिटी से मुतालिक मीटिंगें करेंगे। जनाब अमित शाह कल राजस्थान में बीकानेर पहुंचे। वजीरे दाखिला आज सुबह बीएसएफ की सांचू सरहदी चौकी पर जाएंगे, जहां वो तैनात सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकारों से गुफ्तगू करेंगे और उनके लिए बहबूद की स्कीमों का इफ्तिताह करेंगे। दोपहर को जनाब अमित शाह बीकानेर में सरहदी खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। जम्मू कश्मीर में मशहूर सियाहती मुकाम गुलमर्ग में बड़ी तकनीकी खराबी की वजह से गोंडोला रोपवे के रुक जाने के बाद से केबिन में फंसे हुए सभी सैयाहों को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। हुकाम ने बताया है कि केबल कार के 65 केबिन्स के अंदर 300 से ज्यादा सैयाह फंसकर रह गए थे, जिनमें कुछ जमीन से तकरीबन 500 फीट की बुलंदी पर केबिन में मौजूद थे, जिससे ख्वातीन और बच्चों समेत सैयाहों में बेचैनी फैल गई। फौरन ही इमरजेंसी इकदाम किए गए। SDRF, NDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज की चनार कोर और मुकामी इंतजामिया की टीमों ने मिलकर बचाव और इमदादी कार्रवाई अंजाम दी, जो 7 घंटे तक चली। सभी मुसाफिरों को बहिफाजत उतार लिया गया और किसी को कोई चोट नहीं आई। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने तकनीकी खराबी की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात का ऐलान किया है और कहा है कि किसी तरह की कोताही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में डोरीमल इलाके के घने जंगलात में छुपे हुए मुश्तबह इंतहा पसंदों का पता लगाने के लिए तलाश की कार्रवाई आज चौथे दिन भी जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तसर फायरिंग के बाद दहशतगर्दों के एक ठिकाने का पता लगाया है। हफ्ते के रोज वहां दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान तसादुम शुरू हुआ था। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने कांगो और युगेंडा में इबोला बीमारी फैलने को आलमी सेहत तंजीम की जानिब से बैन अलाक़वामी तशवीश की सेहत आम्मा से मुतालिक इमरजेंसी करार दिए जाने के तनाजुर में एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। DGCA ने कहा है कि युगेंडा और कांगो के लिए परवाजें चलाने वाली फिजाई कंपनियों को मुसाफिरों के उतरने से पहले सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लाजमी तौर पर दाखिल करने और उन्हें वसूल करने को यकीनी बनाना होगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
4: DGCA ने फजाई कंपनियों के लिए ये लाजमी बना दिया है कि वो परवाजों के दौरान सेहत से मुतालिक मखसूस ऐलान नशर करें, ताकि मुमकिन एबोला केसों की जल्द निशानदेही हो सके और इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। मुसाफिरों से कहा गया है कि वो बुखार, कमजोरी, दर्द होने, सर में दर्द, गले में खराश और कह होने या खून बहने जैसी अलामतों के बारे में हवाई जहाज के अमले के अहलकारों के साथ साथ इमिग्रेशन या तिब्बी हुक्काम को पहुंचने पर इसकी इत्तला बिला ताखीर दें। DGCA ने कहा है कि अगर भारत पहुंचने के 21 दिन के अंदर इस तरह की अलामतें जाहिर होती हैं तो मुसाफिरों को मखसूस अस्पतालों से तिब्बी इमदाद हासिल करनी चाहिए और हवाई अड्डे के सेहत हुक्काम को मुत्तला करना चाहिए। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
2: दिल्ली में CNG की कीमत में 2 रूपये फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। दिल्ली में CNG की कीमत 83 रूपये 9 पैसे फी किलोग्राम हो गई है, जिसका इतलाक आज सुबह 6 बजे से हो गया है। पंजाब में म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। रियासत में 8 म्यूनिसिपल कारपोरेशनों, 75 म्यूनिसिपल काउंसिलों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
5: पंजाब के साल 2027 के असेंबली इंतखाबात से

0: इन म्यूनिसिपल इंतखाबात को एक अहम सियासी इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। रियासत में हुक्मरां आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम बड़ी सियासी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। रियासती इंतखाबी कमीशन के मुताबिक रियासत भर के कुल 1896 वार्ड से 7555 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। सख्त पुलिस इंतजाम के तहत वोट डाले जा रहे हैं। यहां 32,000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। वोटरों की शिरकत बढ़ाने के लिए पंजाब हुकूमत ने एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। वोटों की गिनती 29 मई बरोज जुमा की जाएगी। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी से कोई राहत नहीं मिली है। कई मुकामात पर दर्जे हरारत 43 से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस के दरमियान चल रहा है। बुंदेलखंड खित्ता सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। वहां करीब करीब हर जिले में पारा 45 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। जुनूब मगरबी मानसून के आज केरलम पहुंचने का इम्कान है। आमतौर पर मानसून 1 जून को केरलम पहुंचता है। मौसमियात महकमे ने केरलम के 14 में से 4 जिलों में कहीं कहीं शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। भारत समेत दुनिया भर के लाखों आजमीन आज सऊदी अरब में फरीज हज अदा कर रहे हैं। कल मनासी के हज के आगाज के मौके पर आजमीन हज मीना में जमा हुए और फजर की नमाज अदा करने के बाद आज वो तलबिया का विर्द करते हुए मैदान अरफात जा रहे हैं, जहां हज का रुकन आजम अदा किया जाएगा। ये आजमीन वहां तौबा इस्तगफार में दिन गुजारेंगे। आजमीन हज मस्जिद निमरा में खुतबे हज सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा रवाना होने से पहले जोहर और असर की नमाज एक साथ अदा करेंगे। हुज्जाज इकराम कल सुबह मीना वापस आ जाएंगे, जहां वो शैतान को कंकरियां मारेंगे और जानवरों की कुर्बानी पेश करेंगे। अमरीकी फौज ने ईरान के साथ जंगबंदी के तनाजुर में आबनाए हुरमुज के नजदीक ईरान के मिसाइल लॉन्च करने के ठिकानों और कश्तियों को निशाना बनाते हुए अपने दिफा में हमले किए हैं। अमरीका की सेंट्रल कमान के तर्जुमान तिमोथी हॉकिंस ने कहा कि इन हमलों में ईरान की उन कश्तियों को निशाना बनाया गया जिनके जरिए वहां बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिशें की जा रही थीं। उसने ये भी कहा कि अमरीकी फोर्सेज जंगबंदी के दौरान अपने फौजियों का दिफा करते हुए जब्तो तहमुल से काम लेती रही हैं। इस हमले के चंद घंटे कबल अमरीका ने ईरान के साथ जंगबंदी मुजाकरात में पेशरफ्त होने की बात कही थी। ईरान के सदर मसूद पेजिश्कियान ने मुल्क में इंटरनेट खिदमात बहाल करने का हुक्म दिया है। ईरानी हुक्काम ने 87 से ज्यादा दिन के लिए मुल्क में इंटरनेट खिदमात पर तकरीबन मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी थी। गोवा के मारगांव में ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप में भारत ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में मालदीप को 11 गोल से करारी शिकस्त दी। मालदीप की टीम कोई भी गोल नहीं कर सकी। अविका सिंह ने 4 गोल किए, जबकि प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल किए। भारत अब इतवार को अपने अगले मैच में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश का सामना करेगा। भारत ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप 5 मरतबा जीत चुका है। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मैच में जीतने वाली टीम सीधे आईपीएल के फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 खेलने का मौका मिलेगा। कल शाम 7:30 बजे मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में इलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसमें हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम क्वालिफायर 2 में पहुंच जाएगी। भारत के सरकर्दा खिलाड़ी लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में भारत की कयादत करेंगे। दीगर भारतीय खिलाड़ी आयुष शेट्टी, किदांबी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय भी इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता किए। अदाकार धर्मेंद्र को बाद अज मर्ग पद्म विभूषण से नवाजा गया। इस खबर को कई अखबारात ने अपने पहले सफे पर अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, मनासी के हज का बाकायदा

0: पैदा आगाज रुकन आजम वकूफ अरफा आज। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो आगरा पहुंचे और अपनी एहलिया के साथ ताजमहल का दीदार किया। इसी अखबार की एक और अहम सुर्खी है, वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने अफ्रीका डे पर मुबारकबाद पेश की, शराकत दारी को मजबूत बनाने के अजम का इजहार किया। इसके अलावा आज के अखबारात की अहम बैन अल्क्वामी खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं, ईरान से मुआहिदा न हुआ तो जंग दोबारा शुरू होगी, सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, रूस का कीव पर फिर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला, 4 अफराद हलाक और 100 से जायद जख्मी।
1: खास खास खबरें एक बार फिर, क्वाड मुल्कों के वज़राए खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में होने वाली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी की वजह से इसके रुक जाने के बाद से वहां फंसे हुए 300 से ज्यादा सयाहों को बचा लिया गया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने आलमी सेहत तंजीम की जानिब से इबोला वबा को सेहत इमरजेंसी करार दिए जाने के बाद एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी की हैं। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रूपये फी किलोग्राम का इजाफा किया गया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

नमस्कार, मैं डॉक्टर शोभना नारायण, कथक नृत्यांगना, गुरु एवं कोरियोग्राफर हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं आकाशवाणी से कई दशकों से जुड़ी हुई हूँ और मैंने देखा है कि आकाशवाणी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह मंच कलाकारों के लिए अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम रहा है, जिसने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जन जन तक पहुंचाया है। कथक जैसी समृद्ध नृत्य परंपरा को भी आकाशवाणी ने अपनी तरंगों के माध्यम से देश विदेश में पहचान दिलाने में योगदान दिया है। मैं कामना करती हूँ कि आकाशवाणी इसी प्रकार कला, संस्कृति और समाज को जोड़ते हुए नई ऊंचाइयों को छूता रहे। एक बार फिर मैं आकाशवाणी परिवार को 90 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार।

जी हाँ, आकाशवाणी जहाँ गीत संगीत के साथ रही संस्कृति भाषा समाज के हर वर्ग की बात, आकाशवाणी जो रहा हर हालात में आपके साथ। तो चलिए अब भी करते हैं म्यूजिकल दिल लगी। 8:48 और ठीक 5 सेकंड पर मंगल की मुक्ता है आपके साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ।

तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: जनाब, गर्मी का स्वैग बहुत बढ़ गया है ना? दिल्ली वालों की बातचीत में गर्मी का जिक्र ना हो, इन दिनों तो डिस्कशन अधूरी सी लगती है ना? भाई, पारा 40 पार है, अब ऐसे में आपकी गाड़ी भी अंदर से तवा बन रही होगी। अगर इस वक्त उसे भी ठंडक ना दी तो वो भी गुस्से में लाल हो जाएगी और बीच रास्ते में रुक जाएगी। आप जानते हैं, गर्मियों के दौरान भारत में गाड़ियों की ओवरहीटिंग और ब्रेकडाउन के मामले 30% तक बढ़ जाते हैं। तो चलिए आपके सुकून को बढ़ाते हैं और ये प्रतिशत भी कम करने की कोशिश करते हैं। गाड़ी में कूलेंट का लेवल ओके रखा है ना आपने? जैसे शरीर को पानी चाहिए वैसे गाड़ी को कूलेंट की जरूरत है। रेडिएटर क्लीन है? अगर नहीं है तो फिर उसमें धूल और कचरा न हो, ये ध्यान रखिएगा। गर्मी में बेल्ट है, हॉर्स पाइप है, ये रबड़ की होने की वजह से चटक जाती है, इसलिए इसे भी समय समय पर चेक करवाते रहिए। इन दिनों छांव की जरूरत आपको ही नहीं, आपकी गाड़ी को भी है, इसलिए गाड़ी जब भी पार्क करे तो कोशिश करे कि एरिया में ठंडक हो, यानी शेड हो। गर्मी कम नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, आपके मन में ठंडक ला सकते हैं।

आप भी अपने सपनों के सौदागर के साथ म्यूजिकल दिल लगे करते रहिए, लेकिन उससे पहले हिंदी और अंग्रेजी में होंगे समाचार और म्यूजिकल दिल लगे के सफर को नाज बढ़ाएंगे आगे। मुक्ता को दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। और ब्यूरो के साथ हैं हमारे संवाददाता।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति अपनी यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुलमर्ग में गोंडाला रेल रोपवे में केबल कार में फंसे करीब 300 पर्यटकों के सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया, उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रूपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार

0: विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी। रूस के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हालिया रूसी हमले यूक्रेन सरकार द्वारा रूसी क्षेत्र में शांतिपूर्ण आबादी और नागरिक स्थलों पर लगातार हमलों का सीधा जवाब है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के हिजबुल्ला पर हमले तेज करने की घोषणा के बाद इसराइली सेना ने पूरे लेबनान में हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइली रक्षा बलों ने बताया कि उन्होंने पूर्वी लेबनान में बेका घाटी और कुछ अन्य क्षेत्रों में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया। फुटबॉल में भारत ने कल गोवा के मडगांव में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। पांच बार की चैंपियन भारत का अगला मुकाबला रविवार को मौजूदा विजेता बांग्लादेश से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में भी आज लू की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्रों, गोकर्ण, गोवा, सौराष्ट्र, कच्छ और तमिलनाडु में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रकेल। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives, and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. The foreign ministers of Australia and Japan arrived in Delhi yesterday. U.S. Secretary of State Marco Rubio had arrived for a four-day visit to India on the 23rd of this month. President Draupadi Murmu will undertake a three-day visit to Sikkim beginning today. During her stay in Sikkim, she will attend various events and visit several places. The Sikkim government has made elaborate arrangements to welcome her. In the evening, the president will visit the Namgyal Institute of Tibetology in Gangtok. A report.
2: President Draupadi Murmu will visit Namgyal Institute of Tibetology today on the first day of her visit to Sikkim. President Murmu will also visit the Orchidarium and flag of pink buses for the women in Gangtok. Tomorrow, she will visit the Nathula Pass and also attend the convocation of the Sikkim University at Gangtok. Nearly 14,000 degrees will be awarded in the ceremony. On the last day of her visit, President Murmu will present the President of India's Police Colour Medal to the Sikkim Police at Paljor Stadium in Gangtok. Manas Pratim Sharma, Akashvani News, Gangtok.
1: Compressed natural gas CNG prices in Delhi have been increased by 2 rupees per kilogram in Delhi. With the latest revision effective from 6 a.m. today, CNG in Delhi now costs 83 rupees 9 paise per kilogram. The millions of people from across the world, including India, will perform Hajj in Saudi Arabia today, marking the beginning of five-day Hajj rituals. Pilgrims converged at 10th city of Mina yesterday. After offering pre-dawn prayers, they will proceed to plains of Arafat today for the main ritual of Hajj reciting prayers. They will spend the day there praying and asking for God's forgiveness. The pilgrims will listen to the Khutbah-e-Hajj or Hajj sermon at Nimra Mosque and offer midday and afternoon prayers together before leaving for Muzdalifah in evening. The pilgrims will return to Mina tomorrow morning for ritual of animal sacrifice and symbolic stoning of devil. U.S. Secretary of State Marco Rubio spoke with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and exchanged views on the Russian-Ukraine war and the situation in Iran, said the U.S. Department of State spokesman.

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड विश यू अ वेरी हैप्पी वाली मॉर्निंग। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और पक्की वाली दोस्त नाज। लेकर हाजिर हूं म्यूजिकल दिल लगी, जहां ढेर सारी बातों के बीच माहौल होगा एकदम म्यूजिकल। तो जुड़े रहेंगे मेरे साथ और एंजॉय करेंगे फिलहाल प्रोग्राम का ये पहला सॉन्ग और फिर जल्दी से वापस लौट कर आएंगे, क्योंकि इस ट्रैक के उस पार है आपके लिए आज का सवाल, जिसका जवाब भी तो आप देंगे।

बहस, इख्तलाफात या फिर डिसएग्रीमेंट्स इस दुनिया के हर रिश्ते में होते हैं। गलत फहमियां भी हो जाती हैं, कभी कभी मन भर जाता है एंड इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। लेकिन जो लोग सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, वो छोड़ने की नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इस दुनिया में कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट होता है साथ निभाने का इरादा, जैसे आपका और हमारा। 8 जून 1936 से शुरू हुआ आकाशवाणी का ये सफर 90 साल का होने जा रहा है। आकाशवाणी यानी आकाश, आसमान से आती वाणी, भारत की 98% आबादी तक पहुंच चुकी है। क्योंकि ये सिर्फ कुछ बोलियों या भाषाओं तक सिमटी हुई नहीं है, बल्कि इसमें शामिल है 23 भाषाएं और 146 बोलियां। और पूरे देश की आवाज बनने तक के इस सफर में हमें सुन रहे हर लिसनर का एक हिस्सा है। और एक बड़ा वाला थैंक यू भी तो बनता है हमारे साथ जुड़ने और हमें कभी न छोड़ने के लिए। फिलहाल म्यूजिकल दिल्लगी में पूछ रही हूँ आपसे आज का सवाल, जिसके जवाब में आपको लिखकर बतानी है वो तारीख और वो साल भी जब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार बुलेटिन का पहला प्रसारण शुरू हुआ था। कहाँ और कैसे भेजेंगे अपने जवाब ये भी याद दिला रही हूँ, fmgoldair@delhi.gmail.com पर करेंगे ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज आप भेज देंगे 9868686753 पर। और मैं क्या करूंगी, आपका बढ़ाऊंगी थोड़ा सा ज्ञान कोश आज के दिन के बारे में, और प्रोग्राम के एंड में शामिल करूंगी वो सभी नाम जिन्होंने भेजा होगा आज के सवाल का जवाब। साथ ही आप में से किसी एक लिसनर से करूंगी गपशप फोन लाइन पर। रिक्वेस्ट आपसे बस इतनी सी है कि सवाल का जवाब भेजने के बाद फोन को कहीं साइड में नहीं रख देना है और ना ही बिजी रखना है, ताकि मैं जब करूं आपको कॉल तो जल्दी से हो जाए हमारी टॉक।

सॉरी महज एक शब्द नहीं है जनाब, बल्कि ये शब्द जो है ना, अगर संजीदा होकर सोचें तो बड़े अलग अलग मायने हैं इसके। कई बार हम सिर्फ इसलिए किसी को सॉरी बोल देते हैं कि बस बात यहीं पर खत्म हो जाए, झगड़ा और ना बढ़े, या फिर कई दफा खुद को बड़ा दिखाने के लिए किसी ताने की तरह हम इस शब्द को ऐसे फेंक कर मार देते हैं किसी पर कि सामने वाला बेचारा हमारे सॉरी के तले ही दब जाए। लेकिन क्या वाकई इन दोनों ही सूरतों में हम इसके सही मायने को समझते हैं, या फिर सिर्फ इसका इस्तेमाल कर देते हैं? मुझे लगता है ऐसा नहीं है। सॉरी तब ही बोला जाना चाहिए जब जेन्युइनली आपको ऐसा महसूस हो कि आपसे गलती हुई है, और फिर पूरी शिद्दत से आपको सामने वाले से सॉरी कहना चाहिए, और पूरे दिल से कहना चाहिए, और तब तक कहना चाहिए जब तक कि वाकई आपकी माफी का वजन आपकी की हुई गलती की बराबरी न कर ले, है ना? वैसे सॉरी बोलने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि एक ये भी है

0: आता हाथ मलोगे समझे
1: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ।

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम

तो ऐसे अगर माफी मांगेंगे तो भला कौन माफ नहीं करेगा, बताइए। अच्छा, माफी पर इतनी बात क्यों हो रही है ये भी जान लीजिए। आज यानी 26 मई को होता है नेशनल सॉरी डे, यानी राष्ट्रीय क्षमा दिवस। हालांकि भारत से इसका ताल्लुक इतना गहरा नहीं है, बल्कि खास तौर पर इसे ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। दरअसल 20वीं सदी में वहां की सरकारी नीतियों के तहत वहां के कई बच्चों को उनके परिवारों से जबरन अलग कर दिया गया था, और इसीलिए उन्हें स्टोलन जेनरेशन कहा गया। और आज का दिन सॉरी डे के रूप में उन्हीं बच्चों और उनके परिवारों के प्रति दुख और माफी जाहिर करने के लिए समर्पित है। और इसके अलावा आज ही यानी 26 मई के दिन साल 1951 में जन्म हुआ था सैली राइट जी का, जो अंतरिक्ष में कदम रखने वाली पहली महिला अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। और उन्हीं की याद में आज के दिन को अमेरिका में मनाया जाता है सैली राइट दिवस के रूप में। और क्यों खास है आज का दिन यानी 26 मई, जानते रहेंगे आगे भी, लेकिन पहले ये ट्रैक सुनेंगे और जल्दी से लौट कर आएंगे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग, यादों के

0: रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:30 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

म्यूजिकल दिल्ली सुन रहे हैं आप, जहां मैं यानी नाज हूं आपके साथ। और हम करें आज की बात, उससे पहले ये जान लीजिए कि फ्रॉम यस्टरडे यानी कल 25 मई से शुरू हो चुका है नौतपा, जो 2 जून यानी अगले मंगलवार तक यूं ही जारी रहने वाला है। असल में नौतपा माने 9 दिन जब भीषण गर्मी पड़ती है, क्योंकि इस दौरान सूरज और पृथ्वी की दूरी सबसे कम होती है और तापमान जाता है अपने चरम पर। आज की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है। मतलब समझ रहे हैं कितनी गर्मी पड़ रही है इस वक्त। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऐसे में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका बहुत ख्याल रखेंगे। इसे लेकर भारत सरकार ने भी जारी की है पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी, और इसके अनुसार पीक आवर्स यानी दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे के बीच अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, लगातार पानी पीते रहें, प्यास ना लगी हो तब भी। इसके अलावा स्वादानुसार छाछ, ORS, आम पन्ना या फिर फ्रूट जूसेस भी आपको लेते रहना है। हल्के रंग के ढीले और हो सके तो सूती कपड़े ही पहनिए। बाहर निकलना मजबूरी हो तो गॉगल्स, कैप और अम्ब्रेला को गलती से भी घर पर मत भूलिएगा, और पानी की बोतल तो मस्ट है ही। अब क्या नहीं करना है ये भी सुन लीजिए। चाय, कॉफी, अल्कोहल और बहुत ज्यादा शुगरी फूड आइटम्स से करना है परहेज। हल्का खाना खाना है, और जो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, जैसे आपकी हाउस हेल्प या फिर बिल्डिंग में काम कर रहे मजदूर वगैरह, जितना हो सके उनकी हेल्प करनी है और अपने साथ साथ उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है। अभी इंजॉय करना है ये अगला गाना, लेकिन इस बीच कहीं नहीं है आपको जाना, क्योंकि आज के दिन के बारे में अभी बहुत कुछ है मुझे आपको बताना।

सुशील कुमार पहलवान, जिन्होंने कुश्ती के सिंगल्स में लगातार दो बार ओलंपिक मेडल देश को दिलाया और ऐसा करने वाले वो स्वतंत्र भारत के पहले खिलाड़ी बने। आज यानी 26 मई को होता है उनका जन्मदिन। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज और फिर 2012 के लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर सुशील कुमार ने ये इतिहास रचा। और इसके अलावा साल 2010 की मॉस्को में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और ऐसा कर पाने वाले वो पहले भारतीय पहलवान बने। कॉमनवेल्थ की बात करें तो यहां भी उनका जलवा बरकरार रहा और साल 2010, 2014 और फिर 2018 में भी उन्होंने गोल्ड मेडल्स पर अपना कब्जा जमाया। खेल जगत में उनके इस योगदान के लिए उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। इतिहास के पन्नों में और क्या कुछ है लिखा आज के दिन से जुड़ा, मैं बताऊंगी और आप सुनेंगे इस अगले गाने के बाद। और ये भी याद दिला दूं कि घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से भाग रही हैं जनाब, तो अब देर मत कीजिए, निभाइए अपना वादा और जल्दी से लिखकर भेज दीजिए आज के सवाल का जवाब। बता दीजिए वो तारीख जब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार बुलेटिन के प्रसारण की हुई थी शुरुआत। मैं मिलूंगी आपसे इस गाने के बाद।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: मैं यानी नाज आ गई हूँ एक बार फिर हिस्ट्री की बुक खंगाल कर, जिसमें साफ साफ माने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि भाई आज यानी 26 मई ही थी वो तारीख जब अफगानिस्तान हमेशा के लिए भारत से अलग हो गया था, और वो साल था 1739। हुआ दरअसल कुछ यूं था कि तब के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला और फारसी शासक नादिर शाह के बीच हुई थी कंधार की संधि, जिसके तहत अफगानिस्तान के इलाके मुगल सल्तनत के हाथों से निकल गए, और नतीजा ये कि भारत से भी उनका नाता टूट गया। इसके अलावा हुआ तो एक और कमाल भी था कि आज के दिन यानी 26 मई को इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने PSLV-C2 के जरिए IRSP-4 यानी ओशन सेट सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया था। बेसिकली इसका काम था सीज यानी समुद्र का अध्ययन, और खास बात यह भी थी कि ये PSLV की पहली ऐसी उड़ान थी जिसमें एक साथ तीन उपग्रहों यानी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। ओशन सेट के साथ ही जर्मनी का DLR ट्यूब सेट और साउथ कोरिया का किट सेट 3 भी इस मिशन के दौरान लॉन्च किए गए थे। देखिए बातें हो गई हैं बहुत, और चूंकि प्रोग्राम का नाम है म्यूजिकल दिल लगी, तो एक गाना तो यहाँ पर बनता है ना, जिसके बाद हम जानेंगे आज के सवाल का सही जवाब मेरी नहीं बल्कि आपकी जुबानी।

0: और अब निभाऊंगी मैं अपना वादा, करूंगी उन सभी लिसनर्स के नाम डिस्क्लोज जिन्होंने लिखकर भेजा है आज के सवाल का बिल्कुल सही जवाब। नवीन भाटिया मोतीनगर नई दिल्ली से हर बार की तरह, हर रोज की तरह इनका आया सबसे पहले सही जवाब। प्रकाश चंद अरोड़ा दिल्ली से, अनु बड़जात्या मुंबई से, प्रकाश दिल्ली से, कृष्ण कुमार गुप्ता भटीपुरा महोबा से, उग्रसेन यादव नई दिल्ली से, पंकज मोहोड अमरावती महाराष्ट्र से और एनआर प्रसाद राजाजी नगर बेंगलोर से, मेघना कहां से ये इन्होंने नहीं लिखा लेकिन सही जवाब जरूर लिखा, वंदना राव नई दिल्ली से, महावीर खत्री गुरुग्राम से, एस के खन्ना गुरुग्राम से ही, राजा दिल्ली से, मनोहर लाल गांधी विजयनगर गाजियाबाद से, संतोष सक्सेना मुंबई से और सुदर्शन मुखी जी ने भी दिया आज के सवाल का बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ एस के खन्ना साहब का भी आ गया है अभी अभी बिल्कुल सही जवाब विकासपुरी से। तो दोस्तों, पूछी थी मैंने आज आपसे वो तारीख और वो साल भी जब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हुई थी समाचार बुलेटिन के प्रसारण की शुरुआत। बताएंगे हम सबको गिरीश पलड़िया जी, हल्द्वानी उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं हमारे साथ सीधे फोन लाइन के जरिए। गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग
0: जी सर। सबसे पहले बातें आगे बढ़ाएं, हम जानना चाहेंगे आपसे आज के सवाल का जवाब।
1: तो आज का सही जवाब है 19 जनवरी 1936।
0: क्या बात है, जोरदार तालियां सर आपके लिए सबसे पहले तो। और अब ये बताइए कि कितना पुराना है रिश्ता हमसे और कैसा लगता है आकाशवाणी के साथ जुड़कर।
1: देखिए, जब से आकाश की वाणी हुई जी, तो वो तो हम नहीं जानते लेकिन आकाशवाणी के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है
0: जी,
1: क्योंकि ये वो एक आवाज है, ये एक जरिया है जिसके द्वारा हम आप लोगों से मिलते हैं, इतनी सारी इतने सदाबहार सॉन्ग सुनते हैं। और आई थिंक हम सभी का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना प्यारा रिश्ता आप लोगों ने बनाया है। तो पिछले आई थिंक अगर मैं बात करूं 15 से 20 साल हो चुके हैं आकाशवाणी के साथ जुड़े हुए।
0: अच्छा।
1: और हमें बहुत अच्छा लगता है, बेसब्री से इंतजार होता है आकाशवाणी के सभी प्रोग्राम का और स्पेशली आपके प्रोग्राम का।
0: अरे थैंक यू सो मच सर। अच्छा ये बताइए कि समाचार बुलेटिन ज्यादा सुनना पसंद करते हैं या म्यूजिकल शोज।
1: देखिए, अगर मैं अपने शौक की बात कहूँ तो मुझे म्यूजिक से बड़ा लगाव है।
0: अच्छा।
1: तो म्यूजिक, और लेकिन साथ में एक शिक्षक भी हूँ तो
0: अच्छा।
1: मुझे समाचार, क्योंकि बच्चों को करंट अपडेट कराना होता है, तो मुझे दोनों ही प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है और बहुत

0: ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो हमें सारी जिंदगी से रूबरू करवाते हैं, पुराने यादों को वापस लेके आते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर। अच्छा आप ये बताइए कि गाना कौन सा सुनना चाहेंगे, फेवरेट सॉन्ग कौन सा है आपका?
0: देखिए वही फेवरेट सॉन्ग जो मैंने अपनी वाइफ के लिए अपनी शादी के दिन बोला था।
1: अरे वाह,
0: वो है ये चांद सी महबूबा हो मेरी। कब
1: तो जब सर आप अपनी वाइफ को सुना सकते हैं तो सर हमें भी सुना सकते हैं। बिल्कुल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, उसके बाद हम मुकेश जी की आवाज में सुनेंगे ये गाना।
0: चलिए बिल्कुल। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चलिए मैम इतना ही। बहुत
1: क्या बात है सर, बहुत ही खूबसूरत आपने गाया और बहुत ही खूबसूरत आपकी फरमाइश रही। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे साथ जुड़े और इतनी प्यारी प्यारी बातें की। थैंक यू सो मच सर।
0: धन्यवाद नाजी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो ये थे गिरीश पलड़िया, हल्द्वानी उत्तराखंड से जुड़े थे हमारे साथ सीधे। देखिए मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी और आपको भी जुड़े रहना है मेरे साथ, क्योंकि अब वक्त हो चला है म्यूजिकल दिल्लगी में आपसे अलविदा लेने का। लेकिन अभी सुनेंगे आप देश और दुनिया से जुड़े समाचार हिंदी और अंग्रेजी में, और ठीक 10:30 बजे आपको वापस आना है। वैसे तो समाचार भी आप सुनेंगे ही, कहीं जाना नहीं है, लेकिन दिल का मेल बॉक्स में आप भेजेंगे ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज जिन्हें मैं करूंगी कार्यक्रम में शामिल। तो फिर जल्दी मिलते हैं और सुनते हैं चलते चलते गिरीश जी की फरमाइश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति अपनी यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटुक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में से 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रूपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से बातचीत की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। रूस के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हालिया रूसी हमले यूक्रेन सरकार द्वारा रूसी क्षेत्र में शांतिपूर्ण आबादी और नागरिक स्थलों पर लगातार हमलों का सीधा जवाब है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के हिजबुल्ला पर हमले तेज करने की घोषणा के बाद इसराइल की सेना ने पूरे लेबनान में हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल के रक्षा बलों ने बताया कि उन्होंने पूर्वी लेबनान में बेका घाटी और कुछ अन्य क्षेत्रों में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया। फुटबॉल में भारत ने कल गोवा के मडगांव में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप

0: और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में जारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के बाद डीजीसीए ने एयरलाइंस को निर्देश जारी किए। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों पर हमले किए। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। और भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी बैठक में भाग ले रहे हैं। अपने उद्घाटन भाषण में डॉ जयशंकर ने कहा कि बैठक में साझा गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान मुख्य रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र पर चर्चा होगी। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर विचार विमर्श में आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विनिर्माण संसाधन की उपयोगिता और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में कमियों जैसे मुद्दों पर चर्चा निर्धारित है। श्री जयशंकर ने कहा कि वे बहुत आशान्वित हैं कि क्वाड बैठक उपयोगी और सफल होगी। इससे जुड़ी और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर भी आज दोपहर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया। ये घटनाक्रम तब सामने आया है जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान का समृद्ध यूरेनियम अमरीका को सौंपा जाएगा, जिसे नष्ट किया जाएगा या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की निगरानी में

0: उपयुक्त स्थान पर नष्ट किया जाएगा। रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने भी अमरीकी नेतृत्व वाले ढांचे के तहत अपने समृद्ध यूरेनियम भंडार को छोड़ने पर सहमति जताई है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। उन्होंने सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन जैसे देशों से अब्राहम समझौते में शामिल होने की अपील की। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में वर्ष 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है, जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाना है। उधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिज़िशकियान ने देश भर में इंटरनेट सेवा बहाल करने का आदेश दिया है। ईरान के अधिकारियों ने 87 दिनों से अधिक समय से देश भर में इंटरनेट बंद कर दिया था। खबरों के अनुसार अमरीका ईरान संघर्ष के दौरान इन प्रतिबंधों ने आम नागरिकों की सूचना तक पहुंच को बाधित किया, साथ ही इंटरनेट पर निर्भर व्यवसायों को भी बुरी तरह प्रभावित किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के हिजबुल्ला पर हमले तेज करने की घोषणा के बाद इसराइल की सेना ने लेबनान में हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइली रक्षा बलों ने बताया कि उन्होंने पूर्वी लेबनान में बेका घाटी और कुछ अन्य क्षेत्रों में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया है कि इसराइली सैन्य अभियानों में 600 से अधिक हिजबुल्ला लड़ाके मारे गए हैं। ये ताजा हमले दोनों देशों द्वारा 45 दिनों के युद्ध विराम को बढ़ाने पर सहमति के बावजूद हुए हैं। हालांकि लड़ाई मुख्य रूप से दक्षिणी लेबनान में जारी है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। रूस के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हालिया रूसी हमले, यूक्रेन सरकार द्वारा रूसी क्षेत्र में शांतिपूर्ण आबादी और नागरिक स्थलों पर लगातार हमलों का सीधा जवाब है। अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ बातचीत में श्री लावरोव ने रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से सिफारिश को भी दोहराया, जिसमें अमरीका सहित सभी देशों को यूक्रेन की राजधानी कीव से अपने राजनयिकों को तुरंत निकालने को कहा गया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन की हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
1: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे, जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
0: और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की, तो आईपीएल के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्टो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: धन्यवाद मुकेश। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने से द्विपक्षीय मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इस दौरान भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61 करोड़ 75 लाख अमरीकी

नमस्कार, ट्यून कर चुके हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम शुरू हो चुका है दिल का मेल बॉक्स, जहां मैं यानी नाज आ गई हूं आपसे ढेर सारी बातें करने, साथ ही आपकी फरमाइश के गीत भी मैं आपको सुनवाऊंगी। लेकिन उसके लिए आप भी तो करेंगे थोड़ी सी मेहनत। fmgoldair@gmail.com पर करेंगे ईमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेज। आप भेज देंगे कहाँ? 9868687 पर। और दोस्तों, इसके साथ ही टेस्ट होगी आपकी फिल्मी नॉलेज भी, क्योंकि एक बार फिर लेकर आ गई हूँ मैं आपके लिए एक खूबसूरत सा म्यूजिक पीस तो नहीं, लेकिन एक सुपर हिट गाने का प्रिल्यूड यानी शुरुआती म्यूजिक और कुछ एक्सप्रेशंस जरूर आप इसमें सुनते हैं। मतलब कि गाना पहचानने के लिए काफी है ये, तो सुनिए और बड़े ध्यान से सुनिएगा।

तो अगर पहचान लिया है गाना तो टाइम नहीं है गवाना, जल्दी से लिख भेजने हैं गीत के बोल और फिलहाल एंजॉय करना है मेरे साथ कार्यक्रम का पहला सॉन्ग, जिसकी फरमाइश हमारे पास आई है धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार की तरफ से भोपालगढ़ राजस्थान से। सुनिए और हो जाइए इस गीत के साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आकाशवाणी एट 90 पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

पत्थर है तेरे हाथ या कोई फूल है, जब तू कबूल है तो तेरा सब कुछ कबूल है। फिर तूने दे दिया है नया फासला मुझे, सर पर अभी तो पिछली मसाफत की धूल है। तू दिल पे बोझ लेके मुलाकात को मत आ, मिलना है इस तरह तो बिछड़ना कबूल है। तू यार है तो इतनी कड़ी गुफ्तगू ना कर, तेरा उसूल है तो मेरा भी उसूल है। लफ्जों की आबरू को यूं गवाओ नादीम, जो मानता नहीं उसे कहना फिजूल है। अच्छी बात है ना, लेकिन कहना तो आप भी मेरा नहीं मान रहे हैं। मैंने कितनी बार कहा है आपसे कि एक बार, सिर्फ एक बार ईमेल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो बहुत आसानी होगी उसे कार्यक्रम में शामिल करने में, लेकिन आप मानते ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अब मान लेंगे, है ना। और इसी के साथ अब शामिल कर रही हूं आप ही का एक मैसेज। अपने आंसुओं को इतना महंगा कर दो कि कोई उन्हें लेने की कोशिश ना करे। गहरी बात है, ध्यान दीजिएगा कि आंसुओं को अपने इतना महंगा कर दो कि कोई उन्हें लेने की कोशिश ना करे, और अपनी मुस्कान को इतना सस्ता कर दो कि हर कोई उसे पाने की चाहत करे। क्या बात है। चंडीगढ़ से ये खूबसूरत मैसेज भेजा है सतीश अनेजा जी ने, विमला अनेजा जी के साथ। सधन्यवाद, थैंक यू सो मच सर इस खूबसूरत बात के लिए और इस मैसेज के लिए भी। इसके साथ ही गांव जाखोद राजस्थान से भी आ गया है एक मैसेज। पूजा खटक, बिमला देवी और शंभु दयाल खटक इसमें शामिल है। अपना फरमाइशी गीत लिखकर भेज दिया है जिसे मैं बहुत जल्द प्ले करने की कोशिश करूंगी। अगला मैसेज आया है गंज डुडवारा से और इन्होंने भी भेजी है फरमाइश। शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान और फैजान खान के साथ ये मैसेज आया है। और इसके साथ ही अगला मैसेज मैं शामिल कर रही हूं रवि भूषण वधवा जी का। रश्मि वधवा इनके साथ शामिल है इस मैसेज में। मालवीय नगर जयपुर राजस्थान से ये मैसेज आया है। लिखते हैं, प्यारी स्वर कोकिला नाज, उफ बहुत ज्यादा हो गया सर। प्यारी स्वर कोकिला नाज, क्या शानदार किया है आज के कार्यक्रम का आगाज। भला कौन करेगा आपकी अदायगी पर एतराज, यही कहेगा बंदा नवाज। नौतप्पा की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बात है सर, ये होती है जिंदा दिली। नौतप्पा की भी शुभकामनाएं आपने भेजी हैं और सही बात है जी, हर मौसम की अपनी अहमियत होती है। भले ही हमें थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही है इस नौतप्पा से, इस भीषण गर्मी से, लेकिन क्या आपको मालूम है मानसून के लिए ये नौतप्पा बहुत बहुत जरूरी है। तो इंजॉय कीजिए इस गर्मी को भी जैसे भी पॉसिबल हो, और करते रहिए ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज भी। और इसी बीच मैं तो भूल ही गई कि एक म्यूजिक पीस भी तो मैंने आपके लिए प्ले किया था। माफ कीजिए, म्यूजिक पीस आज नहीं है, गाने का प्रिल्यूड है जिसे सुनकर आप गाना, बहुत कमाल की बात है कि पहचान भी लिया आपने इतनी जल्दी। मुझे लगा था कि थोड़ा सा टाइम आज आप लेंगे, थोड़ी सी रिसर्च करके आई थी मैं, थोड़ा सा मुश्किल गाना ढूंढा था मैंने आपके लिए, लेकिन भाई आपने हरा दिया मुझे और प्ले करते ही आपके जवाब आने लगे। चलिए एक बार और सुना देती हूँ, जो नए लिसनर हमारे साथ जुड़े हैं वो भी तो कोशिश कर लें।

जी हाँ, यही है वो म्यूजिक प्रिल्यूड जिसे सुनकर आपने गाना पहचानना है। और इसी के साथ अगला मैसेज आ गया है सीधे मुंबई से हमारे पास। अनु बड़जात्या जी का लिखती हैं, आओ सहेली यूं कॉल करते हैं, जिंदगी जो बीत गई सो बीत गई और बाकी बची में फिर से बचपन को याद कर लेते हैं। ईश्वर ने जो भी दिया लाजवाब दिया है, चलो शुक्रिया उसका बार बार करते हैं। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात। और अगली फरमाइश में पूरी करूं उससे पहले एक मैसेज तो और बनता ही है। शमशुर कमर साहब मैसेज कर रहे हैं शाहीन फातिमा जी के साथ और फरमाइशी गीत लिख भेजा है। और इसी के साथ अब प्ले करते हैं अगला गाना जिसकी फरमाइश हमारे पास आई थी विजय महोबिया जी की ओर से। कविता विशाल, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी, सलोनी और पेंटर बाबू इनके साथ इस फरमाइश में शामिल है। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से आई है ये फरमाइश। बहुत ही खूबसूरत गाना है, सुनिए और एंजॉय कीजिए।

अंजाम की क्यों फिक्र करूं? खूबसूरत आगाज तो है, कल मेरा नहीं था तो क्या, आज तो है। मेरे पंख नहीं फिर भी जोरे परवाज तो है, क्यों ना सुनूं दिल का मेल बॉक्स, संग मेरे मल्लिकाए तरन्नुम, नाज तो है। क्या बात है, बड़ा ही खूबसूरत ये मैसेज भारत भूषण साहब ने भेजा है। अंजू श्रीवास्तव दिवेंदु भूषण संस्कृति और पौरुष के साथ व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से और भेज दिया है साथ में आज के म्यूजिक पीस से जुड़ा गाने का मुखड़ा यानी सही जवाब। और इसी के साथ अगला मैसेज बड़ा ही खूबसूरत तो है ही, लेकिन बड़ी मेहनत की है इसको लिखने में और भेजने में, क्यों? ध्यान से सुनिए और फिर आप समझ जाएंगे। ए नाज हमें क्यों करती हो नजरअंदाज, ए नाज हमें क्यों करती हो नजरअंदाज, माना कि आप पर सभी श्रोतागण को है नाज, इसीलिए तो उठाते हैं सब नाज। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर बिगड़ गया मामला, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आज तो इतना खूबसूरत सुनवा दिया म्यूजिक पीस जिसका देना था मुश्किल जवाब, क्योंकि सायरा बानो है इतनी भोली कि शागिर्द बनना पड़ेगा हमें जॉय मुखर्जी का भले ही आईएस जौहर हूँ उस्ताद। क्या बात है सर, क्रिएटिविटी फुल दिखाने की कोशिश की है आपने और काफी हद तक आप वहां पहुंच भी गए हैं, और साथ इसके साथ ही रिवील कर दिया है आपने बिल्कुल सही जवाब भी, फिल्म थी शागिर्द। ज्यादातर लिसनर्स ने इस गाने को पहचान लिया है और इस गाने को मैं आपको सुनवाऊं और बताऊं वो सभी नाम जिन्होंने इस म्यूजिक पीस को पहचाना और भेजे बोल बिल्कुल सही। उससे पहले गाने के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। जनाब ऑल टाइम चार्ट बस्टर गाना है ये, जो हिस्सा है साल 1967 में आई फिल्म शागिर्द का, जहां लता जी की मीठी आवाज में सायरा जी बड़े प्यार से जॉय मुखर्जी साहब को साफ साफ कह रही हैं।

कि ये दिल विल प्यार व्यार ये सब मैं क्या जानू। मैं तो बस तुम्हें अपना मानती हूँ, तुम्हें अपना जानती हूँ और मेरे लिए इतना ही काफी है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का सुपरहिट म्यूजिक मजरूह सुल्तानपुरी साहब के लिखे बोलों पर आप सुनते हैं और बस खो जाते हैं कहीं। और जिन्होंने अपने जवाब में लिखा और कुछ नहीं बल्कि कही बात बिल्कुल यही, वो थे प्रकाश गोगिया दिल्ली से, बबलेश पवार गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, कौशल्या देवांगन बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, आफ्ताब अंसारी गंज डुंडवारा यूपी से, मधुबाला कोटला दिल्ली से, सईद अब्बासी साहब बुलंदशहर से, रामो ऑप्टिकल पलवल से, मनोहर लाल गांधी विजयनगर गाजियाबाद से, अनिल मोहन पहाड़गंज से, धर्मेंद्र चीपा भोपालगढ़ राजस्थान से, फारूक अली खान गुन्नौर यूपी से, अत्तर सिंह समयपुर दिल्ली से और आखिर में भारत भूषण बेंगलुरु से। जिनके नाम नहीं हो पाए शामिल उनसे मांगती हूँ माफी और साथ में सुनाती हूँ ये गाना आपको और करती हूँ वादा कि इस गाने के बाद फिर समाचारों के बाद दोबारा मिलूंगी आपसे। कार्यक्रम होगा तस्वीर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने की बात भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं जो समृद्धि और विकास की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थीं। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी, डोमेन अवेयरनेस, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलें, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगे और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया, उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रूपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83 रूपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो में से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बात की और उन्हें रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने इस संबंध में जानकारी दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वाली मॉर्निंग। ट्यून कर चुके हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज, जहां मैं यानी कि आपकी होस्ट और घुमक्कड़ दोस्त नाज आ गई हूं एक बार फिर लेकर आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है तस्वीर। तो हो जाइए गंभीर, क्योंकि मैं देने वाली हूं आपको एक हिंट उस जगह के बारे में जहां की सैर आज आप मेरे साथ करने वाले हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवार। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी थी, आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो, कहां की रानी थी? बस यही तो गैस करना है कि बुंदेलखंड का द्वार और रानी लक्ष्मीबाई की अमर गाथा से जुड़ा कौन सा है वो शहर जिसकी तस्वीर अब से लेकर ठीक 12 बजे तक आप मेरे यानी नाज के साथ सुनकर निहारने वाले हैं। fmgoldair@gmail.com पर कर दीजिए ईमेल या फिर तुरंत व्हाट्सएप मैसेज आप भेज दीजिए 9868 68753 पर। साथ ही एंजॉय कीजिए तस्वीर की प्लेलिस्ट से आज का ये पहला गाना भी, और भाई गाना जबरदस्त है तो ठुमका लगाना तो मस्ट है ही।

जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप। यूपी के ठुमके लगाते हुए हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश में ही, और शहर कौन सा है ये भी आपने बिल्कुल सही गेस किया है जी। तो किस किस ने सही गेस किया है ये भी बता देती हूँ। मेहर अरोड़ा, अनु बड़जात्या, प्रकाश गोगिया, कृष्ण कुमार गुप्ता, महेश अग्रवाल, गुरजोत सिंह खालसा, हेमा और उग्रसेन यादव जी का बिल्कुल सही जवाब के साथ और सही समय पर आया सही जवाब। तो नॉर्थ इंडिया के उत्तर प्रदेश राज्य में और उसके एक्सट्रीम साउथ में पहुंज नदी के किनारे पर बसे झांसी शहर की तस्वीर मैं आज आपको दिखाने और सुनाने जा रही हूं, जिसमें कई रंग हैं और हर रंग एक से बढ़कर एक है। हर एक पहलू पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले सवाल तो ये होना चाहिए ना कि नाज मैडम, झांसी पहुंचना कैसे है? तो डोंट फिकर, गिव योर ऑल अटेंशन ओनली हियर। सबसे आसान, सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता जरिया तो देखिए ट्रेन का रूट ही है, क्योंकि झांसी का रेलवे जंक्शन देश के हर बड़े शहर से सीधा संपर्क में है, यानी दिक्कत आपको कहीं नहीं आने वाली है। मुख्य रेलवे स्टेशन है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन यानी झांसी जंक्शन, जहां के लिए कई प्रीमियम ट्रेन्स आपको मिल जाएंगी, जो कम वक्त में आरामदायक सफर आपको मुहैया करवाएंगी। लेकिन अगर आपको जाना है बाय रोड, आप ठान ही चुके हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सीधा पकड़िए NH27, जो आपको झांसी तक लेकर जाएगा। दिल्ली, नोएडा या गाजियाबाद की तरफ से जा रहे हैं तो हाथ थामिए यमुना एक्सप्रेसवे और फिर NH44 का। विदाउट एनी डाउट आप 6 घंटों के अंदर झांसी में होंगे। बाय एयर अगर आपका प्लान बन रहा है तो आपको लैंड करना होगा या तो ग्वालियर एयरपोर्ट, जो झांसी से करीब 120 किलोमीटर दूर है, या फिर लखनऊ एयरपोर्ट पर भी आप लैंड कर सकते हैं, जहां से 300 किलोमीटर का सफर आपको झांसी तक के लिए करना पड़ेगा। जनाब, किस मौसम में और किस किस लोकेशंस को घूमने का बनाए प्लान झांसी के अंदर बताऊंगी जरूर, पर पहले ये अगला गाना तो सुन ली।

भाई गुलजार साहब का कॉन्टेक्स्ट इस गाने में थोड़ा अलग है, लेकिन आप पहुंचे हुए हैं झांसी मेरे यानी नाज के साथ, जो कि जाना जाता है बुंदेलखंड के एंट्रेंस यानी द्वार के रूप में भी। पहुंच और बेतवा नदी के बीच 285 मीटर की औसत ऊंचाई पर बसे झांसी में हैं आप, जहां आप चाहे इतरा के चलिए या फिर आंचल लहराते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। बस मौसम का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा। एक चट्टानी पठार पर होने की वजह से झांसी का टेम्परेचर जरा हाई रहता है, तो बेस्ट यही है कि आप यहाँ घूमने के लिए चुने सर्दियों का मौसम, यानी अक्टूबर से मार्च के बीच आपको यहाँ आना चाहिए, जब टेम्परेचर आपको झांसी में मिलेगा 10 से 25 डिग्री के बीच, धूप होगी हल्की हल्की, जिसमें पैदल घूमना बहुत ही आसान हो जाता है। और एक खास बात ये भी है कि अक्टूबर और नवंबर के बीच आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं कई तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स और खूबसूरत झांकियां भी। अप्रैल से जून यानी गर्मियों के मौसम को छोड़कर आप मॉनसून यानी जुलाई से सितंबर के बीच भी झांसी की सैर कर सकते हैं, जब बारिश के चलते यहाँ की तस्वीर के साथ साथ आपकी तबीयत भी हो जाएगी हरी भरी। इंजॉय कीजिए ये अगला गाना और जल्दी से वापस आना, क्योंकि झांसी के बारे में अभी बहुत कुछ है आपको।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरदावली सी वह आई झांसी में। इतिहास के पन्नों में वैसे तो झांसी की कहानी और इसकी तस्वीर बहुत बड़ी और लंबी और पुरानी भी है, लेकिन जो सबसे गहरा रंग झांसी की तस्वीर का है वो जुड़ा है झांसी की रानी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई से, जिनका ताल्लुक झांसी से केवल राजसी नहीं था, बल्कि झांसी तो गवाह बना है उस अमर गाथा का, जिसे सुनकर समझकर और गर्व करते हुए हम सभी बड़े हुए हैं। मणिकर्णिका या मनु, वैसे तो उनका जन्म यूपी के ही वाराणसी में हुआ था, लेकिन उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था और यहीं उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई रखा गया और फिर वो बन गईं झांसी की रानी, जिनकी कहानी हमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने

बखूबी सुनाई है। साल 1853 में राजा गंगाधर राव के निधन के बाद जब अंग्रेजों ने अपनी हड़प नीति के तहत झांसी को कब्जाने की कोशिश की तो रानी ने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और फिर क्या हुआ ये तो आप सभी जानते हैं। झांसी की धरती गवाह बनी रानी लक्ष्मीबाई के अथाह संघर्ष और उनके बलिदान की। कम शब्दों में कहें तो झांसी वो जमीन है जिसने रानी लक्ष्मीबाई को न सिर्फ उनकी पहचान दी बल्कि उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया।

और इस गाने से पहले चूंकि हम बात कर रहे थे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, तो फिर चलिए उन्हीं के रानी महल मैं आपको लेकर चलती हूँ, जिसकी दीवारों और छत पर आप कई रंगों से सजी खूबसूरत नक्काशी देखते हैं। और हिस्ट्री में अगर है आपकी दिलचस्पी तो जरूर घूमिए झांसी म्यूजियम भी, जो न सिर्फ झांसी बल्कि पूरे बुंदेलखंड की तस्वीर आपको दिखाएगा, साथ ही रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से जुड़े भी कई पहलू आप यहां जानेंगे। चंदेल और गुप्त राजवंश के समय के हथियार, सिक्के, पांडुलिपियां और प्राचीन मूर्तियां भी यहां पर सहेज कर रखी गई हैं, जिन्हें आप देखिए और जुड़ जाइए हमारे इतिहास से। और इसके बाद बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा झांसी का हिस्टोरिकल किला, जिसे देखने ही यकीनन ज्यादातर टूरिस्ट झांसी आते हैं। झांसी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो बंगरा नाम की पहाड़ी पर मौजूद है और जिसे 17th सेंचुरी में बनवाया गया था ओरछा के राजा बीर सिंह देव के द्वारा। किले के अंदर वो जगह आपको सबसे पहले देखनी चाहिए जहां से रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े बादल पर सवार अपने बेटे को पीठ पर बांधकर कूदी थीं। और इसके साथ ही किले के अंदर आप देखेंगे कई कड़क बिजली तोप, गुलाम गौस खान की मजार, शिव मंदिर और गणेश मंदिर भी है यहां, जहां रानी और राजा गंगाधर राव का विवाह हुआ था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हरगिज मिस नहीं करना यहां शाम को होने वाला लाइट एंड साउंड शो, जो झांसी के संपूर्ण इतिहास को आपके सामने लाकर रख देगा, वो भी बड़ी ही खूबसूरती से।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार, मैं प्राची सिंह, बटरफ्लाई गर्ल ऑफ इंडिया, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर बधाई देती हूँ। मेरी एक बहुत ही खास मेमोरी है आकाशवाणी के साथ। जब मैं कॉलेज जाती थी पापा के साथ गाड़ी में, हमेशा आकाशवाणी पे न्यूज बुलेटिन सुनते हुए जाती थी और मैं बहुत ही ध्यान से सुनती थी, क्योंकि मुझे मालूम था न्यूज बुलेटिन खत्म होते ही पापा मुस्कुराते हुए बोलेंगे, अच्छा समराइज करके बताओ। ये जो वहीं से आदत मेरी शुरू हुई थी न्यूज को पढ़ के हर दिन अपडेटेड रहने की, और ये जर्नी मेरी अभी तक चली आ रही है। मैं एक बार फिर से आकाशवाणी को 90 इयर्स कंप्लीट होने पे बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ। आप एक आवाज ही नहीं, एक पहचान है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तस्वीर है प्रोग्राम का नाम, जहां सुन रहे हैं आप मेरे यानी नाज की जुबानी झांसी की कहानी। और यहां की हिस्ट्री को बयां करते हिस्टोरिकल प्लेसेस के बाद थोड़ी सी सैर यहां की ज्योग्राफी की भी कर लीजिए। और इसके लिए हमें चलना होगा बरुआ सागर एंड फोर्ट, जो बेतवा नदी के किनारे एक बड़ी ही सुंदर झील है। पहाड़ी के ऊपर बना किला इस झील का बड़ा ही सुंदर नजारा आपको दिखाता है, इसीलिए आपको इस किले की सैर भी करना जरूरी है। पास में ही जराय का मठ नाम से एक प्राचीन मंदिर भी है, जो वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना माने उदाहरण आपके सामने पेश करता है। और फिर इसके बाद आप जाइए लक्ष्मी तास के किनारे बने महालक्ष्मी मंदिर, जो झांसी के शाही परिवार की कुल देवी महालक्ष्मी को समर्पित है। माना जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई अक्सर यहाँ देवी लक्ष्मी की पूजा करने आया करती थीं। और क्या कुछ है यहाँ झांसी में घूमने और ट्राई करने के लिए, इस पर बातें होती रहेंगी इस अगले ट्रैक को सुनने और एंजॉय करने के बाद।

हिल्स ऑफ झांसी जब आप यहाँ घूम रहे हों, बिकॉज झांसी एक हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ की विरासत को सहेज कर रखना न सिर्फ सरकार की बल्कि हम सब की जिम्मेदारी भी है। तो रिक्वेस्ट है आपसे यही कि किसी भी जगह को गंदा करना है नहीं, ना ही कोई दीवार खुरचनी है और लिखना है अपना नाम, वरना भुगतना पड़ सकता है इसका गंभीर परिणाम। कई जगहों पर आपको सेफ्टी रेलिंग के पार ना जाने की सलाह दी जाएगी या फिर कुछ जगहों पर बिना इजाजत ड्रोन या फिर ट्राइपॉड ले जाने की होगी मनाही। तो आपको क्या करना है? फॉलो करने हैं सभी रूल्स और एंजॉय करना है झांसी का ये खूबसूरत सफर मेरे यानी नाज के साथ। बताऊंगी झांसी से जुड़े कुछ और अनोखे फैक्ट्स और साथ में यहाँ के खाने की बात भी तो होगी, लेकिन उससे पहले किशोर दा की कही ये बात भी तो सुननी होगी।

और कयामत तो जनाब तब आएगी जब चखेंगे आप झांसी का बुंदेली स्वाद। यूपी और एमपी दोनों ही जगहों की झलक आपको झांसी के खाने में नजर आएगी। सफेद मटर के साथ आलू की टिक्की, मूंग दाल के मंगौड़े, गर्मा गर्म समोसे, जलेबी के साथ आप झांसी की गलियों में चख सकेंगे। और खास करके सुबह के ब्रेकफास्ट में अगर आपने यहाँ की बेढ़ई कचौड़ी के साथ आलू की तीखी सब्जी चख ली ना, तो बस काफी देर तक आप और कुछ नहीं।

चखना चाहेंगे, गारंटी है इस बात की। मीठे में टेस्ट कीजिए यहाँ के फेमस ठगुआ के लड्डू, जो बेसिकली खोया, सूजी, चीनी और गोंद से बने होते हैं। और चाशनी में डूबी रस बरिया को ट्राई करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जो उड़द दाल और खोए से बनने वाली एक जबरदस्त मिठाई है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का घर, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की कर्मभूमि, या फिर देश की पहली शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत करने वाला शहर झांसी को चाहे आप किसी भी नाम से जानिए, लेकिन लब्बो लुआब माने निचोड़ इस शहर का यही है कि जहां इतिहास की झलकियों के साथ हर गली में घुली हो हंसी, वही वही तो है हमारा प्यारा झांसी। उम्मीद है झांसी की ये तस्वीर और इसके रंग मेरी यानी नाज की जुबानी आपको जरूर पसंद आई होगी। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जा रही हूँ फिलहाल इस वादे के साथ कि फिर कभी कहीं दूर साथ चलेंगे और करेंगे ढेर सारी बातें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने की बात भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं जो समृद्धि और विकास की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थीं। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलें, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया, उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रूपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों को का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बात की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने इस संबंध में जानकारी दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। यह मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने बताया कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भीषण लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Quad Foreign Ministers meeting concluded in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired the meeting, which was attended by U.S. Secretary of State Marco Rubio, Foreign Minister of Australia Penny Wong, and Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. Jaishankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. He said the Quad nations are open societies who foster innovation and creativity in the quest of growth for prosperity. He underlined that as democratic nations, they also devoted their attention to countering the common threat of terrorism.
2: As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade, or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world.
1: Dr. Jaishankar said bilateral exchanges were devoted to the current state of the world, and these four nations focused on issues of particular relevance to the Indo-Pacific. He said the maritime domain has seen a steady expansion of collaboration, including surveillance and domain awareness, logistics network, undersea cables, and disaster relief activities, among others. U.S. Secretary of State Marco Rubio said Quad countries made further progress on operationalizing their relationship on the areas that they can cooperate.
3: On the areas of cooperation, and it's also interesting that on the areas that we are working together on have become even more relevant and more important because of recent events around the world. And so today I think we'll make even further progress on operationalizing our relationship on the areas that we can cooperate on. And by the way, the most interesting thing about the Quad is not simply that it is a gathering of four strategic allies in which we come together to sort of compare notes about areas of common interest, but also, and it's not only is it increasingly becoming a form by which we begin to take action.
1: Directorate General of Civil Aviation DGCA has issued a standard operating procedure SOP for airlines after the WHO declared the Ebola disease outbreak as public health emergency of international concern in the Democratic Republic of Congo and Uganda. The DGCA said airlines operating connectivity with Uganda and Congo are required to ensure mandatory filing and collection of self-declaration forms before passengers disembark. Defence Minister Rajnath Singh has said the successful rescue of 300 tourists stranded in cable cars in Gulmarg by a joint rescue team reflects the swiftness, professionalism, courage and coordination of India's disaster response agencies. In a social media post, Mr. Singh lauded the efforts of the joint team comprising the Indian Army, Jammu and Kashmir Police, NDRF, SDRF and Civil Administration for carrying out the challenging operation with efficiency and resolve. Today is the day of Arafat, considered the holiest and most significant day of the annual Hajj pilgrimage. It is being observed in Saudi Arabia. More than 1.5 million Muslims from across the world have moved from Mina to the plains of Mount Arafat to offer prayers and seek forgiveness and mercy from God. Pilgrims had begun arriving in Mina yesterday ahead of the key Hajj rituals. The gathering on the ninth day of Dhul Hijjah is regarded as the spiritual peak of the pilgrimage and is among the largest religious congregations in the world. Indian authorities in Saudi Arabia have said elaborate arrangements have been made for more than 1,75,000 Indian pilgrims performing Hajj this year. In Uttar Pradesh, there is no respite from heat wave as the temperature is oscillating between 43 to 47 degrees at many places. Bundelkhand region is the worst hit, where temperature in almost all districts have crossed the barrier of 45 degrees Celsius. Banda was recorded as one of the hottest places in the country with 47.6 degrees. And with that, we end this news bulletin.

Garden. नमस्कार, स्वागत, प्रणाम। आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है घर आंगन। आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर भी और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर भी। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त राधा पाठक। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। जिंदगी में असली सुकून और आनंद बड़ी बड़ी सफलताओं से ज्यादा रोजाना मिलने वाले छोटे छोटे पलों में छुपा होता है। जी हाँ, बड़ी बड़ी बातों में क्या रखा है, चलो आज छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हैं। भाग दौड़ भरी इस मसरूफ जिंदगी में सुकून के कुछ हसीन लम्हे बुनते हैं। सुबह की वो चाय और चाय की वो पहली चुस्की और खिड़की से आती धूप की वो मुस्कान, पौधों पर महकती हुई नई नई कलियां जैसे कह रही हो, थम जा ए इंसान। माँ के हाथों के खाने का वो अनोखा स्वाद और बरसों पुराने किसी मित्र की याद, रास्ते में चलते हुए गीत सुनना या कहिए सुरीला गीत सुनना और अकेले बैठकर नए नए सपने बुनना, बड़ी खुशियों के इंतजार में हर पल को यूं न गंवाना। ये छोटी छोटी राहें ही मंजिल तक ले जाएंगी, बस हर एक छोटे पल को दिल से मुस्कुरा कर जीना। जी हाँ, यही तो जिंदगी है।

लता मंगेशकर की आवाज में अभिमान फिल्म का ये गीत सुना। जी हाँ, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। अगर हम यही सोच लें कि हर पल में खुशियां ढूंढें तो क्या नहीं मिल सकता। और हमारे घर की जो महिलाएं हैं, देखिए महिलाओं का ये खास कार्यक्रम है घर आंगन, तो हम महिलाओं से तो बात जरूर करेंगे, महिलाओं के लिए ही है और महिलाएं तो ढूंढती भी हैं। सबसे ये अनुरोध है कि हर पल में खुशियां ढूंढिए। अगर आप खुशियां ढूंढेंगे तो खुशियां ही मिलेंगी, और अगर तनाव का माहौल में भी खुशियां अगर आपने ढूंढ ली तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। देखिए आकाशवाणी मना रहा है अपने 90 वर्षों का सफर, ध्वनि तरंगों की ताल पर चलता है ये सफर। आकाशवाणी एक ऐसी विरासत जो आज भी जीवित है। आकाशवाणी का साधारण सा दिल्ली स्टेशन अब एक ऐसा केंद्र बन गया जहां आवाजों को पंख मिले, इतिहास को एक माइक मिला। इन शांत दीवारों से ऐसी गूंज निकली जिसने एक ऐसे राष्ट्र को आकार दिया जो तब से लेकर आज तक कालातीत, भावपूर्ण और अविस्मरणीय बना हुआ है। आकाशवाणी का बाह्य सेवा विभाग 100 से अधिक देशों में प्रसारण करता है, वैश्विक स्तर पर भारत की आवाज पहुंचाता है और प्रवासी भारतीयों को जोड़ता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर खरा उतरते हुए AIR का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण में उच्चतम पेशेवर नैतिकता और मानकों का पालन करते हुए इस विशाल देश के प्रत्येक निवासी को विभिन्न भूभागों में 2400 घंटे सातों दिन सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचार और विचार उपलब्ध करवाता है। जी हाँ, ये है आकाशवाणी। अब आकाशवाणी पे रामचरितमानस की रिकॉर्डिंग ऐतिहासिक रूप से हुई, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। 1980 में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र ने रामचरितमानस की रिकॉर्डिंग आरंभ की। ये परियोजना भोपाल केंद्र के तत्कालीन स्टेशन डायरेक्टर समर बहादुर सिंह के कुशल मार्गदर्शन में शुरू की गई। गोस्वामी तुलसीदास के इस महान महाकाव्य के सातों कांडों को रिकॉर्ड करने के लिए 14 लोक कलाकारों की एक विशेष टीम बनाई गई, जिसमें ब्रजभूषण बसु, सुरेखा केलकर, जयश्री थत्ते और रामकिशन चंदेसरी जैसे नाम शामिल थे। रिकॉर्डिंग की यह लंबी प्रक्रिया 1980 से 1992 तक चली, जिसके परिणाम स्वरूप 62 घंटे से अधिक समय का एक विशाल और सुरीला संकलन तैयार हुआ। जी हाँ, रामचरितमानस। अपनी प्रामाणिकता और मधुर प्रस्तुति के कारण ये संस्करण हिंदी भाषी क्षेत्रों में बेहद लोकप्रिय हुआ और इसे आकाशवाणी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे डिजिटल सीडी के रूप में भी जारी किया गया।

90. मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन और आज के इस कार्यक्रम में मैं आपकी रेडियो दोस्त राधा पाठक। अब हम अपनी महिलाओं से इतनी सारी बातें हर बार करते हैं, रोज करते हैं, आके बताते हैं उनको। अब देखिए मिशन लाइफ के 7 प्रमुख विषय हैं, कुछ दैनिक आते हैं और हमारी महिलाएं इन बातों को समझ भी रही हैं और बहुत सारी महिलाओं ने तो हमारी जो बातों को है वो सीरियसली भी लिया है। अब आज जो मैं बताने वाली हूं ना उसे बिल्कुल सीरियस लेना बहुत जरूरी है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं अगर इस पे अमल करते हैं तो। अब मिशन लाइफ के ना 7 थीम्स होते हैं जो दैनिक आदतों में हमें शामिल करने चाहिए। अब विश्व पर्यावरण दिवस 2026 में ठोस कचरा प्रबंधन नियम है, मतलब जो 7 आदतें हैं उसमें से एक आदत है कि जो कचरा आपके घर से निकलता है वो रिसाइकिल होना चाहिए और जो ई वेस्ट कचरा है वो आप घटाएं अपना। तो इसके लिए है कि भोजन को बर्बाद होने से बचाएं, शादी विवाह समारोह में जो आप जाते हैं बर्तनों डिस्पोजेबल बर्तन जो होते हैं उसकी जगह पारंपरिक और दोबारा इस्तेमाल वाले बर्तनों का उपयोग करें। घर में भी ऐसा ही करें, ज्यादा मेहमान आ जाएं तो ज्यादा प्लेट्स हो जाएं मांजनी पड़ेंगी कोई बात नहीं, लेकिन आप डिस्पोजेबल का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे कचरा बहुत ज्यादा होता है। अपने मोबाइल और लैपटॉप को बार बार बदलने की बजाय रिपेयर कराकर उसका जीवन काल बढ़ाया जा सकता है। इसे ई जो वेस्ट है, ई कचरा है, वो घटाया जा सकता है। अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्स को केवल अधिकृत ई कचरा रिसाइकल्स को ही सौंपना चाहिए, यानी कि आपका लैपटॉप खराब हो गया तो आप ऐसे ही जाने दें उसे, या कोई मोबाइल है पुराना तो वो आपको एक अधिकृत ई कचरा वाले को ही देना है। अब देखिए स्रोत पर ही कचरे के 4 स्ट्रीम का जो है अलग अलग किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है कूड़े का। अब ज्यादातर आप लोगों ने जगह जगह दीवारों पर भी लिखा है गीला कचरा, सूखा कचरा, हरा डस्टबिन, नीला डस्टबिन। बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि बहुत जरूरी चीजें हैं कि गीला कचरा कहाँ जाना चाहिए, सूखा कचरा कहाँ जाना चाहिए। गीला कचरा यानी जो आपका वेट वेस्ट है, यानी रसोई का कचरा, बचा हुआ भोजन, फलों और सब्जियों के छिलके, इन्हें खाद या बायोगैस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और नए नियमों के तहत अब हर नागरिक को, हर गृहस्थ के लिए कचरे को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर कूड़ा देना कानूनी रूप से अनिवार्य हो गया है। इसलिए अपने घर में ही इसका प्रबंधन करना बहुत जरूरी है कि हम सूखा कचरा अलग रखें, गीला कचरा अलग रखें। जो ड्राई वेस्ट है उसमें प्लास्टिक, कागज, गत्ता, धातु, कांच और रबड़, इसे रिसाइकिलिंग के लिए अलग से भेजा जाता है। अब सिंगल यूज यानी एक बार यूज होने वाले प्लास्टिक को बिल्कुल ना कह दें ताकि कचरा कम हो, और ई वेस्ट भी घटाना बहुत जरूरी है। ये कदम जो होते हैं ना पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। हमारे तरफ से उठाए गए छोटे छोटे कदम है ना, वो आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, ताकि हमारी जो प्राथमिकताएं हैं हम अगर छोटे छोटे बदलाव करें नामुमकिन कुछ भी नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि आप इस छोटी छोटी आदतों को अपनाएं। कहीं भी जाकर डिस्पोजेबल में आप चाय पीते हैं तो ना पीजिए, अपना स्टील का एक ग्लास अपने साथ रखिए, या जैसे स्टील का ग्लास तो वही रख सकते हैं जो ऑफिस जाते हैं वो अपने साथ रखिए, या फिर वो कूलर वाली चाय पीजिए। अब सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें, कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें। घर से बाहर निकलें तो कपड़े या जूट का थैला साथ लेकर जाएं। प्लास्टिक की थैलियां, स्ट्रॉ, डिस्पोजेबल का पूरी तरह से बहिष्कार कर दें। चीजों को दोबारा

इस्तेमाल करें। गीला सूखा कचरा अलग अलग करें, जरूरत के मुताबिक ही खरीदें। ज्यादा चीजें खरीदने से कबाड़ बढ़ाने से कुछ नहीं होता। अब ई कचरा घटाने हैं, गैजेट्स को रिपेयर कराएं, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स को रिसाइकिल करें और काम के जो उपकरण हैं जो ठीक ठाक हैं उन्हें दान भी किया जा सकता है। थोड़ी बहुत चीजें ऐसी भी होती हैं जो हम नहीं यूज करें, किसी को दे दीजिए, किसी के काम ही आएंगी। क्यों है ना, ठीक बात।

शगुन फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। अब चल रहा है अधिक मास, पुरुषोत्तमन मास या मल मास चल रहा है ना, 16 मई से शुरू हो चुका है। अब देखिए कुछ लोगों को पता ही नहीं है, अब बहुत सारी लोग ये सोच रहे हैं। आज मैं मेट्रो में आ रही थी तो कुछ लड़कियां भी यही पूछ रही थी कि यार ये पुरुषोत्तमन मास होता क्या है, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास जो कहते हैं, क्योंकि इतना सारा अब सोशल मीडिया है, रील्स हैं, तो लोगों को पता भी चल रहा है कि भाई अधिक मास चल रहा है। अब अधिक मास की सबको ये रहता है कि जिज्ञासा भी है कि है क्या, जिनको पता है उनको पता है और जिनको नहीं पता उनके लिए हम बता देते हैं। अधिक मास हिंदू कैलेंडर का एक अतिरिक्त महीना है जो हर 3 साल में एक बार आता है। इसे पुरुषोत्तम मास या मल मास के नाम से भी जाना जाता है। सरल शब्दों में जिस तरह अंग्रेजी कैलेंडर में हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, यानी फरवरी में 29 दिन आते हैं, ठीक उसी तरह हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में एक पूरा अतिरिक्त महीना जुड़ जाता है, जो इस बार ये ज्येष्ठ का महीना है, यानी जेठ का महीना है जो 2 महीने का है। अब क्यों आता है? हिंदू पंचांग सूर्य और चंद्रमा दोनों की चाल पर आधारित होता है। सौर वर्ष सूर्य का एक चक्र लगभग 365 दिन और 6 घंटे का होता है और चंद्रमा का जो वर्ष है वो एक चक्र लगभग 354 दिन का होता है। अब इन दोनों के बीच का हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर आ ही जाता है। अगर इस अंतर को ठीक न किया जाए तो हमारे सभी त्योहार धीरे धीरे अपने मौसम से आगे पीछे हो जाएंगे। इस अंतर को पाटने के लिए हर 32 महीने 16 दिन और 4 घंटे के बाद कैलेंडर में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है, इसी को अधिक मास कहते हैं। अब पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं? हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हर महीने का कोई ना कोई स्वामी देवता होता है, लेकिन इस अतिरिक्त महीने का कोई स्वामी नहीं था, कोई देवता नहीं था, तो इसे अपवित्र मानकर मल मास कहा गया। दुखी होकर ये महीना भगवान विष्णु के पास गया, तब भगवान विष्णु ने इसे अपना उत्तम नाम पुरुषोत्तम दिया। अब कहा कि मैं इस महीने का स्वामी हूँ। भगवान विष्णु का नाम मिलने के कारण ही यह महीना आध्यात्मिक रूप से सबसे पवित्र और फलदायी बन गया। अब फलदायी कैसे? ये महीना पूरी तरह से भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित है। माना जाता है इस महीने में किए गए जप, तप, दान और व्रत का फल सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक मिलता है। इस महीने में केवल आध्यात्मिक कार्य होते हैं, पूजा पाठ, भक्ति, शादी ब्याह, गृह प्रवेश, मुंडन या नया बिजनेस शुरू करने के लिए मांगलिक कार्य यानी इस महीने में नहीं होते हैं, लेकिन ये महीना सिर्फ पूजा पाठ के लिए है।

नगमा फिल्म में ये गीत आप सुन रहे थे शमशाद बेगम की आवाज में। और एफएम गोल्ड पे चल रहा है कार्यक्रम घर आंगन। हम आज बात करेंगे हाथ के बने खिलौनों की। अब देखिए, हम इतनी वातावरण को संभालने की बातें कर रहे हैं, आपसे जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एनवायरमेंट का आप ध्यान रखिए, तो ये खिलौने जो हैं वो क्यों प्लास्टिक के या किसी और मटेरियल के लेने हैं। हाथ से बने खिलौने केवल बच्चों के खेलने की वस्तु नहीं होते बल्कि हमारी कला, संस्कृति और परंपरा का हिस्सा भी होते हैं। भारत में लकड़ी, मिट्टी, कपड़े, बांस और ऊन के बने खिलौनों की परंपरा बहुत पुरानी रही है। आज के समय में हैंडमेड टॉय बिजनेस भी एक अच्छा रोजगार और स्वरोजगार का माध्यम बनता जा रहा है। अब हाथ के बने खिलौनों के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे लकड़ी के खिलौने आते हैं। अब बचपन में हम लोगों ने तो लकड़ी के खिलौने बहुत देखे हैं, आजकल भी मिलते हैं, लेकिन लोग सिंथेटिक खिलौने बच्चों को देना पसंद करते हैं जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। लकड़ी के खिलौने जैसे चन्नपटना कर्नाटक के रंगीन खिलौने, मिट्टी के खिलौने जैसे गांव और मेलों में लोकप्रिय होते हैं, कपड़े और ऊन के खिलौने जैसे टेडी बियर, गुड़िया, बांस और जूट के खिलौने जैसे जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, शैक्षणिक खिलौने होते हैं, बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ाने वाले पजल्स होते हैं। लकड़ी के हाथ से बने खिलौनों की विशेषताएं ये होती हैं कि वो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, सुरक्षित होते हैं और प्राकृतिक सामग्री से बने होते हैं। भारतीय संस्कृति की झलक हर खिलौने में अलग और विशेष होती है। छोटे कारीगरों को रोजगार मिलता है, व्यापार की संभावनाएं बढ़ती हैं। आज लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक की जगह प्राकृतिक और सुरक्षित खिलौनों को पसंद करने लगे हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो है, क्यों ये कचरा, इतना प्लास्टिक क्यों वेस्ट जनरेट करना है। इसी कारण हस्तनिर्मित खिलौनों की मांग भारत में और विदेशों में दोनों में बढ़ रही है। अब कैसे व्यापार शुरू किया जाए, आप ये भी तो सोचेंगे। घर से शुरुआत करें, कम पूंजी में छोटे स्तर पर काम शुरू किया जा सकता है। सोशल मीडिया, वेबसाइट और ई कॉमर्स के माध्यम से आप बिक्री की जा सकती है। आजकल तो बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म है जहां अपना बिजनेस आप कर सकते हैं। स्थानीय मेले या प्रदर्शनियां भी लगा सकते हैं। हस्तशिल्प मेलों में स्टॉल लगाकर भी ग्राहक बढ़ाए जा सकते हैं। स्कूल और गिफ्ट शॉप से संपर्क कर सकते हैं। शैक्षणिक और सजावटी खिलौनों की अच्छी मांग होती है। अब खिलौनों की गुणवत्ता अगर अच्छी हो, रंग और सामग्री बच्चों के लिए सुरक्षित हो, आकर्षक पैकिंग करें, सोशल मीडिया पर प्रचार करें, उचित मूल्य रखें और सरकारी सहायता भी मिलती है। जी हां, भारत सरकार वोकल फॉर लोकल और हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। अधिक जानकारी के लिए आप एमएसएमई मिनिस्ट्री या स्टार्टअप इंडिया इन वेबसाइट्स पर चेक कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हाथ से बने खिलौने भारतीय कला और परंपरा की पहचान है। ये व्यापार कम निवेश में शुरू होकर बड़े स्तर तक पहुंच सकता है और ये आपकी शौक भी तो है। ऊन के खिलौने आप बनाइए, कपड़े के खिलौने बनाती रहती हैं लेडीज, बना बना के बुन बुन के थोड़ा फूल थोड़ा कुछ बनाती हैं, मेट्रो स्टेशन के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर स्टॉल लगाकर बेचती हैं। ये रचनात्मकता, गुणवत्ता और सही प्रचार पर ध्यान दिया जाए तो ये व्यापार रोजगार और आत्मनिर्भरता का अच्छा माध्यम बन सकता है, क्योंकि कम निवेश में शुरू कर बड़े स्तर पर पहुंचा जा सकता है। कोशिश तो कीजिए।

मासूम फिल्म की रचना आपने सुनी गौरी बपत, गुरप्रीत कौर और वनिता मिश्रा की आवाजों में। अब कुछ भी कहिए, महिलाएं ही घर का केंद्र है, ठीक है ना? क्योंकि अब देखिए, महिलाओं का हमारा कार्यक्रम है लेकिन महिलाएं घर का केंद्र, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। जयशंकर प्रसाद जी अपनी कामायनी में लिखते हैं, जी हाँ कामायनी उनका एक महाकाव्य है, उसमें लिखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नटपत्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी के जीवन में जो प्रफुल्लता, शांति और आनंद है, वो उसकी अपनी उपलब्धि है, जी हाँ, क्योंकि वो हर हाल में खुश रहना जानती है। नारी का आनंद बहुत अर्थपूर्ण है क्योंकि वो घर का केंद्र है। महिलाएं जो हैं वो घर का केंद्र होती हैं। अगर वो उदास हैं, दीनहीन हैं, थकी हुई हैं, हारी हैं, तो सारा घर परिवार उनकी जो परिधि में घूमता है ना, वो उदास और हारा हुआ हो जाएगा। इसलिए महिलाओं का खुश रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर की जो धुरी है, घर का जो केंद्र है, वो महिलाएं हैं। एक स्त्री के जीवन में जो आनंद, शांति और प्रसन्नता होनी चाहिए, वो उसे नहीं मिल पा रही है। स्त्री का सुख अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो घर का केंद्र है। मैं बार बार एक ही बात इसलिए दोहरा रही हूं कि आप लोगों को समझ आए और आप खुद भी महसूस कीजिए इस बात को कि आपके घर में जो महिला है वो घर का केंद्र है। यदि वही उदास, निराश या पराजित अपने आप को समझने लगेगी, जिसके चारों ओर पूरा घर, पूरा परिवार उसके इर्द गिर्द घूमता है, तो सभी उदास और पराजित हो जाएंगे ना, है ना? और भारतीय संस्कृति में नारी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। नारी के महत्व, शक्ति और सम्मान को दर्शाते हुए कुछ श्लोक भी हैं, जैसे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा, आदर, सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं, और जहां नारियों का सम्मान नहीं होता, वहां कोई भी अच्छा कार्य फलभूत नहीं होता, यानी निष्फल हो जाता है। ऋग्वेद का कथन है कि गृहिणी ही घर कहलाती है। नारी के बिना घर की कल्पना नहीं की जा सकती। जो पुण्यात्माओं के घर में स्वयं लक्ष्मी के रूप में, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप में, बुद्धिमानों के हृदय में बुद्धि रूप में, और सज्जनों में श्रद्धा और कुल की मर्यादा के रूप में लज्जा रूप में निवास करती है, उसी देवी को हम नमस्कार करते हैं।

आशा भोसले लता मंगेशकर की थी आवाज़, ही फिल्म का नाम चोरी चोरी। जी हाँ, आप कैसे भुलाया भी जा सकता है, भुलाया ही नहीं जा सकता घर की महिलाओं को, यही तो उनका स्वरूप है क्योंकि वो घर का केंद्र है। और आज के समय में जो नारी है ना, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार की तरफ से भी चल रही है, जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण सबसे प्रमुख विषय है। अब देखिए, नारी शक्ति वंदन सम्मेलन भी आयोजित किए जा रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को विकसित भारत की नींव बताते हुए इसे लागू करने की दिशा में तेजी दिखाई गई है। आत्मनिर्भरता और सरकारी योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लाडली बहना जैसी योजनाओं का सक्रिय क्रियान्वयन भी चल रहा है और उन पर काम चल रहा है। अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो अपने आसपास के जो दफ्तर हैं वहां पता कीजिए। इसके अलावा छोटे व्यवसायों के लिए भी महिलाओं को बिना गारंटी ऋण सहायता दी जा सकती है। ये सब चीजें ना साइट्स पे उपलब्ध है। आजकल सोशल मीडिया है, आप डिजिटल हो चुका है इंडिया, तो आप गूगल पे या आप किसी भी ब्राउजर पे टाइप कीजिए महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं। अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो बिना गारंटी ऋण भी आपको सरकार दे रही है। अब बदलता सामाजिक दृष्टिकोण भी इसमें काम आ रहा है। अब महिलाएं न केवल घरेलू कार्यों तक सीमित है बल्कि वो निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भी अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं। संक्षेप में यानी शॉर्ट में मैं कह सकती हूं कि आज की भारतीय नारी सशक्तिकरण की ओर मजबूती से बढ़ रही है। उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए अभी और भी प्रयास किए जा रहे हैं और होने भी चाहिए, लेकिन घर में ये सब प्रयास तो चल ही रहे हैं, लेकिन घर में मैंने कहा ना, महिलाएं घर का केंद्र है, उन्हें खुश रखिए। उन्हें अगर खुश रखेंगे तो महिलाएं अगर खुश रहेंगी तो घर भी आनंदित रहेगा। इसलिए अगर वो रूठ जाएं तो मना लीजिए जरूर।

हैं छोटी छोटी खुशियां और इनको बस पकड़ लीजिए। और ये गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर मुकेश की आवाज में आज का पंची फिल्म से। मुझे यानी राधा को इस कार्यक्रम से दे इजाजत। नमस्कार, सुनते रहिए ये गीत।

आंगन आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीरों पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा, फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और

0: समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। संयुक्त प्रेस बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश को प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327 जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। ओस्लो में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और डी गुकेश ने क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद बेहद रोमांचक टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया, गुकेश ने विंसेंट कीमर को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। यह मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने कहा कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है दोपहर के 1:11:05। मैं आपका रेडियो हमसफर राम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में। आज के कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मशहूर भारतीय संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बारे में। इन्होंने सन 1963 से लेकर 1998 तक तकरीबन 635 हिंदी फिल्मों के लिए संगीत की रचना की और इस समय के लगभग सभी चर्चित फिल्म निर्माताओं के लिए काम किया। इनके द्वारा दिया गया संगीत भारतीय संगीत जगत के लिए एक अनुपम सौगात है।

लक्ष्मीकांत का पूरा नाम लक्ष्मीकांत शांताराम कुदलकर था। इनका जन्म 3 नवंबर 1937 को लक्ष्मी पूजन के दिन हुआ था। और प्यारे लाल का पूरा नाम प्यारे लाल राम प्रसाद शर्मा था। इनका जन्म 3 सितंबर 1940 को हुआ था।

प्यारीलाल वायलिन बजाने में माहिर थे तो वहीं लक्ष्मीकांत सारंगी बजाने में उस्ताद थे। कहा जाता है कि जब लक्ष्मीकांत 10 साल के थे तो उन्होंने लता मंगेशकर के एक कॉन्सर्ट में, जो कि कोलाबा में हुआ था, उसमें सारंगी बजाई। उनकी प्रस्तुति से लता जी इतनी प्रभावित हुईं कि प्रोग्राम के बाद उन्होंने लक्ष्मीकांत से बात की।

0: दोस्तों आज के कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम में हम बात करेंगे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचे गए गीतों के बारे में और उनसे जुड़े हुए कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में। लेकिन उससे पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म देव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं आपका दोस्त राम प्रकाश लेकर हाजिर हूँ कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल। और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बारे में। दोस्तों, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने सन 1963 में फिल्म पारसमणि के लिए संगीत की रचना करके अपने करियर की शुरुआत की। यह फिल्म आर्थिक रूप से काफी सफल हुई और इस फिल्म के दो गाने हंसता हुआ नूरानी चेहरा और वो जब याद आए बहुत याद आए सुपरहिट गाने रहे। इसके बाद उन्होंने फिल्म दोस्ती, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, आए दिन बहार के जैसी फिल्मों में संगीत देकर संगीत जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत ने फिल्म दोस्ती को 1960 के दशक की सबसे अधिक बिकने वाली हिंदी फिल्म एल्बम में से एक बना दिया।

एक बार जाने माने संगीतकार मदन मोहन किसी रेस्टोरेंट में रुके हुए थे। उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट के बाहर काफी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि ये भीड़ मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से ऑटोग्राफ लेने के लिए आई थी। इसके बाद मदन मोहन जी भी ऑटोग्राफ लेने के लिए इस भीड़ में शामिल हो गए। जैसे ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की नजर उन पर पड़ी तो वो चौंक गए और उन्होंने इस तरह से भीड़ में आने का कारण पूछा। इस पर मदन मोहन जी कहते हैं कि जिन्होंने ये दिल तुम बिन लगता नहीं जैसा गाना बनाया हो, ऐसी जोड़ी का ऑटोग्राफ तो मेरे पास भी होना चाहिए। दोस्तों, ऐसा गाना जिसके लिए मदन मोहन जी भी ऑटोग्राफ लेने पहुंच गए, आइए सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी द्वारा रचा हुआ ये बेहतरीन नगमा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कागज कलम नहीं इस बार।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा के साथ। दोस्तों, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने एक ऐसे गीत की रचना की जो मेरे लिए, आपके लिए और सभी के लिए बहुत ही खास हो जाता है। आप पूछेंगे कैसे? तो भाई वो इसलिए कि जन्मदिन चाहे मेरा हो, आपका हो या किसी का भी हो, ये गीत तो हम बजाते ही बजाते हैं। याद आया आपको मैं किस गीत की बात कर रहा हूं? अगर नहीं तो लीजिए ये गीत सुनिए, और अगर आज आपका जन्मदिन है तो मेरी तरफ से ये गीत उपहार के रूप में स्वीकार कीजिए।

दोस्तों, बात करें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की उपलब्धियों की तो इन्हें कई बार सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। सन 2024 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बात करें इनके संगीत से सजी कुछ चर्चित फिल्मों की तो फिल्म दोस्ती, मिलन, जीने की राह, अमर अकबर एंथोनी, सत्यम शिवम सुंदरम, सरगम, कर्ज, दो रास्ते, शोर, बॉबी, दुल्हन, एक दूजे के लिए, प्रेम रोग, हीरो, प्यार झुकता नहीं, मेरी जंग, राम लखन सौदागर और खलनायक जैसी फिल्में हैं जिन्हें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत ने अमर बना दिया।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज के कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में हम बात कर रहे हैं मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बारे में। दोस्तों, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सबसे बड़े ऑर्केस्ट्रा के उपयोग के लिए भी जाने जाते हैं। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के एक गीत चंचल शीतल निर्मल कोमल में उन्होंने लगभग 72 वायलिन वादकों का उपयोग किया था। दोस्तों, लगभग 35 साल तक एक से बढ़कर एक संगीत की रचना करने के बाद सन 1998 में लक्ष्मीकांत की मृत्यु के साथ ही इस जोड़ी की 35 साल लंबी साझेदारी समाप्त हो गई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने हर तरह के संगीत की रचना की। उनके अमर संगीत से भारतीय संगीत जगत हमेशा रोशन रहेगा और हम सभी के दिलों में उनका संगीत सदियों तक अपनी छाप छोड़ता रहेगा।

दोस्तों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल यहीं पर संपन्न होता है। अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा को अनुमति दीजिए। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड वजारा खारजा की मीटिंग की सदारत की। भारत और अमेरिका ने अहम मादनियात और मिट्टी के नायाब अनासिर की सप्लाई, कनकनी और इन्हें काबिले इस्तेमाल बनाने के बारे में अहम समझौते पर दस्तखत किए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राजस्थान में सांचू सरहदी चौकी का दौरा किया। उन्होंने रियासत के सरहदी खित्तों में दरख्शा गांवों के प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज किया। सऊदी अरब में लाखों आजमीन आज फरीजा हज अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्वालिफायर वन में आज शाम धर्मशाला में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब खबरें तफसील से। क्वाड मुल्कों के वज़राए खारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में खत्म हो गई। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने वज़राए खारजा की मीटिंग की सदारत की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वजीर खारजा तोशी मित्सु मोतेगी और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने शिरकत की। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉ जयशंकर ने दीगर मुल्कों की मदद करते हुए क्वाड मुल्कों के माबैन इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि क्वाड के ममालिक खुले मुआशरे वाले मुल्क हैं जो

0: खुशहाली के फरोग के खातिर इख्तिरा और तख्लीक को बढ़ावा देते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात को उजागर किया कि जमहूरी मुल्क होने के नाते क्वाड के मुल्कों ने दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निपटने पर भी अपनी तवज्जो मरकूज की है।
1: As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world.
0: मीटिंग के बारे में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बाहमी राब्तों में दुनिया के मौजूदा हालात पर तबादले ख्याल किया गया और क्वाड के चार मुल्कों ने खास तौर पर भारत बहरुल काहिल खित्ते से वाबस्ता उमूर पर तवज्जो मरकूज की। उन्होंने कहा कि बहरी शोबे में इश्तराक में लगातार वसत आई है, जिसमें निगरानी से मुतालिक बेदारी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, जेरे समंदर केबल, तरबियत, सलाहियत साजी, इंसानी हमदर्दी की इमदाद और कुदरती आफात से पैदा हालात से निपटने की सरगर्मियां शामिल हैं। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड मुल्कों ने उन शोबों से मुतालिक जिनमें वो इश्तराक कर सकते हैं मजीद पेशरफ्त की है।
2: On the areas of cooperation, and it's also interesting that on the areas that we are working together on have become even more relevant and more important because of recent events around the world. And so today, I think we'll make even further progress on operationalizing our relationship on the areas that we can cooperate on. And by the way, the most interesting thing about the Quad is not simply that it is a gathering of four strategic allies in which we come together to sort of compare notes about areas of common interest, but also not only is it increasingly becoming a forum by which we begin to take action.
0: जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीरे खारजा आज सेवा तीर्थ में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। उधर वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर आज सुपहर ऑस्ट्रेलिया के अपने हममनसब के साथ बातचीत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सिक्किम के तीन रोजा दौरे पर गंगटॉक पहुंच गई हैं। हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल गवर्नर ओम प्रकाश माथुर, वजीर आला प्रेम सिंह तमांग और दीगर सीनियर शख्सियतों ने किया। सदर जमहूरिया अपने दौरे में ख्वातीन के लिए मखसूस पिंक बसों का इफ्तिताह करेंगी, जिसका मकसद रियासत में महफूज और काबिल रसाई ट्रांसपोर्ट सहूलियात में बेहतरी लाना है। वो सिक्किम की मालामाल माहौलियाती और फूलों की सैर करने के लिए रिज पार्क में ऑर्किडेरियम भी जाएंगी। बाद में वो नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का भी दौरा करेंगी। ये इदारा नायाब मखतूतात और बौद्ध सकाफती फनपारों की हिफाजत के लिए जाना जाता है। अपने दौरे के दूसरे दिन सदर जमहूरिया नाथुला दर्रा जाएंगी और गंगटॉक में सिक्किम यूनिवर्सिटी की तकसीम असनाद की सालाना तकरीब में शिरकत करेंगी। अपने दौरे के आखिरी दिन वो सिक्किम पुलिस को भारत के सदर जमहूरिया के पुलिस कलर मेडल से नवाजेंगी। इसके साथ ही सिक्किम मुल्क में ऐसी 15वीं रियासत बन जाएगी जिसे बावकार एजाज हासिल हुआ है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाक बैन अलावामी सरहद पर सांचू सरहद चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस इलाके में सरहदी हिफाजती दस्ते के अमले से बातचीत की और मुल्क की सरहदों की हिफाजत में खुद को वक्फ कर देने पर उनकी तारीफ की। वजीर दाखिला ने अपने दौरे में रियासत के सरहदी खित्तों के लिए दरख्शा गांवों के प्रोग्राम के दूसरे मरहले को वक्फ किया। इस पहल के तहत तालीम, सड़कों, बिजली और रोजगार के मौकों समेत बुनियादी ढांचे और लाजमी सहूलियात को बैन अलावामी सरहद पर वाक गांवों में इस्तेकाम हासिल होगा। बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर जिले के गांवों को इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है। वजीर आला भजन लाल शर्मा और कानून के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल भी इस मौके पर मौजूद थे। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल प्रवीण कुमार, इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह तपन डेका और राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। आज देर गए जनाब अमित शाह बीकानेर में बीएसएफ सदर दफ्तर में सरहदी हिफाजत के बारे में एक मीटिंग की सदारत करेंगे। मरकजी वजारत दाखिला, राजस्थान सरकार और बीएसएफ के सीनियर अफसरान भी तालमेल से मुतालिक इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। खबरों का यह बुलेटिन आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक मुश्तरका बचाव टीम के जरिए गुलमर्ग में केबल कार में फंसे हुए 300 सयाहों को कामयाबी के साथ बचाया जाना भारत की आफात से निपटने वाली एजेंसियों की पेशवराना सलाहियत, जुरत और इश्तराक का इजहार है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने चैलेंजों से पुर कार्रवाई अंजाम देने के लिए भारतीय फौज जम्मू और कश्मीर

0: पुलिस एसडीआरएफ एनडीआरएफ पर मुश्तमिल मुश्तरका टीम की कोशिशों को सराहा। भारत और अमरीका ने आज एक दोतरफा फ्रेमवर्क पर दस्तखत किए हैं जिसका मकसद अहम मादनियात और मिट्टी के नायाब अनासिर की सप्लाई कानकनी और इन्हें काबिल इस्तेमाल बनाना है। ये अहम मुआहदा नई दिल्ली में वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने एक दूसरे को सौंपा। वजीर खारजा ने कहा कि इस फ्रेमवर्क से मुतनव्वे सप्लाई चेन को इस्तेहकाम मिलेगा, दोनों मुल्कों को माली मामलात से मुतालिक तआवुन में मदद मिलेगी और अहम मादनियात और मिट्टी के नायाब अनासिर के मौसर बंदोबस्त में भी मदद मिलेगी। तमिलनाडु में तीन असेंबली हलकों मदुरंतकम पेरुंदुरई और धारापुरम को एआईएडीएमके से वाबस्ता तीन अरकान असेंबली के इस्तीफे के बाद खाली हलके करार दे दिया गया है। ये सीटें इसलिए खाली हुई कि स्पीकर ने कल उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए थे। इससे पहले त्रिची मशरकी हलके को भी खाली करार दे दिया गया था क्योंकि वजीर आला जोसेफ विजय ने, जिन्होंने दो हलकों से कामयाबी हासिल की थी, त्रिची मशरक से इस्तीफा दे दिया था। एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी एडापड्डी के पलानीस्वामी ने इन तीन अरकान असेंबली के इस्तीफे को मंजूर करने के स्पीकर के फैसले की नुक्ताचीनी की है। भारत समेत दुनिया के लाखों आजमीन आज सऊदी अरब में फरीजा हज अदा कर रहे हैं। कल मनासिक हज के आगाज के मौके पर आजमीन हज मिना में जमा हुए और फजर की नमाज अदा करने के बाद आज वो तलबिया का विर्द करते हुए मैदान अरफात पहुंचे, जहां हज का रुकन आजम अदा किया जा रहा है। ये आजमीन वहां तौबा व इस्तगफार में दिन गुजार रहे हैं। आजमीन हज मस्जिद नबरा में खुतबे हज सुनेंगे और शाम को मुजदलफा रवाना होने से पहले जुहर और असर की नमाज एक साथ अदा करेंगे। हुज्जाज कराम कल सुबह मीना वापस आ जाएंगे, जहां वो शैतान को कंगरियां मारेंगे और जानवरों की कुर्बानी पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश में लू से कोई राहत नहीं मिली है क्योंकि बहुत से मकामात पर दर्जा हरारत 43 से 47 डिग्री के दरमियान चल रहा है। जुनूब मगरबी मानसून के आज या कल केरलम पहुंचने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे की जानिब से मानसून की आमद के बारे में बाजाब्ता ऐलान मुतवक्के है। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मैच में जीतने वाली टीम सीधे आईपीएल के फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू खेलने का मौका मिलेगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड वजारा खारजा की मीटिंग की सदारत की। क्वाड ग्रुप ने मुस्तकम महफूज और मजबूत तवानाई के मार्केट्स के लिए पुख्ता अजम का इरादा किया। भारत और अमरीका ने अहम मादनियात और मिट्टी के नायाब अनासिर की सप्लाई कानकनी और इन्हें काबिल इस्तेमाल बनाने के बारे में अहम समझौते पर दस्तखत किए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने राजस्थान में सांचू सरहदी चौकी का दौरा किया। उन्होंने रियासत के सरहदी खितों में दरख्शां गांवों के प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज किया। सऊदी अरब में लाखों आजमीन आज फरीजा हज अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्वालिफायर वन में आज शाम धर्मशाला में गुजरात टाइटंस का मुकाबला दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jayshankar chairs Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi. Quad commits to stable and secure energy markets. India and the US sign key agreement to strengthen supply, mining and processing of critical minerals and rare earths. Union Home Minister Amit Shah visits Sanchu border post in Rajasthan, launches Vibrant Villages Program 2 in border regions of the state. Millions of pilgrims begin main ritual of Hajj pilgrimage in Saudi Arabia. And in the IPL Qualifier 1, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in Dharamshala this evening. External Affairs Minister Dr. S. Jayshankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio attended the meeting.

0: में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
1: As democratic nations,
2: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
0: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री 37वें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरूआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
4: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त

0: और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मिना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमरीका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमरीकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वाशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 2:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। कार्यक्रम के साथ हूं मैं प्रतिमा शर्मा।
2: बिल्कुल, मैं हूं गौतम झा और मेरा भी नमस्कार श्रोताओं।
1: और देखिए गौतम, कार्यक्रम के जरिए हम किसान भाइयों के लिए खेती किसानी से जुड़ी तमाम उपयोगी जानकारियां लेकर हाजिर होते हैं, जिसमें अलग अलग विषय होते हैं और आज का विषय भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे तिल और मूंगफली की खेती से अधिक लाभ हमारे किसान भाई कैसे कमा सकते हैं। तिल और मूंगफली दोनों ही तिलहनी फसल हैं जिनकी बाजार में अच्छी मांग रहती है। अगर किसान भाई सही किस्म, सही समय पर बुआई, संतुलित खाद और बेहतर प्रबंधन अपनाएं तो कम लागत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं और मूल्य संवर्धन अगर कर लिया तो समझिए कई गुना उनको लाभ मिल सकता है।
2: बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने प्रतिमा जी। और यदि किसान वैज्ञानिक तरीके से भी तिल एवं मूंगफली की खेती करें तो वो कम लागत में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ काफी सारे किसान भाई जो हैं खेती करते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था भी काफी कुछ हद तक निर्भर करती है कृषि पर, तो आज का

0: विषय आपने बताई दिया है, विषय है तिल एवं मूंगफली की खेती से अधिक लाभ कैसे प्राप्त करें, और इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है विशेषज्ञ जो कि आज के हैं डॉक्टर कपिला शेखावत, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: डॉक्टर कपिला, जैसा कि अभी हम लोग सुन भी रहे थे कि केरल में मानसून लगभग पहुंच गया है और धीरे धीरे अब वो फैलेगा सारे भारतवर्ष में, तो जब बारिश होती है तो खरीफ की फसलों की बुआई का समय भी आता है और इंतजार करते हैं हमारे किसान भाई बहन। तो जो मूंगफली है, जो तिलहनी फसल है, चाहे मूंगफली हो, तिल हो या सोयाबीन हो, तो इनका सही बुआई का समय कब होता है?
1: आप भी, हम सब इंतजार कर रहे हैं, किसान भाई हमसे भी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। तो मॉनसून जब हमारे यहाँ पे उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में आ जाता है तो उससे वो सही समय है सभी तिलहनी फसलों की बुआई के लिए। लेकिन अभी चाहिए किसानों को कि अपने खेत को तैयार रखें, जो पहले की जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे मान लीजिए बीज की व्यवस्था वो समय पर कर लें, उर्वरक जो चाहिए हमें उसकी तैयारी कर लें, खेत की तैयारी, अगर खेत में कोई समस्या है तो उसमें उसके लिए जैसे सॉइल अमेंडमेंट्स हैं वो सारों की अभी तैयारी करके रखें। और जो जागरूक किसान है वो सब तो जानते भी हैं, जो कार्यक्रम हमारा लगातार सुनते आए हैं कि इस जो ये जो समर सीजन है, ग्रीष्मकालीन ऋतु को भी वेस्ट नहीं करना है, कोई दलहनी फसल आप ले सकते हैं, नहीं तो आप हरी खाद के जरिए अपने खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं, जो आगे आने वाले खरीफ की फसल में उनके उर्वरकों की आवश्यकता या उनकी मांग को कम करेगा।
2: जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। और तिल और मूंगफली की खेती किसानों के लिए लाभकारी कैसे हो सकती है?
1: बिल्कुल, देखिए अगर अपन खाद्यान्न फसलों की बात करें तो अनाजी फसलों के बाद में जो तिलहनी फसलें हैं उनका दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें जो महत्वपूर्ण अगर अपन तिलहनी फसलों की बात करें तो जो तीन फसलों का आपने भी जिक्र किया जिसमें तिल है, मूंगफली है और सोयाबीन। तो हमारा देश अभी तक भी हम तिलहन के संदर्भ में आत्मनिर्भर नहीं है, और आत्मनिर्भर तिलहन उत्पादन के लिए जो लक्ष्य हमारे सामने सरकार ने रखा है वो है 2030-31 तक। तो इस समय तक हमको अपनी आत्मनिर्भर बनना है तिलहन के संदर्भ में, तो कहीं ना कहीं इन खरीफ फसलों से तेल की जो उत्पादन बढ़ाकर और जो खाद्य तेल है उनकी आपूर्ति को हम इतना बढ़ाएं कि हम इस क्षेत्र में भी जैसे हम अनाजी फसलों में आत्मनिर्भर हैं वैसे हम
2: हो सके।
1: बिल्कुल जी,
2: बहुत अच्छी बात है। और ये इस प्रयास में तो देखिए हमारे किसान भाई तो हैं, हमारे कृषि वैज्ञानिक भी लगे हुए,
1: सभी लोग अपनी अपनी तरफ से
2: पूरा प्रयास में,
1: सरकार का भी बहुत प्रोत्साहन है इन फसलों के लिए।
0: बिल्कुल मैम, जैसे तिल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो तिल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है?
1: देखिए अगर अपन खरीफ फसलों की बात करें तो ये जितनी भी तिलहनी फसलों की हमने बात की, तो जो दोमट मिट्टी है, जो बहुत अधिक भारी भी नहीं है और बहुत अधिक हल्की भी नहीं है, बहुत अधिक भारी में होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, वो हम ज्यादातर धान की बुआई के लिए और धान की खेती के लिए रखते हैं। जो बहुत हल्की मिट्टियां हैं उसमें ज्यादातर हम जो कोर सीरियल्स या जो हमारे मोटे अनाज हैं उनके लिए रखते हैं, क्योंकि उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत कम होती है। लेकिन अगर अपन इनकी बात करें तो दोमट मिट्टी, जिनको हम लोमी सॉइल्स कहते हैं, जिनका टेक्सचर बीच का होता है, तो उसमें एयरेशन भी अच्छा होता है और पानी ग्रहण की जो क्षमता है वो भी अच्छी है, वो इनके लिए सबसे श्रेष्ठ है। खेत आपका समतल होना चाहिए, खेत को आप जो हम अभी बात कर रहे थे प्रतिमा जी से कि जो आपकी रबी की फसल की कटाई के बाद जो आपको 2 महीने मिलते हैं, 2.5 महीने या 3 महीने अगले फसल की बुआई में, आपको उन इन बातों का ही ध्यान रखना है कि खेत आपका लेवल्ड हो। अगर आपके खेत में कोई मान लीजिए समस्या है, कोई क्षार की, नमक की, कोई एसिडिक है, तो उसका रिक्लेमेशन करें,
2: मिट्टी का परीक्षण
1: करवा के आप उसके आधार पर अपने आने वाली फसल के लिए जो उर्वरकों की मांग है उसको संतुलित जो है उसके हिसाब से आप सेट करिए कि कितना चाहिए। मेन फोकस नाइट्रोजन फास्फोरस पर ही किसान मित्रों का रहता है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म तत्वों की जांच भी कराएं, क्योंकि आयरन, जिंक, हम अपने स्वास्थ्य के बारे में भी कहते हैं आजकल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, इनकी बात करते हैं। तो ये कमी क्यों आई है प्रतिमा जी? क्योंकि मिट्टी में इन तत्वों की कमी हो गई है, तो उस मिट्टी पर उगने वाले जो पौधों का हम उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे में भी ये कमी आ रही है। तो आपको हम अपने आप ट्रीटमेंट करें उससे और बेहतर होगा अगर हम मृदा का ट्रीटमेंट करते हैं, उपचार करते हैं, तो हमें ऊपर से सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
2: जैसे मानव विज्ञान होता है वैसे ही वनस्पति विज्ञान होता है, जो हम सबको जरूरत है वही हमारे पेड़ पौधों के लिए भी जरूरी होता है। तो डॉक्टर साहब, अभी तो गौतम ने पूछा कि तिल के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए, अगर हम सोयाबीन या मूंगफली की बात करते हैं तो क्या उनके लिए मिट्टी का कैसा चुनाव?
1: देखिए जो ये जो तीन प्रमुख तिलहनी फसलें हैं, सोयाबीन यूजुअली सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश में इन क्षेत्रों में, इंदौर में एक इंस्टीट्यूट भी है हमारे परिषद का, तो सेंट्रल सॉइल सेंट्रल इंडिया में जहां थोड़ी भारी मिट्टी है वहां सोयाबीन

0: बहुत उपयुक्त है। बाकी इन मिट्टियों के लिए तिल और जो मूंगफली है वो बहुत उपयुक्त है। मौसम अच्छा रहता है, खरीफ में बारिश इतनी हो जाती है कि इनकी जितनी जल मांग है उसकी पूर्ति हो जाती है। अच्छी किस्मों का अगर आप चुनाव कर लेते हैं तो अच्छा उत्पादन, अच्छा मुनाफा इनसे ले सकते हैं, क्योंकि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य इन दोनों ही फसलों के लिए, अगर अपन मूंगफली की और तिल की बात करें तो तिल का करीब 10,000 के आसपास आप देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य है और मूंगफली का 7,000 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक किसानों के प्रति प्रोत्साहन रहता है कि हमारी जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसकी अच्छी कीमत हमको बाजार
1: जी। तो जितने भी हमारे किसान भाई बहन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो गौतम पूछ सकते हैं, हमारा नंबर।
2: बिल्कुल बिल्कुल, जो भी किसान भाई हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और जो विषय है आज का हमारा, अगर उनसे संबंधित उनके जहन में कोई प्रश्न है तो वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। उसके लिए आप अगर दिल्ली से बाहर हैं तो 011 दिल्ली का जो STD कोड है वो लगाना ना भूलें। उसके बाद 2342-1081 पर कॉल करें हमें। हमारी दूसरी लाइन भी खुली हुई है 2342-1083 पर हमें आप कॉल करें और अपना जवाब जो है प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। और अधिक उत्पादन लेने के लिए हमें कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं डॉक्टर साहब जो कि ध्यान रखनी है?
0: सबसे महत्वपूर्ण, जैसे अगर आप खेत की तैयारी अच्छी करते हैं, अच्छे खेत का चुनाव करते हैं, किस्म ये सबसे जरूरी है। और हर क्षेत्र के लिए शोध के बाद, अनुसंधान के बाद उनके क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्मों अनुमोदित की जाती है, हम संशोधित करते हैं, तो हर क्षेत्र के लिए है। लेकिन फिर भी कुछ मोटी मोटी किस्में हैं जो जनरली जिनका वाइडर एरिया है और वो अच्छा उत्पादन इसमें देती है। अगर मूंगफली की बात करें तो ICGS सीरीज की कई सारी किस्में हैं, 76, 84 ये आप ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे राजस्थान में काफी क्षेत्र है मूंगफली का, तो उसमें एक RG 510 बहुत अच्छी रूलिंग
1: RG 510
0: जी। और उसके अलावा गिरनार 1, 2, 3 ये किस्में हैं, ये आ सकती हैं। उसके अलावा TG 37, राज दुर्गा 425 और RJ 559, इनमें से किसी भी किस्म का जो आपको उपलब्ध हो जाए आप इसमें से आप मूंगफली की किस्म ले सकते हैं। तिल के लिए जो अच्छी किस्में हैं जिसमें T3, T12, T13 शेखर एक बहुत अच्छी किस्म है, राज तिल करके 351 नंबर है, वो एक बहुत अच्छी किस्म है। और अगर अपन सोयाबीन की बात करें तो इसमें JS सीरीज है जिसमें 20 नंबर 34 नंबर 20 29, JS 80 81 अच्छी किस्म है, 100 से 120 दिन में पक्के तैयार हो जाती है और अच्छा उत्पादन देती है। तेल की मात्रा देखिए सोयाबीन में 20% है, उसके अलावा जो प्रोटीन है वो 40% है। तो अगर आप तेल के उसमें यूज करना चाहते हैं तो सोयाबीन का तेल बहुत अच्छा है। उसके अलावा इसमें जो प्रोटीन है 40%, तो जैसे अगर आपने शुरुआती अपने रिमार्क्स में मूल्य संवर्धन की बात की तो सोयाबीन की बड़ियां हम कंज्यूम करते हैं घर में, और हमारे यहाँ पे अधिकतर जनसंख्या शाकाहारी है तो उनके लिए जो सोयाबीन प्रोटीन है वो एक बहुत ही रिच और अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो जो किसान मित्र जो FPOs बना के जो ग्रुप्स में मूल्य संवर्धन भी करते हैं, तेल निकालने के बाद उसकी जो बड़ी बनाते हैं हम सोयाबीन की बड़ी, वो एक अधिकतर मतलब अधिकांश जनसंख्या के लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। अगर मूंगफली की बात करें हम तो उसमें भी करीब अच्छा इसके अंदर तेल की मात्रा होती है सोयाबीन और, लेकिन मूंगफली का जो है ज्यादातर हम कन्फेक्शनरी में ज्यादा यूज करते हैं तिल और मूंगफली का, जैसे सर्दियों में हम तिल पट्टी गजक ये करते हैं जी बिल्कुल। तो तेल की मात्रा तो हालांकि इन सभी में अच्छी है, और जो इनकी अच्छी बात है तेल निकालने के बाद जो खली बचती है जिसको हम ऑयल केक कहते हैं, इन तीनों ही फसलों में करीब 20 से 25% तक प्रोटीन है, तो पशुओं के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेंट्रेट और आहार है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मतलब एक तिल, सोयाबीन और मूंगफली से कितनी सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, तेल भी लिया जा सकता है और उसके बाद जो बचा कुचा है हमारे पशुओं के लिए प्रोटीन के रूप में उनके पास जाएगा।
2: मैम एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे हम लोग बात कर रहे थे मूंगफली की, तो इसमें जिप्सम का उपयोग कितना महत्वपूर्ण है?
0: देखिए मूंगफली का आपने शेल देखा होगा ना, हम शेल तोड़ के मूंगफली को, तो उस शेल फॉर्मेशन में कैल्शियम चाहिए होता है, तो जिन सॉइल्स में नेटिव कैल्शियम या शुरुआत में ही उनमें कैल्शियम अच्छा है वो तो ठीक है, लेकिन ओवर द ईयर्स आप लगातार मूंगफली की फसल लेते आए हैं तो उसमें कैल्शियम अपटेक बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जो जिप्सम जो है ना करीब हम 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मूंगफली की फसल में संस्तुतित करते हैं। इससे एक तो कैल्शियम मिलता है मिट्टी को, जिससे उसमें शेल डेवलपमेंट अच्छा होता है, बीमारियां वगैरह कम लगती है। दूसरा, मृदा में अगर क्षार ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है, तो उसके रिक्लेमेशन में भी जो कैल्शियम का स्रोत जिप्सम के रूप में हम यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं मृदा के जो उसका स्वास्थ्य सुधारने में या पीएच सुधारने में भी जिप्सम का रोल होता है। कैल्शियम और सल्फर दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। सल्फर देखिए तेल की मात्रा को बढ़ाएगा और कैल्शियम

0: पोटेशियम उसके शेल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो मिट्टी का सुधार, उसके अलावा कैल्शियम और सल्फर की अवेलेबिलिटी जिप्सम के माध्यम से होती है। तो मृदा की जांच के आधार पर आप और तय कर सकते हैं, वरना 400 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर बारिश से पहले, जो प्रतिमा जी हम बात कर रहे थे ना, बारिश आने से पहले ही आप अपने खेत में उस जिप्सम को डाल दें, ताकि बारिश के साथ में वो मिट्टी के अंदर नीचे तक चला जाता है। तो जहां तक वो पानी के साथ जाता है, वहां उधर उस मिट्टी को रिक्लेम करता है, उस मिट्टी को सुधार देता है।
1: बिल्कुल मैम, एक सवाल और है, जैसे कि पहले कॉलर ले लें।
2: जी हाँ, कॉलर भी हमारे आ रहे हैं, आइए उनको ले लेते हैं। हेलो
3: मैडम, नमस्कार।
2: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं और सवाल पूछें।
3: रामफल यादव बोल रहा हूँ, रेवाड़ी हरियाणा से।
2: रामफल यादव रेवाड़ी हरियाणा से जी, पूछिए रामफल जी सवाल।
3: मेरे को पूछना था, जैसे कोई भी फल है, सब्जी है या तिलहन दलहन है, उसमें मिट्टी की जाँच के लिए सैंपल हम कैसे लें?
2: अच्छा ठीक है जी।
0: रामफल जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और आपको ध्यान होगा कि जो हमारी केंद्र सरकार है, आजकल एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, जिसमें किसान जो है उर्वरकों की मात्रा को कम करना, जैसे हमारा बहुत जोर रहता है यूरिया और डीएपी पे खास तौर पे। तो रामफल जी, आपके प्रश्न से ही संबंधित है, आप देखिए कि कुछ हमारे पौधे की उत्तम उपज और बढ़वार के लिए हमें 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। किसान ज्यादा फोकस करता है यूरिया और डीएपी पे, यानी कि उसने सिर्फ दो नाइट्रोजन और फास्फोरस, दो ही न्यूट्रिएंट्स को एड्रेस किया है। तो इसमें ना केवल इनकी मात्रा महत्वपूर्ण है, इनका अन्य तत्वों के साथ अनुपात भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपके खाने में मैं मिर्च डबल डाल दूं और नमक बिल्कुल ना डालूं, तो आप भी वो खाना पसंद नहीं करेंगे। तो हमारा जो है, कई जगह पर यह देखा गया है कि किसान मित्र यूरिया और डीएपी पे बहुत अधिक जोर दे रहे हैं। तो उस कैंपेन के माध्यम से हम संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन या संतुलित पोषण के ऊपर हम काफी जोर दे रहे हैं। इसमें पूसा संस्थान के अलावा जितने भी परिषद के संस्थान हैं, वो सभी सीधा किसानों के साथ संवाद करते हैं। हम खेतों में जाते हैं, हम गांवों में जाते हैं, और गोष्ठियों के माध्यम से किसानों को इस बारे में जागरूक कराते हैं। तो किसान मित्रों का, जैसे जो रामफल जी का प्रश्न था, वो सबसे पहले कि हम अपनी मिट्टी का स्तर या जो जांच है वो कैसे करें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप अपने पूरे खेत को, आपका बड़ा खेत है या छोटा खेत है, उसके हिसाब से 5 या 10 हिस्सों में बांट लीजिए। हर जगह से आप, यानी कि हम बोलते हैं ना रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, आप हर जगह से 1-1 किलो मिट्टी आप इकट्ठा कर लीजिए, उसको मिक्स करिए, 4 हिस्से बनाइए, 2 हिस्से हटा के 2 हिस्सों को फिर लीजिए, और ऐसे करते करते आप 0.5 किलो एक मिट्टी का सैंपल लेकर और मृदा की जांच करवाएं। पूसा संस्थान में भी हमारे यहाँ पे फिप्स लेबोरेटरी है, बहुत पुरानी लेबोरेटरी है,
2: हरियाणा से बोल रहे थे तो
0: जी, उनके आसपास भी है उसके, आप बिल्कुल कृषि विज्ञान केंद्र से भी करा सकते हैं। पूसा संस्थान में जब पूसा विज्ञान मेला है लगता है, तो हम मुफ्त में भी इसमें कराते हैं। एक और विकल्प है पूसा एसटीएफआर, ये करीब 80,000-85,000 का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, और हमारे साथ पूसा के साथ में इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी कस्टम हायरिंग सेंटर में ये स्टार्ट किया है, और बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे। तो जो युवा है ना, जो खेती से जुड़े हैं, वो लोग इस तरह का काम कर सकते हैं। आपने बताया था कि सैंपल कैसे लें, मिट्टी को आप अपनी जमीन को ऊपर से साफ करके, जिसमें कोई पत्ते वत्ते कुछ ना रहे, फावड़े से एक जोर से एक वी बनाइए, एक इस तरफ से आप मारिए और इस तरफ से बीच की मिट्टी को हटाकर आपका वी की शेप में आप देखेंगे बन जाएगा, और दोनों तरफ से हल्का हल्का खुरचकर नीचे तक, यानी ऊपर से 15 सेंटीमीटर तक की मिट्टी का सैंपल आना चाहिए। मिट्टी का सैंपल आपको ऐसे लेना है, दोनों तरफ से फावड़े से आप वी नॉच बना लीजिए, बीच की मिट्टी को हटा लीजिए, और दोनों तरफ से खुरपी से मिट्टी को हल्का हल्का खुरचकर पूरे 15 सेंटीमीटर की लेयर तक, नीचे तक आप मिट्टी को लीजिए, और जो मैंने बताया आपको 10 सैंपल्स या आप जिस जितना आपका खेत है, उससे होते होते मिक्स करते करते आप 0.5 किलोग्राम जो आप मिट्टी का सैंपल लेके जाते हैं, पूसा एसटीएफआर के माध्यम से 14 जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी आपको जांच पता चल जाती है, जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस, उसके पीएच और ईसी भी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था रामफल जी, आप और आपसे जुड़े हुए जितने भी किसान हैं, मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाएं और सॉयल हेल्थ कार्ड बनवाएं, जिसके माध्यम से ना केवल आपको स्तर बल्कि आपको संसूचित भी किया जाता है कि आपको किस तरह से अपने खेत का आगे मैनेजमेंट करना है।
2: बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है और सभी किसानों के लिए लाभदायक है, क्योंकि कोई भी फसल बोएंगे अगर मिट्टी में बहुत सारी कमियां रह गई, तो आने वाले समय में उनको पूरा अपनी कमाई, इतनी मेहनत की कमाई लगाते हैं तो उतना मुनाफा नहीं मिल पाएगा।
0: जी, जी।
2: तो डॉक्टर साहब बातें और भी करेंगे, एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और आपके पास आते हैं वापस।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
7: पुतला बोल रहे?
6: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
7: मतलब?
6: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
7: पर हम तो सब यही डाले हैं।
6: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
7: सच है?
6: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
7: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
8: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
9: और श्रोताओं, आज का हमारा विषय है तेल एवं मूंगफली की खेती से अधिक लाभ कैसे कमाएं। हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर कपिला शेखावत, प्रधान वैज्ञानिक। डॉक्टर साहब, अगर हम मूंगफली, तिल और सोयाबीन इनकी खेती कर रहे हैं
10: जी,
9: तो सबसे पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बुआई करते वक्त?
10: देखिए, हम जैसे बात कर रहे थे, खेत का सही चुनाव होना चाहिए, सही किस्म का चुनाव। उसके बाद बुआई के समय बीज दर महत्वपूर्ण है, किस अंतराल पे आप बीज की बुआई करते हैं। बीज उपचार बहुत महत्वपूर्ण है, और पोषक तत्व प्रबंधन। पोषक तत्व के बारे में हमने शुरू में बात की, तो जैसे हमने मिट्टी की जांच के आधार पर हमको पोषक तत्व संतुलित करते हैं। लेकिन अगर मोटा मोटी अपन बात करें, मान लीजिए मूंगफली की ही बात करें, तो करीब, क्योंकि ये भी एक दलहनी वर्मी मतलब लेग्यूमिनस फैमिली की ही एक क्रॉप है, और सोयाबीन भी, इन दोनों के लिए करीब 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 75 से 80 किलोग्राम पोटेशियम, सल्फर की हमने बात की। अगर आप जिप्सम नहीं दे रहे हैं तो 40 से 50 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से हर तिलहन फसल में हमको बुआई के समय डालना है। उसके अलावा जिंक, आयरन और बोरोन, तीन और महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं। जिंक को हम जिंक सल्फेट के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं 20 से 25 किलोग्राम बुआई के समय, और ये आपको सिर्फ खरीफ फसल में देना है, और ये एक साल के लिए पर्याप्त होता है। जिंक सल्फेट भी करीब 20 से 25 किलोग्राम आप दे सकते हैं बुआई के समय, और वो भी आपको 2 साल में एक बार देने की जरूरत होती है, लेकिन खरीफ के समय दे, क्योंकि बारिश ज्यादा होती है, मिट्टी में ज्यादा मिलकर रिक्लेमेशन और अवेलेबिलिटी बढ़ाते हैं ये। उसके अलावा बोरोन कई जगह पर आजकल पाया गया है इसकी डेफिशिएंसी, तो उसका भी करीब बोरेक्स या सुहागा के नाम से आता है, 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। तो ये मोटा मोटी पोषक तत्व है, इनका आपको ध्यान रखना है। खेत में जब आप बुआई करते हैं तो खेत में नमी अच्छी होनी चाहिए। अगर अपन अंतराल की बात करें, तो अगर सोयाबीन में करीब 30 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी, और इसके अंदर तिल में भी इतनी ही रखते हैं, मूंगफली में करीब कहीं कहीं पर हम 45 सेंटीमीटर भी पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखते हैं, क्योंकि उसमें वाइड स्पेसिंग है, और अर्थिंग अप हम करते हैं ताकि मूंगफली का, क्योंकि जो शेल है हमको जमीन के अंदर बनता है, तो ये आपको रखना है। पौधे से पौधे की दूरी भी चाहिए, बहुत घने नहीं होने चाहिए, ताकि आपस में वातन रहे और पौधों में आपस में कॉम्पिटिशन ना हो। और बुआई के समय खरपतवारों का आपको ध्यान रखना है, कुछ खरपतवार नाशक है, जैसे पेंडीमिथिलीन एक बहुत अच्छा खरपतवार नाशक है। बुआई के तुरंत बाद 48 घंटे के भीतर भीतर हमको 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें लगाना चाहिए।
9: जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, जी बात करते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, थोड़ा जोर से बोले। हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं?
11: जी मैं फहीम बोल रहा हूँ, श्रीनगर से।
9: फहीम जी बोल रहे हैं जी, अपना सवाल पूछे। श्रीनगर से बोल रहे हैं आप?
11: जी मैं श्रीनगर से।
9: जी जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, आप सवाल पूछे।
11: जी मेरा सवाल ये है कि मिट्टी की जांच जब करनी हो तो कितनी गहराई से हमें सैंपल लेना चाहिए, और क्या एक ही जगह पे, अगर 10 बीघा जमीन है, क्या एक ही जगह या दो जगह या कितनी जगहों से सैंपल लेना है?

0: और कितनी गहराई से सैंपल लेने हैं।
1: जी जी
2: जी जी, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सैंपल किस तरह से लिया जाए, क्योंकि उसी पर ही आपका जो निर्भर करता है कि कितना सही आपकी रिपोर्ट आती है।
3: हाँ।
2: तो देखिए, जैसे आपने बताया कि आपका एक बीघा है, अगर आपको देखने से ही पता चल जाएगा खेत में अगर बहुत ज्यादा मतलब यूनिफॉर्मिटी है, कुछ बहुत उबड़ खाबड़ या इस तरह का खेत नहीं है, तो हम 10 बाय 10 मीटर में हम यूजुअली एक सैंपल,
3: जम्मू कश्मीर से बोल रहे,
2: तो हो सकता है हिली टेरेन हो, थोड़ा हिली टेरेन होगा, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए 10 बाय 10 मीटर में एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आपका मिल जाता है। हमने पहले भी बात की थी 15 सेंटीमीटर तक हम मानते हैं कि हमारी अधिकतर जड़ें जो होती है 15 सेंटीमीटर से ही सभी पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। तो स्टेटस अगर नीचे बहुत अच्छा है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, और अगर ऊपर सिर्फ 5 सेंटीमीटर पे अच्छा है तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें कम से कम 15 सेंटीमीटर, जिसको हम फरो स्लाइस बोलते हैं, उसका एक सैंपल चाहिए जो आपके जो मृदा के ओवरऑल जो हेल्थ के बारे में बताएगा। तो अगर आपका एक बीघा खेत है, आप 10 मीटर बाय 10 मीटर पे एक या दो सैंपल ले सकते हैं। उसमें करीब आप 1 किलोग्राम सैंपल लीजिए, 15 सेंटीमीटर में आपको लेना है। जैसे हमने पहले भी बताया था कि फावड़े से आप एक साइड खींचिए, जोर से आप मारिए, वहां की मिट्टी हटाइए, और उसके सामने भी फावड़े से हटाकर आप एक तरह से वी बना लेंगे आप। फिर आप खुरपी लेंगे, एक शार्प खुरपी लेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक आप पूरी लेयर लेनी है आपको, और आप इस तरह से करिए कि करीब आपकी आधा किलो मिट्टी जो है एक सैंपल में आ जाए। ऐसे मान लीजिए आपने 10 बीघा से मान लीजिए 20 सैंपल लिए, तो आपके पास 20 किलोग्राम मिट्टी हो गई। 20 किलोग्राम मिट्टी को अच्छे से आप मिक्स कीजिए और उसके 4 हिस्से करिए, आमने सामने वाले 2 हिस्से हटा दीजिए और 2 हिस्सों को फिर आप मिक्स करिए, फिर उसके 4 हिस्से लीजिए, फिर 2 हटाइए, 2 लीजिए, ऑपोजिट करते करते आपको नैरो डाउन होना है आधे किलो तक। तो आप जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे उतना अच्छा आपके जो खेत है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आपके पास में आएगा, और उससे आप अपनी जो मृदा की जांच करवा सकते हैं।
4: बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब जैसे हम लोग बीज उपचार की बात कर रहे थे, तो बीज उपचार करने से क्या फायदे हैं, किसान भाइयों को क्या लाभ हो सकता है?
2: जैसे छोटे बच्चे को हम टीका देते हैं ताकि भविष्य में उसको बीमारी ना हो,
4: बिल्कुल,
2: तो बीज उपचार आपका वो ही उद्देश्य है। 3 उद्देश्यों के लिए हम बीज उपचार करते हैं, एक तो बीमारी ना लगे, दूसरा कीट ना लगे, और तीसरा उत्पादन या तेल की मात्रा अच्छी हो, तो इसमें इस उसके लिए हम करते हैं।
4: और जैसे हम लोग बीज उपचार कर देते हैं तो खरपतवार में भी इनका फर्क थोड़ा सा पड़ता है?
2: नहीं, खरपतवार में तो नहीं पड़ता, खरपतवार के लिए सीड ट्रीटमेंट नहीं है। सीड ट्रीटमेंट मतलब आपके पौधे और आपके बीज में जो बीमारियां लग रही है वो ना आए।
4: तो खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाना चाहिए?
2: देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और चूंकि ये खरीफ की फसलें हैं, हर बारिश के साथ में नए वीड्स जो आपके आते ही हैं,
4: और फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा भी करते हैं।
2: बिल्कुल, आप प्रकाश के लिए, पोषक तत्वों के लिए, पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। मान लीजिए आपने अपने लिए खाना परोसा है और वो कोई और ले जाए, तो हम अपने पोषक तत्व जो है हम अपने पौधों को देना चाहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि सिर्फ फसल के समय नहीं, जैसे अभी हमने कहा खरीफ के बाद 3 महीने आपका खेत खाली था, अगर आपने खेत नहीं संभाला तो अभी उसमें खरपतवार होंगे, और वो बीज बनाते हैं और लाखों की संख्या में बीज बनाते हैं। तो हम कहते हैं 1 ईयर सीडिंग 7 ईयर वीडिंग, एक बार अगर आपने बीज बनने दिया तो आपको 7 साल उसका नियंत्रण करना पड़ेगा। तो खाली खेत में भी खरपतवार को ना पनपने दें, पहली बात। दूसरा, आप खेत में बुआई के बाद तुरंत बाद यानी कि 48 घंटे के भीतर भीतर जब खेत में जर्मिनेशन या पौधा ना उगने लगे, उस समय आपको एक पेंडेमिथिलीन नाम का एक ब्रॉड एक स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है, उसका आप 1 लीटर मात्रा 600 लीटर पानी में घोल के 1 हेक्टेयर की दर से यानी 2.5 एकड़ पे अगर आप छिड़क देते हैं तो शुरुआती 20-25 दिन पर आपको तक खरपतवार नहीं आते। कुछ फसलों में एक्जल्टी तिलहनी फसलों और उसमें तो कम है, लेकिन आप मतलब खड़ी फसल में खरपतवार नहीं है, तो 20-25 दिन पर अगर आप एक निराई गुड़ाई कर लेते हैं तो आपको लंबे समय तक खरपतवारों से मुक्ति मिलेगी। और पूरा पीरियड आपका क्रॉप वीड फ्री होना जरूरी नहीं है, प्रतिस्पर्धा का एक समय है, यानी कि आप समझ लीजिए 20 दिन से लेके और 35-40 दिन तक अगर आप खरपतवार मुक्त रख लेते हैं तो आपकी प्रतिस्पर्धा ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि पौधा खुद से ही बढ़ जाता है, तब खरपतवार निश्चित रूप से आपकी फसल को उतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
3: डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये भी बताएं कि क्या कोई सरकारी मदद भी मिलती है इसमें?
2: जी देखिए, सरकार का जैसे हमने कहा कि बहुत बड़ा रुझान है, 30-31 तक हमको तिलहन के संदर्भ में आत्मनिर्भर होना है, उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें तो आत्मनिर्भरता, उसके लिए हम सीड हब्स बनाएंगे ऑयल सीड्स में, तो उसमें आपको अच्छी किस्मों के उन्नत बीज दिए जाएंगे, केवीके से आप संपर्क कर सकते हैं। सीड के मिनी किट प्रोग्राम्स हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है अच्छी किस्म का उस क्षेत्र के लिए वो बीज उपलब्ध कराना। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल और ऑयल पाम बहुत चल रहा है, उसके जो आपके क्षेत्र हैं जहां पे सिर्फ एक फसल ली जाती है उसमें तिलहनों को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए।

0: है, सह फसली या इंटरक्रॉपिंग के रूप में कौन कौन सी किस्में और कौन कौन सी तिलहनी फसलों को उगा सकते हैं ये। उसके अलावा जो आपका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है उसमें ऑयल पाम एरिया का एक एक्सपेंशन का एक प्रोग्राम है जिसके माध्यम से भी इसमें किया जा रहा है। उसके अलावा टारगेटेड राइस फेलोज है हमारे पास, मतलब धान के बाद जहां फसलें नहीं है वहां कौन सी तिलहन फसलों को, जैसे सरसों की अगर अपन बात करें तो खरीफ में तो नहीं लेकिन रबी में इस पर एक बहुत बड़ा है, जहां पे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जितना भी ये है उसमें धान के बाद हम उन फसलों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो डॉक्टर साहब, चलते चलते अब हमारे किसान भाई उम्मीद करते हैं कि आप आखिर में क्या उनसे महत्वपूर्ण लाइनों में कहना चाहेंगे, क्योंकि अब बारिश भी होने वाली है और इनकी बुआई भी शुरू होने वाली है।
0: आप अपने खेत को बिल्कुल तैयार रखिए। आप समझ लीजिए कि बारिश अभी आने से पहले आपको खेत के अंदर अगर अपन गोबर की खाद की बात करें तो वो अभी से मिला देनी चाहिए, क्योंकि उसको सड़ने गलने में 15 से 20 दिन लगता है और अधिक टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पर ही वो अच्छे से सड़ती गलती है, वरना बाद में टर्माइट की दिक्कत होती है। तो एक तो आपको जितने भी ऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, जो जैविक स्रोत हैं आपके पोषक तत्वों के, उनको आप अभी ही डाल दें। आप अपने बीज की तैयारी कर लें, आप जो अच्छे स्रोत से अच्छी किस्म का बीज आप लेकर रखें, पोषक तत्वों का आप तैयारी कर लें, खेत को आप लेवलिंग कर लें, लेजर लेवलर की हम बात करते हैं जिसमें 1% स्लोप खेत में रखिए ताकि ऑटोमेटिकली ड्रेनेज हो जाए, क्योंकि बारिश के समय कई बार अधिक बारिश से जल भराव भी होता है तो तिलहनी फसलें उसके लिए भी बहुत संवेदनशील है। तो खेत को लेवल रखें, आप लेजर लेवलिंग कराएं, खेत की तैयारी कर लें, मिट्टी की जांच करा के पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर पोषक जो आपके उर्वरक हैं उनको संग्रहित कर लें और निश्चित रूप से तिलहनी फसलों में आपको अच्छा उत्पादन और अच्छा लाभ मिलेगा।
2: बिल्कुल, और शुरू में ही कहा था कि हम लोग आत्मनिर्भर हों इस दिशा में, तिलहनी फसल की दिशा में।
0: जी, वो लक्ष्य भी हमारे सामने है कि 2030 तक होना ही है।
2: खरीदे ना बल्कि दूसरे देश हमसे मंगाएं। तो ऐसा जरूर उम्मीद करते हैं कि भाई आज की जानकारी हमारे सभी किसान भाई बहनों के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगी। हमारे साथ थी डॉक्टर कपिला शेखावत, प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।
0: बहुत धन्यवाद।
2: इस कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल, प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर, और आपकी सेवा में प्रस्तुत किया प्रतिमा शर्मा
1: और गौतम झा ने।
2: अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेसवार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
0: आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया

0: ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरूआत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूं और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिज्जा के 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा में के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में लू की स्थिति के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर आज भीषण लू की स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary of State Marco Rubio attended the meeting. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. Jaishankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations, in addition to assisting others. He said the Quad nations are open societies who foster innovation and creativity in the quest of growth for prosperity.
3: As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world.
2: Dr. Jaishankar emphasized that Indo-Pacific region must remain a driver for global growth and stability, he said, as maritime democracies, pluralistic societies and market economies, Quad nations share the responsibility towards a free and open Indo-Pacific. In his statement, U.S. Secretary of State Marco Rubio said the United States will be hosting Quad partners later this year for a fuel security forum to further expand this, saying that Quad nations share strong values and have aligned interests. Secretary Rubio said the U.S. is deeply committed to the Quad partnership. India and the US today signed a key bilateral framework aimed at securing the supply, mining and processing of critical minerals and rare

नमस्कार, स्वागत करती हूं मैं अपराजिता आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 पर, जहां ये समय है आकाशवाणी के संग यादों के रंग का। आप सब तो जानते हैं कि आपका हमारा आकाशवाणी इस वर्ष 90 स्वर्णिम साल पूरे कर रहा है। इसी उपलक्ष में हम अपनी श्रृंखला में विशिष्ट अतिथियों के साथ बातचीत लेकर आते हैं, उनके साथ उनके जो अनुभव हैं वो हमारे साथ यहां स्टूडियो में साझा करते हैं और ये दिलचस्प बातें हम आप तक लाइव पहुंचाते हैं इस समय पर, जैसे कि आज हम आपके साथ करने वाले हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुशाभाऊ ठाकरे, पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ के पूर्व कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा। आप जाने माने पत्रकार भी हैं और शिक्षा, संस्कृति, राष्ट्रीयता के अध्येता के रूप में प्रसिद्ध हैं। भारत सरकार के प्रमुख संस्थान नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के आप लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे हैं। एक यशस्वी मीडिया

0: शिक्षक के रूप में भी आप जाने जाते हैं। सर, आपके लिए बताने को बहुत कुछ है, मैं कुछ सम्मानों का उल्लेख भी करना चाहूंगी, लेकिन पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ एफएम गोल्ड के स्टूडियो में।
1: नमस्कार।
0: माननीय राष्ट्रपति द्वारा आपको गणेश शंकर विद्यार्थी राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान दिया जा चुका है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार का माणिकचंद वाजपेयी पत्रकारिता सम्मान और ऐसे ही विभिन्न सम्मानों से प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा अलंकृत हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आज आप अपनी यादों के साथ हमारे साथ यहां मौजूद हैं। और हां, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि आप लगभग 4 दशकों से आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं, और इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए नहीं हो सकता कि आप अपने अनुभव तो हमारे साथ साझा करेंगे ही, आप पत्रकारिता के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं लंबे समय से, तो बहुत सारी बातें आपसे जानने को होंगी। सर, आपका एक बार और मैं यहां स्वागत करती हूं आकाशवाणी के संग यादों के रंग में।
1: धन्यवाद।
0: शुरुआत सर करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे आपसे कि आकाशवाणी के साथ आप कब और कैसे जुड़े?
1: अप्रियता जी, मैं तो गांव में रहता था, बचपन मेरा वहीं बीता, मथुरा के पास पटलोनी गांव है मेरा। तो मुझे याद है मैं 9-10 साल का रहा हूंगा
0: जी,
1: तो जो ब्रजमाधुरी कार्यक्रम आता है
0: जी
1: आकाशवाणी पर,
0: बिल्कुल,
1: ये हमारे यहाँ बहुत लोकप्रिय था। और उसके समय पर गांव के बहुत सारे लोग, तब ज्यादा बहुत ट्रांजिस्टर नहीं होते थे, तो हमारे पड़ोस में ही एक दुकानदार थे, उनके यहाँ एक ट्रांजिस्टर रहता था, तो वहां सब इकट्ठे होते थे। और ब्रज माधुरी में विशेषकर जो राजा नल की कथा ढोला के रूप में आती है, सारंगी ढोलक और मजीरे के साथ, बड़ा अद्भुत आनंद है वो ब्रज के लोगों के लिए।
0: क्या बात।
1: तो उस ढोला को सुनने के लिए हम सारे लोग ब्रज माधुरी की प्रतीक्षा करते थे, और दूसरे लोक कथाएं भी ब्रज की आती थी उसमें,
0: जी जी,
1: वो सब भी सुनते थे, लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण राजा नल का ढोला होता था।
0: अच्छा।
1: तो 9-10 वर्ष की आयु से मैं आकाशवाणी से परिचित हुआ, और ये जुड़ाव फिर आगे बढ़ता चला गया। जब मैं पढ़ने लगा या पत्रकारिता में आया
0: जी,
1: तो सीधा संबंध मेरा लगभग 1983 में ग्वालियर में आकाशवाणी के साथ जुड़कर कुछ काम करने का आया। वहां श्रीमान लक्ष्मी शंकर वाजपेयी
0: जी जी
1: उस समय पैक्स हुआ करते थे, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव,
0: अच्छा,
1: ग्वालियर में
0: जी,
1: और वो भी बहुत अच्छे साहित्यिक हैं,
0: बिल्कुल,
1: और मेरी भी रुचि साहित्य में थी, तो उनसे परिचय हो गया, और फिर उनके माध्यम से आकाशवाणी के लिए कई वार्ताएं मैंने प्रस्तुत भी की, लिखी भी
0: जी।
1: और बाद में वो क्रम जुड़ता चला गया। फिर दिल्ली में आया तो यहां भी मैंने आकाशवाणी के साथ बहुत काम किया, वार्ताएं बहुत सारी लिखी, कई संगोष्ठियों में मैं शामिल हुआ
0: जी।
1: और विशेषकर वीरेंद्र गोहिल
0: जी जी
1: और सोमदत्त शर्मा जो बाद में डिप्टी डायरेक्टर भी रहे हैं
0: जी,
1: तो फीचर का काम ये देखते थे, तो मुझे स्वतंत्र पत्रकार के रूप में और फीचर का काम मिलता रहा
0: जी।
1: और मैंने 2-3 तो बहुत अच्छे फीचर बनाए। आज तो देश में आप जानती हैं कि मुक्त विश्वविद्यालयों का बहुत चलन हो गया है
0: जी सर जी,
1: लेकिन उस समय देश में केवल 5 मुक्त विश्वविद्यालय थे, ओपन यूनिवर्सिटी।
0: अच्छा।
1: उस पर एक फीचर बनाने के लिए गोहिल जी ने मुझे दिया
0: जी,
1: सोमदत्त जी का वो एक तरह से ब्रेन चाइल्ड था।
0: अच्छा।
1: विषय
0: जी,
1: तो मैं फिर कोटा गया, वहां ओपन यूनिवर्सिटी थी, हैदराबाद गया, नासिक गया, और ये दिल्ली में थी, तो ये सब एक बहुत बढ़िया फीचर हमने उस पर दिया। दूसरा एक बड़ा रोचक विषय उस समय फीचर का था
0: जी,
1: दिल्ली में आज भी जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, बड़ा सिरदर्द है, और हर बार कहा जाता है कि हम इनको खत्म कर देंगे,
0: बिल्कुल,
1: तो उस समय इस पर एक फीचर बनाने का कार्यक्रम बना कि जहां जहां कूड़े के ढेर हैं उसके कारण क्या दिक्कतें आ रही हैं। और एक उसमें से बड़ा रोचक तथ्य सामने आया कि

0: एक स्थान पर मैं गया, उधर उत्तम नगर के आसपास कोई क्षेत्र था
1: जी जी,
0: वहां बहुत बड़ा कूड़े का ढेर था और पास में झुकी झोंपड़ियों में लोग रहते थे। तो मैंने देखा कि कूड़े के ढेर में से एक पतला सा पाइप डाल के और ईंटों का चूल्हा बना के
1: अच्छा
0: उस पर खाना बन रहा था।
1: क्या बात।
0: और एक भगोनिया में शायद दाल या सब्जी कुछ बन रही थी, रोटी सेक रही। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा उन लोगों से तो उन्होंने कहा कि हमको तो पता ही नहीं था, एक दिन वहां बीड़े पीते पीते जो माचिस की तीली अच्छा। मैंने डालती तो उसमें आग लग गई तो समझ में आया कि कुछ है यहाँ। फिर हम लोगों ने खोज खबर ली तो उसमें से कोई गैस, मिथेन गैस या कुछ निकलती होगी कूड़े में से, उसमें से फिर उन लोगों ने उसका उपयोग शुरू कर दिया।
1: क्या बात है, तो आविष्कारक बन गए।
0: इस पर एक बहुत बढ़िया फीचर हम लोगों ने बनाया, एक वेस्ट प्लास्टिक पर हम लोगों ने बहुत बढ़िया फीचर बनाया
1: जी।
0: इधर बहुत बड़ी पश्चिम बिहार के आगे प्लास्टिक खरीदी की मंडी टाइप है
1: जी,
0: उसमें मैं गया और वहां झगड़ा भी हो गया। कई लोगों को लगा कि ये हमारे लिए कोई समस्या खड़ी करेगा व्यक्ति
1: अच्छा।
0: तो मुझे मारने भी दौड़े वो लोग और बाद में मैंने उनको समझाया कि देखो ये तुम्हारे लिए समस्या नहीं बल्कि तुम्हारे लिए इसका कोई समाधान निकलेगा। हो सकता है इसको कार्यक्रम को सुनकर सरकार कोई तुम लोगों के भविष्य के लिए अच्छी योजना बनाए। ऐसे कई फीचर मैंने उसमें बनाए, बहुत आनंद आया।
1: बिल्कुल सर, ऐसी ही रोचक बातें आपके साथ आज हम यहां करते रहेंगे और ये बातों का सिलसिला जो है आकाशवाणी के संग यादों के रंग में आप तक पहुंच रहा है FM गोल्ड के माध्यम से। फिलहाल हम सर की ही पसंद का एक बहुत ही सुंदर गाना सुजाता फिल्म से सुन रहे हैं और जल्दी से गाना सुनकर वापस आएंगे और ऐसी ही रोचक बातें यहां हम करते रहेंगे प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा के साथ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो

इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सभी सुन रहे हैं आकाशवाणी के संग यादों के रंग, जहां हम आकाशवाणी के 90 साल जो पूरे हो रहे हैं उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा। जाने माने शिक्षाविद हैं आप और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और बहुत सारे जो उपलब्धियां हैं वो आपके नाम के साथ जुड़ी हैं। सर, हमें अपनी यादों के बारे में, आकाशवाणी के साथ लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं, बहुत सारी बातें बता रहे हैं, तो कोई ऐसा वाक्या जो आपको याद आता हो या फिर कोई ऐसा गाना या कोई ऐसा प्रोग्राम जिसे सुनने के लिए आप आकाशवाणी के बिना या यूं कहें कि रेडियो के बिना नहीं रह पाते थे और खींचे चले आते थे, या फिर आप कहीं बिजी होते थे, आपको लगता था कि अब समय हो गया है, अब चलना चाहिए, ये सुनना है जाकर?
1: आकाशवाणी के साथ जुड़ाव तो अपराजिता जी मेरा, जैसा मैंने बताया, बचपन से रहा
0: जी।
1: लेकिन उस समय जीवन बहुत संयमित होता था, लोगों पास उतने साधन नहीं थे,
0: बिल्कुल
1: ट्रांजिस्टर भी नहीं था
0: जी।
1: मुझे याद है गांव में जो शादियां होती थी और किसी को ससुराल से ट्रांजिस्टर मिल गया तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी।
0: क्या बात है।
1: तो फिर उसके ट्रांजिस्टर को सारे लोग घेर लेते थे
0: जी जी।
1: और
0: जी।
1: मैं जब थोड़ा सा कुछ करने धरने लायक हुआ तो एक 500 रुपए का छोटा सा ट्रांजिस्टर मैंने लिया।
0: अच्छा।
1: और वो मुख्य रूप से इसलिए लिया कि मैं प्रतिदिन आकाशवाणी के साथ उससे जुड़ा रह सकता हूं।
0: क्या बात है।
1: और कई कार्यक्रम मैंने स्वयं लिखे, उनमें सहभागी बना, लेकिन कई कार्यक्रम ऐसे आते थे जिनको सुनने से जीवन की सजगता बढ़ती थी।
0: बिल्कुल सही।
1: और मैं बाद में पत्रकारिता में आया तो एक गुण मैंने इन कार्यक्रमों के माध्यम से सीखा कि चूक की कोई गुंजाइश नहीं है
0: जी।
1: रेडियो में चूक को सुधारने का कोई साधन नहीं है। पत्रकारिता में तो रिपोर्ट लिखते समय सुधारा जा सकता है
0: जी, जी।
1: तो वो एक सजगता मेरे अंदर हमेशा बनी रही और आज भी मैं एक बार जो लिख देता हूं, लोग कहते हैं कि आप दो दो तीन तीन पेज का भी कुछ लिखते हो तो उसमें एक भी कट नहीं लगता है।
0: क्या बात है।
1: ये गुण मैंने आकाशवाणी से सीखा।
0: बहुत खूब।
1: और अभी जैसे ब्रजमाधुरी की मैंने बात कही
0: जी,
1: तो अभी पिछले वर्ष भी मैंने एक कार्यक्रम यहां ब्रजमाधुरी के लिए किया था और ब्रज मेरी आत्मा में समाया हुआ है, मैं वहीं का रहने वाला हूं। तो उस कार्यक्रम में था कि ब्रज के लोक जीवन में ग्रीष्म ऋतु के में बचाव के उपाय।
0: अच्छा।
1: इस पर बड़ा रोचक और बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ,
0: तो इसकी तो हमें आज भी जरूरत है।
1: हाँ। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ,
0: बचाव के उपाय।
1: और बाद में एफएम गोल्ड ने एक कार्यक्रम शुरू किया था फोन पर, वो पसंद
0: जी जी जी
1: पूछी जाती थी, लोग फोन करते थे,
0: हेलो एफएम गोल्ड की बात कर रहे हैं
1: इस तरह कुछ था। तो मैंने भी उसमें एक दो बार बहुत प्रयास करके, क्योंकि उसमें फोन लगना बड़ा मुश्किल हो जाता
0: सही
1: है।
0: सही कहा आपने। हाँ। बिल्कुल नहीं लगता।
1: तो एक गाना मैं बहुत सुनता था
0: जी।
1: और बार बार, आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ा है फिल्म का गाना लेकिन बड़ा आध्यात्मिक गाना है, वो जीवन का दर्शन है उस पूरे गाने में
0: जी।
1: और वास्तव में देखें आप, मेरे मन पर इस बात का बहुत असर पड़ा कि आकाशवाणी ने इस देश की कला

0: कैसे,
1: क्या बात है।
0: ये फिल्म का गाना भी है लेकिन इसमें बड़ी आध्यात्मिकता है। सीमा फिल्म आती थी
1: जी
0: पहले, बाद में मैंने देखी वो नेट पर, तो वो अद्भुत फिल्म है, बलराज साहनी उसमें है, तो बहुत अद्भुत वो गीत है, वो पूरे जीवन दर्शन को व्यक्त करता है
1: जी। तो चलिए सर की पसंद का ही गीत हम पहुंचा रहे हैं आप तक आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

0: Din tana na dirda tanum tana dere na din tana na dirda tanum tana dere na din tana na dirda tanum tana dere na din tana na dirda tanum tana dere na din tana na dirda tanum dirda tanum dirda tanum.
1: ये खूबसूरत गीत अभी आपने सुना दिल ही तो है फिल्म से मन्ना डे की आवाज में. फिलहाल मैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक लूंगी और जल्द वापस आएंगे. बातचीत जारी रखेंगे प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा के साथ आकाशवाणी के संग यादों के रंग में.

0: तो आकाशवाणी के संग यादों के रंग में बहुत सारी यादें हम प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा की यहां सुन रहे हैं। वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं अपने अनुभव। और जब हम सब गीत सुन रहे थे तो मेरी उनके साथ बातचीत यहां स्टूडियो में चल रही थी और कुछ बातें उन्होंने मुझे बताई बड़ी ही दिलचस्प, जो मैं चाहती हूं आपके साथ भी वो जरूर साझा करें। महापुरुषों के भाषण जो हैं सर, आपने बताया कि वो आकाशवाणी के आर्काइव्स में जो हैं रखे जाते हैं संजो के, तो इनके ऊपर आप कह रहे हैं कि जब आप नेशनल बुक ट्रस्ट में थे तो बड़ा काम हुआ उन पर और वो वर्ल्ड बुक फेयर में भी उन्हें रखा गया, तो उसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए।
1: देखिए, आकाशवाणी का भारत की विचार संपदा को बचाए रखने में बहुत बड़ा योगदान है
0: जी।
1: और यहां उस दौर में जब देश स्वाधीन हुआ और उसके बाद देश ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की, तो बहुत सारे जो प्रमुख लोग हुए, महापुरुष हुए, सरदार पटेल और दूसरे लोग, तो उन सब ने जो भाषण दिए
0: जी,
1: शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, ऐसे अनेक प्रमुख लोगों के साक्षात्कार यहां आर्काइव में सुरक्षित हैं
0: जी।
1: लेकिन वो नई पीढ़ी तक पहुंचे
0: जी,
1: ये बहुत आवश्यक है, नहीं तो वो वहां बंद पड़े रहेंगे।
0: बिल्कुल।
1: तो यहां उस समय जब मैं नेशनल बुक ट्रस्ट का चेयरमैन था तो हमारा काम ही पुस्तकों का प्रकाशन था, तो मेरा ध्यान इस बात पर गया
0: जी।
1: तो यहां सोमदर्श शर्मा जी थे, उनके साथ मैंने इस विषय की चर्चा की। तो फिर शहरयार साहब जो उस समय महानिदेशक थे
0: जी,
1: उनके पास हम लोग गए, विषय उनके सामने रखा तो बहुत प्रसन्न हुए, बोले ये तो

0: भविष्य के लिए एक स्थायी काम हो जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: और एनबीटी अगर इस काम को अपने हाथ में लेता है तो हमको इससे बहुत बड़ा संबल मिलेगा।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि एनबीटी पुस्तकों का प्रकाशन करता है, तो हम लोगों ने शहरयार साहब के साथ और एनबीटी और आकाशवाणी इसका एक एमओयू तैयार कराया, अनुबंध किया, और उसमें साहित्य संपदा के नाम से
1: जी
0: हम उन ग्रंथों का प्रकाशन करेंगे। तो शुरुआती दौर में हमने ऐसे 4 खंडों का प्रकाशन किया, और उस समय जो विश्व पुस्तक मेला एनबीटी लगाता है प्रति मैदान में, उसमें हमने उनका बहुत भव्य लोकार्पण किया, और बहुत सारे साहित्यकार और लेखक, पत्रकार, कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोग उसमें आमंत्रित किए
1: जी।
0: और आकाशवाणी से भी शहरयार साहब गए, सोमदत्त जी आए और लक्ष्मी शंकर वाजपेयी आए। तो वो एक अद्भुत काम भविष्य के लिए, विशेषकर जो नई पीढ़ी है उसको भारत की वैचारिक विरासत से साक्षात्कार हो, परिचय हो, इसके लिए वो बहुत बड़ी उपलब्धि हुई ये।
1: बिल्कुल।
0: और बाद में तो मैं नेशनल बुक ट्रस्ट से अलग हो गया
1: जी।
0: तो मेरी जानकारी में नहीं बाद में कितना काम उस पर हुआ, लेकिन उस समय हमने पहले प्रयास में 4 खंडों का प्रकाशन किया और लोगों ने बड़ी प्रशंसा की उसकी। ये एक बहुत अच्छा काम, क्योंकि आकाशवाणी ने जो काम किया है उसको स्थायित्व इससे मिलता है। तो ये मुझे भी मन में बहुत संतोष है कि एक काम करने का अवसर हमें आकाशवाणी के लिए, और आकाशवाणी ने जो विरासत सहेजी है उसको लोगों के सामने लाने का अवसर हमको मिला।
1: बहुत खूब। और सर, इस यात्रा में जो आप यात्रा हमारे साथ आज यहां साझा कर रहे हैं, इसमें सुरीले गीतों का भी साथ है जो आपने प्लेलिस्ट हमारे साथ साझा की है। कुछ गाने सर की पसंद के आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और इसी कड़ी में अगला गाना अनामिका फिल्म से हम आप तक पहुंचा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जी, आकाशवाणी के संग यादों के रंग में आज हम बातचीत कर रहे हैं प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा के साथ। आप लंबे समय से आकाशवाणी के साथ जुड़े हुए हैं और जाने माने शिक्षाविद भी हैं और भारत सरकार के प्रमुख संस्थान नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के साथ आप लंबे समय तक अध्यक्ष के रूप में जुड़े रहे। आपने बहुत सारे अनुभव हमारे साथ अब तक यहां साझा किए हैं और बहुत सी बातें हैं सर के पास हमारे साथ बांटने के लिए। तो सर, आप कुलपति भी रहे हैं कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि बड़ा जिम्मेदारी वाला ये काम होता है और भारी जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंधों पर, इसके साथ भी क्या आकाशवाणी को आप निरंतर सुनते रहे, अपने दिल के करीब आपने पाया?
5: बिल्कुल। और जैसे कहते हैं ना कि आदमी का पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता
4: जी।
5: तो वास्तव में बचपन की जो बड़ी सुकोमल भावनाएं होती हैं, और मैं तो गांव में ही जन्मा, वहीं बड़ा हुआ, तो बहुत अनगढ़ जीवन
4: जी।
5: गांव का रहता है, लेकिन उसमें भी जो मानवीय संवेदनाएं हैं
4: जी,
5: मेरी मानवीय संवेदनाओं को जगाया आकाशवाणी ने
4: जी,
5: राजा नल के ढोला के माध्यम से
4: जी, जी।
5: राजा नल बड़े तेजस्वी राजा हुए, धर्मनिष्ठ राजा थे, और ऐसा कहा जाता है कि उनकी धर्मनिष्ठता से प्रभावित होकर जो बड़े बड़े पक्षी थे वो भी उनके रथ के ऊपर छांव करते हुए चलते थे।
4: क्या बात,
5: करत पखेरु छांह,
4: क्या बात।
5: ऐसा तो मानवीय संवेदनाओं को आकाशवाणी ने बहुत समृद्ध किया, और उस नाते अभी भी मेरे पास एक बहुत छोटा सा ट्रांजिस्टर है और
4: अच्छा।
5: मैं बराबर आकाशवाणी के और FM को तो मैं ज्यादातर सुनता हूँ
4: जी, जी।
5: FM गोल्ड को
4: जी,
5: लेकिन जो दूसरे शॉर्ट वेव और उसके भी मीडियम वेव के
4: बिल्कुल
5: स्टेशन है
4: जी,
5: उनको भी बीच में सुनता हूँ, समाचार भी सुनता हूँ। तो मेरे यहाँ कई लोग आते हैं
4: जी,
5: और वो देखते हैं तो बोले आप आज भी ट्रांजिस्टर सुनते हैं तो

0: उनको भले ही आश्चर्य लगता है
1: जी जी,
0: लेकिन मेरे जीवन में गहरा जुड़ाव रहा है। और वहां भी रायपुर में मैं कुलपति रहा, तो आपने सही कहा, बहुत सारी प्रशासनिक शैक्षणिक जिम्मेदारियां कुलपति के ऊपर होती हैं विश्वविद्यालय की, उन सब में व्यस्तता रहती है। लेकिन क्योंकि हमारा पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, तो वहां हमने एक जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन भी वहां है, और उसके माध्यम से हम बहुत सारे कार्यक्रम कराते थे।
1: बहुत बढ़िया।
0: और आकाशवाणी का जो मेरा अनुभव था
1: जी,
0: उस नाते हमने उसमें लोक जीवन को और लोक भाषा को जोड़ने का प्रयास किया।
1: अच्छा।
0: और अपने विद्यार्थियों को भी मैं बराबर प्रेरित करता था कि अपनी बुद्धिमत्ता को जन सामान्य के साथ जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम रेडियो है।
1: बहुत
0: तो वहां भी घर में भी मैं बराबर जब भी समय मिलता था तो आकाशवाणी की चर्चाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं
1: जी,
0: और मेरे ऊपर गहरा प्रभाव उन वार्ताओं का है
1: जी।
0: तो उस नाते भी मैं हमेशा आकाशवाणी के संपर्क में रहा हूं
1: जी।
0: और जब दिल्ली में था तब तो मेरा बहुत जुड़ाव बहुत सारी संगोष्ठियों में, बहुत सारी वार्ताओं में, बहुत सारे दूसरे कार्यक्रमों में बराबर मेरा जुड़ाव रहता था। लेकिन बाहर रहने पर उतना जुड़ाव नहीं रहा यहां पर। मैं जब भी दिल्ली आता था किसी काम से या अवकाश में तो आकाशवाणी के बहुत सारे लोगों से मेरा बड़ा निकट संबंध है, बहुत आत्मीय संबंध है वर्षों का।
1: बिल्कुल।
0: तो कहीं न कहीं वो याद करते थे कि आप जब भी दिल्ली आएंगे तो हम अमुक कार्यक्रम में आपको आमंत्रित करेंगे। तो ऐसे कई कार्यक्रम में दिल्ली से बाहर रहने पर भी मेरा बराबर जुड़ाव रहा।
1: बिल्कुल।
0: और एक तरह से मेरे जीवन का अहम हिस्सा आकाशवाणी है।
1: क्या बात है। एक और सर की ही पसंद का गाना, खूबसूरत ये गीत, मेरे दिल के भी बहुत करीब है, मुकेश साहब की आवाज में, पूरब और पश्चिम फिल्म से।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी, एक खूबसूरत सफर हमारा आज यहाँ चल रहा है आकाशवाणी के संग यादों के रंग में, प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा के साथ। कैसे यहाँ लगभग 45 मिनट हमारे गुजर गए हमें पता नहीं चला, और मुझे लगता है ये आखिरी पड़ाव है सर इस प्रोग्राम का। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्रांतिकारियों पर आपने कुछ प्रोग्राम बनाए हैं आकाशवाणी के लिए, उसके बारे में हमारी जो श्रोता हैं, लिसनर्स हैं, उन्हें कुछ बताएं।
2: देखिए, आकाशवाणी के साथ इतने लंबे समय तक जुड़े रहकर जो कुछ भी मैंने काम में सहभाग किया उसमें मुझे सबसे महत्वपूर्ण काम लगता है क्रांतिकारियों पर बहुत सारी वार्ताएं लिखकर यहां मैंने प्रसारित कराई हैं, और क्रांतिकारियों पर मेरा बचपन से जुड़ाव होने के कारण और मैंने बहुत पढ़ा और बहुत सारी पुस्तकें अभी भी मेरे घर में, शचीनाथ सैनलाल की बंदी जीवन जो क्रांतिकारियों की गीता मानी जाती है वो अब लगभग दुर्लभ पुस्तक है, लेकिन वो भी मेरे पास है। तो विशेषकर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी और सोमदत्त जी, जब भी कोई आकाशवाणी में किसी क्रांतिकारी की जयंती या पुण्यतिथि आती थी तो उसके लिए एक वार्ता प्रसारित करने की बात आती थी तो मुझे याद किया जाता था, भले ही मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं कहीं दूर दूर भी रहा। इवन जब वाजपेयी जी बीकानेर या अल्मोड़ा में भी रहे आकाशवाणी केंद्रों में, और वहां भी इनको कुछ प्रसारित करना होता था तो मुझे वो बताते थे कि इस पर हमको कार्यक्रम देना है, आप कुछ लिख के भेजिए। और कई बार तो ऐसा हो जाता, जैसे यहीं आकाशवाणी दिल्ली में ही जब वो थे तो राजगुरु जो महान क्रांतिकारी हुए हैं और शहीद आजम भगत सिंह के मित्र हुए हैं,
1: बिल्कुल
2: उनके साथ राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी हुई, तो राजगुरु की जयंती पर कुछ कार्यक्रम प्रसारित होना था पर कहीं इन्हें सामग्री नहीं मिल रही थी।
1: अच्छा।
2: तो मुझे वाजपेयी जी ने कहा कि परसों ही ये प्रकाशित होना है, आप कुछ लिखिए इस पर। संयोग से मेरे पास भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, फिर मैंने अगले दिन पूरा दिन प्रयास करके उनके संबंध में जानकारी उठाई और पूरा राइटअप लिख के दिया। तो क्रांतिकारियों का जो जीवन है वो केवल स्वाधीनता आंदोलन में बलिदान की महान परंपरा भर नहीं है, बल्कि किसी भी राष्ट्र का किस प्रकार निर्माण किया जाता है इसकी एक बहुत बड़ी पहचान हमारे भारत के क्रांतिकारी रहे हैं। और विशेषकर आप देखिए, जब आज के समय में हर नौजवान अपने कैरियर की चिंता करता है तो चाहे चंद्रशेखर आजाद रहे हों, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल रहे हों, अशफाक उल्ला खां रहे हों, भगत सिंह रहे हों, इन सबने तो 25 और 30 वर्ष की अवस्था के बीच में
1: बहुत
2: पूरा जीवन बलिदान कर दिया और कभी ये नहीं सोचा कि हमारा भविष्य क्या होगा।
1: बिल्कुल,
2: देश का भविष्य संवरेगा तो हमारा भविष्य रहेगा, देशवासियों का भविष्य रहेगा। तो नौजवानों के सामने एक आदर्श है क्रांतिकारियों का जीवन, और मुझे सचमुच बहुत प्रसन्नता होती है कि मैं क्रांतिकारियों के जीवन का अध्ययन करके और उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए

0: काम कर सका। एक बड़ा मार्मिक प्रसंग भगत सिंह के संबंध में एक राइटअप में मैंने लिखा था। भगत सिंह ने एक जगह कहा है, हमारी याद बनाए रखना
1: जी,
0: बहुत मार्मिक प्रसंग
1: जी जी।
0: तो ये जो क्रांतिकारियों का जीवन है, हमारे विद्यार्थियों के सामने, नौजवानों के सामने, और एक सुखद स्मृति और प्रेरणा के रूप में हमेशा रहे
1: जी,
0: ये बहुत आवश्यक है। और आकाशवाणी ने इसमें बहुत योगदान दिया है। और मुझे याद है जब जापान ने अपने परमाणु विध्वंस के 50 वर्ष पूर्ण किए, जिसमें उसको बहुत विनाश झेलना पड़ा, तो उन्होंने एक किताब निकाली थी, इनक्रेडिबल जापान।
1: अच्छा।
0: और उसमें जो संपादकीय है उसमें लिखा हुआ है कि जापान अगर विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में आज गिना जाता है तो केवल इसीलिए नहीं कि उसने आर्थिक तरक्की कर ली है, बल्कि हमारे देश के जो नागरिक हैं वो देश के प्रति किस प्रकार का समर्पण रखते हैं, उसके कारण जापान दुनिया में आगे बढ़ सका। तो हमारे देश का निर्माण करने में, स्वाधीनता आंदोलन में जिन लोगों ने हुतात्माओं ने जीवन झोंक दिया, उनकी स्मृतियां हमारे युवाओं की प्रेरणा बने, वो उनसे समर्पण का भाव लेकर देश और समाज के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो मुझे लगता है ये आकाशवाणी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस देश के भविष्य निर्माण में रहेगी। जैसे विकसित भारत 2047 का संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है, तो उसके निर्माण में भी इसकी बड़ी भूमिका रहेगी
1: जी। हमारा सौभाग्य है सर कि आज आप एफएम गोल्ड के स्टूडियो में यहां आए और आपने अपने इतने सारे अनुभव हमारे साथ यहां साझा किए आकाशवाणी के संग यादों के रंग के अंतर्गत। आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरूआत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्र सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया।

पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उनके कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने उन्हें बधाई दी। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंत राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए श्री सामंत राय ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण से वे प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि वे उड़ीसा में पार्टी को मजबूत करने के लिए व्यापक रूप से काम करेंगे। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिज्जा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबा-ए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को दूसरे क्वालिफायर में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में ये स्थिति कल तक बनी रहने की आशंका है। अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर आज भीषण लू की स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूँ?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई D&D ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई D&D ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov।

0: www.radiomirchi.in।
1: साजन फिल्म से ये गाना मैं पहुंचा रही हूं आप तक, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel, and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with
1: the ICAR, Indian Agricultural Research Institute, IARI, New Delhi, has invited applications for one position of Project Technical Support 3 in the Division of Genetics under an ICMR immediate grant scheme. The position carries monthly emoluments of 28,000 plus HRA and is initially for 1 year, extendable up to 2 years based on performance and project continuation. Interested candidates should apply before 30th May 2026. Detailed information is available on the official website, that is at www.iari.res.in. Division of Plant Pathology has announced a walk-in interview for the contractual post of Project Assistant under a DBT-funded research project titled Leveraging Genetic Resources from Accelerated Genetic Improvement of Linseed Using Comprehensive Genomics and Phenotyping Approaches. The position offers a remuneration of ₹20,000 plus 27 HRA per month. Candidates with BSc graduation in biological sciences, agriculture or related subjects are eligible to apply. Interested applicants should submit their applications with supporting documents before the interview schedule on 29th May 2026. Complete details are available on the Institute's website, that is at www.iari.res.in. The Engineering Department, Chandigarh Administration, has invited applications on deputation basis for the post of Superintending Engineer, Civil. The vacancy is open to officers working in central, state governments, PSUs, autonomous bodies and statutory organizations. The post carries level 13 pay scale. Eligible officers must send their applications through proper channel along with APARS, vigilance clearance and supporting documents. The last date for submission is 16th June 2026. Detailed eligibility conditions and application format is available on the official website. Kindly visit www.chandigarh.gov.in. Regional Institute of Medical Sciences and Autonomous Institute under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, has invited applications for two posts of administrative officer on deputation basis in pay level 8 as per the 7th CPC. Eligible officers from central or state governments, union territories, autonomous organizations, universities, statutory bodies, public sector undertakings or recognized research institutions may apply. The maximum age limit is 56 years as on the closing date of the application. The application must reach through proper channel to the director, RIMS MPhal, or be submitted via email by 31st May 2026. Complete details and the prescribed format and the updates available on the Institute's website. Do refer to www.rims.edu.in. The Gujarat Vidyapeeth, founded by Mahatma Gandhi in 1920, has invited online applications for the post of a finance officer on a 5-year tenure basis. The post carries pay level 14. The university is seeking experienced and institution-oriented professionals with strong administrative and financial management expertise. The printed application form must reach the registrar, Gujarat Vidyapeeth, Ashram Mark, Ahmedabad, by 29th May 2026. Detailed eligibility conditions, qualifications and application guidelines available on the university's website. Do refer to www.gujaratvidyapeeth.org.
0: And now we have the employment news in Hindi.
2: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार की योजना डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अंबेडकर चेयर पद संख्या 1, डॉक्टरल अध्येता पद संख्या 2। योग्यता और अन्य शर्तों तथा वेतन आदि की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट jnujaipur.ac.in। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं निदेशक के निजी सचिव, मानव संसाधन अधिकारी, शैक्षणिक एवं छात्र मामलों के अधिकारी, सहायक सिस्टम विश्लेषक, सह सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, मानव संसाधन एवं प्रशासन, लेखा सहायक और सहायक मानव संसाधन। इन सभी पदों के लिए एक एक रिक्तियां उपलब्ध हैं। कुछ अन्य पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पद नाम है अनुसंधान अनुदान एवं परियोजना अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्लेसमेंट अधिकारी, सहायक विद्युत अभियंता और पुस्तकालय सहायक। इन सभी पदों के लिए भी एक एक रिक्तियां उपलब्ध हैं। आवेदन 15 मई 2026 से खुल चुका है और अंतिम तिथि रहेगी 8 जून 2026। योग्यता और अनुभव संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संस्थान की वेबसाइट देखिए। वेबसाइट है www.igidr.ac.in/careers। नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर में जूनियर कंसल्टेंट NHSL में 2 रिक्तियां उपलब्ध हैं। आयु सीमा 55 वर्ष, वेतन रहेगा 40,000 से 70,000 रुपए मासिक के बीच। आवश्यक योग्यता और अनुभव के विवरण तथा टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए देखिए वेबसाइट www.nhsrcindia.org और www.devnetjobsindia.org। आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 1 जून 2026। कोल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अधीन एक अनुसूचित

0: साथ सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिस्टम, ईएनटी, जियोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, हिंदी एवं कंपनी सचिव पद के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से प्रबंधन प्रशिक्षुओं के रूप में प्रतिभाशाली युवा पेशेवरों को तलाश कर रहा है। ये कोल इंडिया लिमिटेड के रूपांतरण की यात्रा में योगदान करने का अनोखा मौका है, जिसके साथ साथ आप विश्व के ख्याति प्राप्त संस्थान में अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियों, ऑनलाइन आवेदन और पात्रता मानदंड, रिक्तियों की संख्या, ऊपरी आयु की सीमा, आवेदन शुल्क, आरक्षण एवं छूट, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया आदि से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कोल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.coalindia.in। वेबसाइट पर जाकर आप करियर विद CIL लिंक के तहत प्रकाशित विज्ञापन को विस्तार से देख सकते हैं। यदि आपके मन में अन्य कोई जिज्ञासा है तो लिखिए इस पते पर mtrecruitment.cil@coalindia.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
0: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बजे हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों आधा घंटे की इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास, जानेंगे क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर रहेगी हमारी नजर और हम याद करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि या जयंती। दोस्तों कार्यक्रम परिक्रमा में आज आपके साथ हूं मैं मुनीश शर्मा और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। नमस्कार अभिषेक।
3: हेलो मुनीश, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल अवर लिसनर्स हु आर ट्यून्ड इन टू द न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा ऑन 100.1 FM गोल्ड। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट मुनीश। एंड वेल लिसनर्स, ही रीडिफाइंड द वेस्टर्न जॉनरा एंड बिकेम द फेस ऑफ द अमेरिकन वेस्ट। Secondly, he was the embodiment of American ideals. He evolved from a movie star into a cultural symbol of rugged individualism, self-reliance and courage. And lastly, he had unrivaled on-screen longevity, appearing in over 170 movies. He successfully commanded the attention of audiences for 5 decades. Yes, he's none other than John Wayne, the strong, taciturn cowboy or soldier who in many ways personified the idealized American values. We will talk about him later in our program, but first we begin with the news headlines at this hour. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi. Quad commits to stable and secure energy markets.
0: भारत और अमरीका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
3: Union Home Minister Amit Shah visits Sanchu border post in Rajasthan, launches vibrant villages program 2 in border regions of the state.
0: Saudi Arab mein lakhon zayreen aaj haj ki mukhya rasm ada kar rahe hain.
3: And in IPL qualifier 1, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in Dharmashala this evening. And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Vibrant Villages Program 2.

0: बॉर्डर्स।
1: अपनी यात्रा के दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों को वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2 समर्पित किया। इस पहल के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित गांवों में शिक्षा, सड़कों, बिजली और रोजगार के अवसरों समेत बुनियादी ढांचे और आवश्यक सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर जिलों के गांवों को शामिल किया गया है।
0: Chief Minister Bhajan Lal Sharma and Union Law Minister Arjun Ram Meghwal were also present on the occasion. Senior officials including Union Home Secretary Govind Mohan, BSF Director General Praveen Kumar, Intelligence Bureau Chief Tapan Deka and Rajasthan Chief Secretary V. Srinivas attended the program.
1: Kendra Sarkar ne 2 April 2025 ko Vibrant Villages Program 2, VVP 2 ko ek kendriya kshetra yojana ke roop mein manzoori di. इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2028-29 तक कुल 6,839 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया। इसका उद्देश्य उन चुनिंदा रणनीतिक गांवों का व्यापक विकास करना है जो अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे ब्लॉक्स में स्थित हैं। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। हालांकि उत्तरी सीमा क्षेत्र को इस योजना से बाहर रखा गया है क्योंकि वो पहले से ही वीवीपी 1 के तहत कवर किया जा चुका है।
0: दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। सो व्हाट एग्जैक्टली इज वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम ऑल अबाउट?
1: वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम दरअसल केंद्र प्रायोजित एक ऐसी योजना है जिसका मकसद चुनिंदा गांवों, खासतौर से दूर दराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित गांवों का समग्र विकास करना है।
0: सो द फोकस इज नॉट जस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑन ओवरऑल विलेज डेवलपमेंट।
1: बिल्कुल, इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन गांवों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और फिर कुछ ऐसे अवसर पैदा करना है ताकि लोग शहरों की तरफ पलायन करने की बजाय वहीं रहना जारी रखें।
0: Yes, and that's a very important goal. Many remote villages face challenges due to lack of facilities and employment opportunities, and that's why this program focuses on creating sustainable livelihoods.
1: दरअसल ये कार्यक्रम इन बातों को प्रोत्साहित करता है, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन, कौशल विकास और उद्यमिता तथा सहकारी समितियों का गठन।
0: एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज एंड इवन कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स।
1: दरअसल इसका मतलब है कि स्थानीय लोग अपनी पारंपरिक जानकारी और संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए बेहतर आजीविका कमा सकते हैं।
0: एब्सोल्युटली एंड अलोंगसाइड लाइवलीहुड्स द प्रोग्राम ऑल्सो फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर।
1: जी हाँ, इस योजना में शामिल हैं उन गांवों के लिए सड़क संपर्क जहां अब तक सड़क नहीं पहुंची हैं, आवास और ग्रामीण बुनियादी ढांचा, ऊर्जा सुविधाएं जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा भी शामिल है,
0: टेलीविजन कनेक्टिविटी एंड टेलीकॉम सर्विसेज।
1: बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया है। बेहतर कनेक्टिविटी दूर दराज के गांवों में जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है।
0: वेरी ट्रू, व्हेन विलेजेस हैव रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली इम्प्रूव एंड टूरिज्म प्रमोशन कैन ऑल्सो हेल्प प्रिजर्व लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशंस।
1: बिल्कुल, ये कार्यक्रम न सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है बल्कि इन गांवों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी उत्सव मनाता है। तो एक तरह से वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का मकसद गांवों को आत्मनिर्भर, आपस में जुड़ा हुआ और अवसरों से भरपूर बनाना है।
0: एंड टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्बिशियस वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2, अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग सेफ, सिक्योर एंड वाइब्रेंट लैंड बॉर्डर्स।
1: और खास बात यह है अभिषेक कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है जिसमें 100% फंडिंग केंद्र की ओर से है और वित्त वर्ष 2028-29 तक इसके लिए 6,839 करोड़ रुपए का भारी भरकम परिव्यय निर्धारित किया गया है।
0: दैट्स ह्यूज मुनीश, एंड बट लेट्स पुट द स्पॉटलाइट ऑन व्हाट एग्जैक्टली इज द पर्पस ऑफ वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2।
1: दरअसल ये विचार सरल फिर भी सशक्त है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय थल सीमाओं के नजदीक मौजूद गांवों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, सिवाय उन उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों के जो पहले से ही वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 1 के अंतर्गत आते हैं।
0: विलेजेस इन स्टेट्स एंड इंडियन टेरिटरीज लाइक अरुणाचल प्रदेश, असम, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,

0: बंगाल एंड मेनी मोर विल बेनिफिट।
1: वही तो, ये तो देश का लगभग पूरा सीमावर्ती इलाका है और इसका मकसद सिर्फ विकास नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा भी है। समृद्ध सीमावर्ती गांव सीमा पार होने वाले अपराधों को रोकने में मदद करते हैं और राष्ट्र की सुरक्षा में स्थानीय लोगों की भागीदारी को मजबूत बनाते हैं।
0: इन फैक्ट द प्रोग्राम इनकरेजेस विलेजेस टू बिकम द आईज एंड द इयर्स ऑफ बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस एंड दैट्स अ वेरी स्ट्रांग मैसेज ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन।
1: बिल्कुल, और श्रोताओं, VVP2 बुनियादी ढांचे और आजीविका दोनों पर केंद्रित है।
0: प्रिसाइसली मुनीश, एंड देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, द प्रोग्राम इज विलेज स्पेसिफिक एंड बॉर्डर स्पेसिफिक, मीनिंग एवरी विलेज विल हैव इट्स ओन विलेज एक्शन प्लान प्रिपेयर्ड कोलैबोरेटिवली अकॉर्डिंग टू लोकल नीड्स, एंड दैट्स स्मार्ट प्लानिंग। वन साइज फिट्स ऑल नेवर वर्क्स इन डाइवर्स रीजन्स, इजंट इट?
1: बिल्कुल सही। इसके अलावा हर मौसम में चालू रहने वाली सड़क कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी, साथ ही मौजूदा योजनाओं के साथ तालमेल बैठाकर दूर संचार, टेलीविजन कनेक्टिविटी और विद्युतीकरण का भी विस्तार किया जाएगा।
0: सो दीज विलेजेस ओन रिमेन आइसोलेटेड एनी मोर, इनफैक्ट द गवर्नमेंट ऑल्सो वॉन्ट्स टू मेक दीज विलेजेस कल्चरली वाइब्रेंट।
1: हाँ, ऐसा कैसे?
0: बाय ऑर्गेनाइजिंग फेयर्स, festivals, awareness camps, celebrations of national days, and even encouraging ministers and senior officials to visit and stay overnight in these villages.
1: Oh, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। इससे निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय संस्कृति और विरासत प्रदर्शित होगी।
0: एंड टेक्नोलॉजी विल प्ले अ मेजर रोल टू मुनीश, प्लेटफॉर्म्स लाइक पीएम गति शक्ति विल हेल्प इन प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट्स इफेक्टिवली।
1: तो कह सकते हैं अभिषेक कि कुल मिलाकर वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2 सिर्फ एक विकास कार्यक्रम नहीं है बल्कि ये सीमावर्ती गांवों को आत्मनिर्भर, आपस में जुड़ा हुआ, सुरक्षित और जीवंत बनाने का एक मिशन है।
0: वेल सेड मुनीश, टुगेदर वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 1 एंड वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2 आर हेल्पिंग शेप द विजन ऑफ विकसित भारत एट 2047।
1: एक मजबूत सीमा का अर्थ है एक मजबूत भारत, और सशक्त ग्रामीण का अर्थ है एक सशक्त राष्ट्र।
0: So, in conclusion, the Vibrant Villages Program 2 is a transformative initiative that will bring development, connectivity, security and prosperity to India's border villages, and by improving infrastructure, education, tourism, communication and livelihood opportunities, the scheme will help reduce migration from border areas and create self-reliant communities.
1: और इसके साथ ही ज्यादा मजबूत और जीवंत सीमावर्ती गांव, स्थानीय भागीदारी को बढ़ाकर और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नागरिकों की मौजूदगी को मजबूत करके राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इस कार्यक्रम के जरिए सरकार न सिर्फ गांवों का विकास कर रही है बल्कि विकसित भारत 2047 के तहत एक सुरक्षित, समावेशी और विकसित भारत के विजन को भी मजबूत कर रही है।

0: और दोस्तों, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि क्या कुछ है उनके पास विशेष.
1: And Union Minister for Youth Affairs and Sports Mansukh Mandavia today said that the first World Yog Asan Championship will be held in Ahmedabad marks an important step in positioning India's traditional wellness practice as a global sporting discipline. And addressing a press conference in New Delhi, the minister said Yog Asan reflects India's soft power and has emerged as a medium for promoting physical fitness, mental well-being and healthy living across the world. And Mr. Mandavia said that the growing international acceptance of yoga presents opportunities for wellness, employment and global outreach.
2: योग ये हमारे देश की संस्कृति भी है, हमारी जीवन शैली भी है. आज से सदियों पहले योग भारत से निकल के सारे दुनिया में गया है. फिर से योगासना की फर्स्ट वर्ल्ड

0: चैंपियनशिप करके उसको पुनः भारत में एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में आयोजित करेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा। भारत में कॉमनवेल्थ का जब आयोजन करा जाएगा तब उसमें स्वदेशी गेम्स या तो भारतीय स्पोर्ट्स के रूप में योगासना को भी स्थान दिया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि योगासना में भारत हमेशा अग्रसर रहा है और रहेंगे।
1: During the event, the minister also launched the official mascot jersey and championship film of the first World Yoga Asana Championship 2026. The launches highlighted the government's efforts to promote yoga asana as a global sporting discipline and strengthen awareness about the upcoming international event. Well, moving on, Lakshita Thilagaraj, a 22-year-old computer science and engineering student, has been crowned Miss Grand India 2026, bringing immense pride to her home state of Tamil Nadu. The grand finale of the prestigious national pageant was held in New Delhi, where she emerged victorious among 26 finalists from across the country. And we have a report from a correspondent.
2: The newly crowned Queen's journey reflects a perfect balance of academics and passion as she seamlessly managed her engineering studies alongside her preparation for the pageant. Lakshita impressed the judging panel with her strong stage presence, grace and articulate voice, consistently using her opportunities to speak about meaningful social issues. Her victory is a significant milestone for Tamil Nadu, highlighting the state's talent on a national platform. She has expressed a strong desire to use this title to inspire young women to be independent, confident and fearless in chasing their ambitions. Lakshita will now prepare to represent India at the upcoming Miss Grand International 2026 pageant scheduled to be held this October. Adding to the excitement and national pride, this will be a historic occasion as India is set to host the Miss Grand International pageant for the very first time.
3: Joy Parikrama from Chennai.
4: दोस्तों, गोवा विश्वविद्यालय तालगांव में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद गोवा 2026 में देश भर के युवा नेताओं ने भाग लिया। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, नीतिगत चर्चाओं और विकसित भारत के दृष्टिकोण पर विचार विमर्श किया। दो दिवसीय सम्मेलन 23 और 24 मई 2026 को आयोजित किया गया। लीजिए पेश है एक विशेष रिपोर्ट।
5: गोवा विश्वविद्यालय के तालगांव परिसर में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद गोवा 2026 में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दो दिवसीय सम्मेलन में लोकतांत्रिक विमर्श, नीतिगत चर्चाएं और विकसित भारत के विजन पर वाद विवाद आयोजित किए गए। इस अवसर पर केरल और तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र आरलेकर ने अपने संबोधन में विचार व्यक्त किए।
6: यह हमारे भारत की संकल्पना है, भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत पूरी दुनिया में एक अच्छी ताकत बनकर उभरेगा। यह सब हम कर पाते हैं जब युवा आप जैसे हैं जो इसमें आते हैं।
5: सम्मेलन के दौरान युवाओं को नेतृत्व क्षमता, नीति निर्माण और लोकतांत्रिक मूल्यों की जानकारी देने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में देश भर से आए प्रतिभागियों ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए और विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर चर्चा की। परिक्रमा के लिए निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: History was written in the 18th West Bengal Legislative Assembly as Sir Kolita Majhi officially took her oath as a new elected MLA. We have more from a correspondent.
7: History was written in the 18th West Bengal Legislative Assembly as Kolita Majhi officially took her oath as a newly elected MLA. Just days ago, Majhi was working as a domestic helper earning a meager 2,500 rupees a month. Today, she walks into the State Assembly as a lawmaker, completing a remarkable journey from grassroots struggle to political triumph. Contesting on a BJP ticket from the Ausgram Assembly constituency in Purba Bardhaman district, Majhi defeated her nearest Trinamool Congress rival by over 12,000 votes. Despite a previous setback in the 2021 elections, she stayed on the ground, working door to door and cementing her bond with the local working class community. After she took oath, an emotional Kolita Majhi promised to remain the voice of the poor and the marginalized, proving that true determination can shatter even the highest barriers. Sushmita Mondol, Akashvani News, Kolkata.
1: And we have a fact-check news for our listeners. The government has debunked an email circulating online falsely claiming to be issued by the Reserve Bank of India, RBI,

0: self-respecting Indian revolutionaries was strained.
1: He fell a victim to the wrath of the Nazis, as it is believed that he was slowly poisoned by them. Pillai died on May the 26th, 1934. His wife, Lakshmi Bai, underwent indescribable sufferings as the Nazis made her life miserable. But she preserved Pillai's ashes, his diary and secret documents. As per Pillai's last wish, Lakshmi Bai brought back his ashes to India, where they were ceremonially immersed in Kanyakumari with full state honours.
0: We also remember independence activist Muhammad Yusuf Naqshbandi, who was martyred on the 26th of May 1946. Born in 1923 in Srinagar, Jammu and Kashmir, Naqshbandi was a committed political worker. He actively joined the political movement for responsible government in Jammu and Kashmir in 1946. Naqshbandi was killed at the Khankai Maula in Srinagar on the 26th of May 1946 in the state Army's firing on a procession he joined to protest against the Maharaja's tyrannical rule.
2: Yes, and we're also remembering Sidney Pollack, who passed on this day in 2008. He was an acclaimed Academy Award-winning American film director, producer and actor, known for eliciting powerful performances from his casts. He directed over 20 films, including classics like Tootsie, 1982, The Way We Were, 1973, and Out of Africa in 1985, which won him the Best Director.
3: और दोस्तों, आज पुण्यतिथि है आशा लता विश्वास की, जिनका असल नाम था दरअसल मेहरुन निसा. जन्म हुआ था जिनका 17 अक्टूबर 1917 को भुज में, और वो एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री, नेत्री और निर्माता तो थी ही, जो मुख्य रूप से 1930 के दशक से लेकर 60 के दशक के मध्य तक हिंदी सिनेमा में सक्रिय रही. लक्स की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय अभिनेत्रियों में वो शुमार रही. उनकी खास फिल्मों को याद करें तो बरबस यादव आती है, आजादी, देशभक्त, चार आंखें और श्रीमान फंटूश. आज ही पुण्यतिथि है कंवर पाल सिंह गिल की, केपीएस गिल के नाम से मशहूर पंजाब के दो बार पुलिस महानिदेशक. उन्हें पंजाब के आतंकवाद और उग्रवादी विद्रोह को नियंत्रित करने का श्रेय दिया जाता है. केपीएस गिल को आतंकवाद की कमर तोड़ने वाला सुपर कॉप कहा जाता है. भारतीय पुलिस सेवा से साल 1995 में सेवानिवृत्त हुए और फिर गिल इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और इंडियन हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष रहे. भारतीय प्रशासनिक सेवा में उनके बेहतरीन काम को ध्यान में रखते हुए 1989 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था.
2: Yes, and like we were mentioning in the beginning of a program, John Wayne was born on this day in 1907. John Wayne was an iconic American actor and filmmaker known by his nickname Duke. He epitomized rugged masculinity and became the enduring symbol of the classic Western hero, an American patriot. Born Marion Robert Morrison in Iowa, Wayne rose to stardom during Hollywood's golden age. He starred in over 170 films, leaving a massive cultural footprint through a career that spanned more than 50 years.
3: और आज ही है जयंती अभिनेत्री मनोरमा की. दक्षिण भारतीय सिनेमा की सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेत्री और गायिका, जिन्होंने बहुत सी यादगार हिंदी फिल्मों में भी काम किया. उन्होंने फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का खूब प्यार बटोरा और थांगावेलू, थेंगाई, श्रीनिवासन, छो और नागेश सरीखे दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया. 1000 फिल्में पूरी होने के साथ ही उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था. वर्ष 2002 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था. आइए सुनते हैं उन्हीं की एक यादगार फिल्म सीता और गीता से उनका ये यादगार संवाद.
4: मम्मी, क्या हो गया मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? क्या कर डाला उस चुड़ैल ने, बोल तो सही, बता बच्चे.
5: उसने मुझे मारा
4: है, मैं उसके हाथ तोड़ देती हूँ.
5: उसने मुझे लात मारी.
4: क्या लात मारी? चल मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी. आ मेरे बच्चे. क्यों रही चुड़ैल, तेरी ये वजह है कि मेरी फूल से बच्ची को हाथ लगाए?
6: अरे ओह, काय को इतना भंकस करती है?
4: भंकस की बच्ची, बहुत बाहर की हवा लग गई है तुझे, दिमाग खराब हो गया कल मूवी का. जरा उठ तो सही, उठ मैं बताती हूँ तुझे, चल बाहर.
2: Yes, and Miles Davis was born on this day in 1926. He was an American jazz trumpeter, band leader, and composer who stands as one of the most influential

0: और दोस्तों आज जन्मदिन की शुभकामनाएं हैं दिलीप जोशी और उनके चाहने वालों के लिए। एक भारतीय अभिनेता हैं जो कई अपनी फिल्मों में यादगार काम के अलावा जाने जाते हैं, खास तौर पर टीवी धारावाहिक के लिए जो था तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
1: प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है।
2: तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
3: तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट,
4: रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं,
3: आज बोड़ी इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं।
0: और दोस्तों वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
6: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
7: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
6: As we intend to do.
5: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
6: As democratic nations,
7: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
6: Will become even more important to the world.
5: क्वाड देशों ने आज नई दिल्ली में अपने विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान गठबंधन के एजेंडे के प्रगति की समीक्षा की और हिंद प्रशांत से जुड़े क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा की। बैठक समाप्त होने के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चर्चा क्वाड सहयोग के चार मुख्य स्तंभों पर केंद्रित रही, जिनमें समुद्री और सीमा पार सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, सुरक्षा, महत्वपूर्ण तथा उभरती प्रौद्योगिकियां, मानवीय सहायता और आपदा राहत शामिल है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आतंकवाद रोधी प्रयास क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों तथा अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की भूमिका की सराहना करते हुए कहा है कि बल ने न केवल सीमा की दृढ़ता से रक्षा की बल्कि सीमावर्ती जिलों के लोगों का मनोबल भी बढ़ाया है। उन्होंने सीमा को पूरी तरह से अभेद्य बनाने के लिए बीएसएफ, सेना, प्रशासन और नागरिकों को मिलकर एक चार स्तरीय ग्रिड बनाने पर जोर दिया। श्री शाह ने आज राजस्थान के बीकानेर के पास सांचू चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि

आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया। स्वागत करती हूं मैं अपराजिता आप सबका एक बार फिर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां ये समय है गाते गुनगुनाते का। और गाते गुनगुनाते में हम आपके लिए बहुत सारे सवाल, प्रश्न, क्वेश्चन लेकर आते हैं, पहेली लेकर आते हैं, जिनके जवाब आप हमें ईमेल पर लिखकर भेजते हैं। और फिर ये सफर गाते गुनगुनाते कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। शुरुआत करती हूं मैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, जो है फिल्म परदेश से। कुमार सानू की आवाज में ये गीत आप तक पहुंच रहा है। इसके बाद सवाल आप तक पहुंचेंगे।

आज का पहला सवाल जुड़ा है 90s की एक सुपरहिट फिल्म से जिसे डायरेक्ट किया फारूक सिद्दीकी ने। संगीत इस फिल्म में रहा अनु मलिक साहब का। दर्शकों ने इस फिल्म को खूब पसंद किया। गाने भी सभी एक से बढ़कर एक थे। अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो फिल्म की हीरोइन को अपने बेहतरीन एक्टिंग के लिए मिला बेस्ट फीमेल डेब्यू का

अवार्ड। तो इससे आपको एक और हिंट तो ये भी मिल गया है कि ये जो फिल्म है ये हीरोइन की डेब्यू फिल्म है, और यहां मैं अवार्ड की बात कर रही हूं यानी कि फिल्म फेयर अवार्ड। फिल्म फेयर अवार्ड मिला हीरोइन को बेस्ट फीमेल डेब्यू का। अगर आप पहचान चुके हैं ये फिल्म कौन सी है तो आपको अपने आंसर लिखकर भेजने हैं, यानी कि फिल्म का नाम लिखकर भेजना है filmgoldairdelhi@gmail.com पर, और सब्जेक्ट में अगर आप फिल्म का नाम लिखेंगे तो आपका जो जवाब है वो हमें बिल्कुल स्क्रीन पर ईमेल जब हम अपनी ओपन करते हैं तो सामने ही दिख जाएगा, उसे अलग से जाकर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होता है, टाइम सेव होता है हमारा, ज्यादा से ज्यादा हम आपको गाने सुनवा पाते हैं, जानकारी आपके साथ बांट पाते हैं। इसीलिए ये मैं आपके साथ एक नुस्खा कह सकते हैं आप शेयर करती हूं यहां पर। फिलहाल आप बैकग्राउंड में सुन पा रहे हैं इम्तिहान फिल्म से सनी देओल, सैफ अली खान और रवीना टंडन की फिल्म से एक गाना कुमार सानू की ही आवाज में। 1994 में ये फिल्म आई और खूबसूरत ये सॉन्ग है आप तक पहुंच रहा है। इसे सुनिए, इंजॉय कीजिए और तब तक लिख भेजिए अपने जवाब हमारे ईमेल आईडी पर, जवाब उस सवाल का जो मैंने आपसे पूछा है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

सवाल मैंने आपसे पूछा और आपके जवाब भी मुझे मिल गए हैं। सही जवाबों को मैं शामिल करती हूं हर बार की तरह। तो पहला सही आंसर हमारे पास पहुंचा है। गिरीश बम ने हमें पहला सही आंसर लिखकर भेजा और आपके साथ हैं वैशाली बम भी और अजिंक्य बम का भी मैसेज आया है वडोदरा से। दूसरा सही जवाब है इदरिस सैफी का और तीसरे नंबर पर आते हैं नवीन भाटिया साहब मोतीनगर से। तो आपने सही पहचाना है कि फिल्म का नाम है विजय पथ। और किस किसने बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है ये मैं बता देती हूं। सुदर्शन, अनीता, सिमरन मुखी, शांतिनगर, सोनीपत से बिल्कुल सही पहचानते हैं। इसके बाद जवाब जो सही लिखे हैं उनमें नाम आता है डीबी राणा साहब का नेहरू विहार से और मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान ने भी बिल्कुल सही पहचाना है। और कस्बा गुन्नौर उत्तर प्रदेश से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फाहिरा, ताहिरा आपने बिल्कुल सही पहचाना। और इसके बाद मुझे लगता है बस इतने ही सही जवाब हम तक पहुंचे हैं पहले सवाल के। तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी और भी आपके लिए प्रश्न है, पहेली है। तो अजय देवगन, तब्बू, डैनी, सुरेश ओबेरॉय, गुलशन ग्रोवर, इन सब ने इस फिल्म में एक्टिंग की और खूबसूरत इस फिल्म के गीत रहे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अन्नू मलिक ने इस फिल्म में गाने दिए। अब मैं इससे पहले कि आपको विजय पथ से एक गाना सुनाऊं, मैं आपसे अपना जो अगला सवाल है, पहेली है, रिडल है, वो पूछ लेती हूं। 90s में ही एक और फिल्म आई जिसका टाइटल भी एक ही शब्द का है। ये एक रोमांटिक एक्शन फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसमें दो हीरो और दो हीरोइंस हैं, जिनमें से एक हीरोइन विजय पथ में भी रही, यानी कि मैं बात कर रही हूं तब्बू की। तो तब्बू इस फिल्म में भी हैं और एक और हीरोइन है। वैसे ही एक मल्टी स्टारर फिल्म रही जिसमें दिलीप ताहिल, आलोक नाथ, जॉनी लीवर, मोनीष बहल, इन सब ने भी एक्टिंग की और हीरो हीरोइन का मैं आपको बता चुकी हूं, दो हीरो दो हीरोइन है। फिल्म की कहानी अलग अलग मोड़ लेती है। फिल्म में जो गाने हैं वो नदीम श्रवण के रहे और मुझे लगता है मैंने बहुत सारे हिंट्स आपको दे दिए। अगर आप पहचान चुके हैं फिल्म का नाम तो आपको फिल्म का नाम लिखकर भेजना है fmgoldaiadelhi@gmail.com पर। और जैसा मैं हर बार कहती हूं कि आंसर आप कहां लिखें, सब्जेक्ट जो होती है मेल की, वहां आप अपने फिल्म का नाम लिखकर टाइप करके भेज दे जल्दी से fmgoldaiadelhi@gmail.com पर। मैं आपको विजय पथ से ये सुनवा रही हूं गाना।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: ताल फिल्म से आपको ये बहुत ही खूबसूरत गाना सुनवा रही हूँ। इसके बाद जानेंगे किसने सही आंसर लिखकर हमें भेजे हैं, तो थोड़ा इंतजार और ये इंतजार और भी अच्छा हो जाता है जब इतने प्यारे प्यारे गाने आप FM गोल्ड पर सुनते हैं।

तो भाई बारी आ गई है आपके आंसर जानने की कि किसने सबसे पहले फिल्म का नाम पहचाना है। तो पहला सही जवाब जो पहुंचता है उसे लिखने वाले हैं नवीन भाटिया मोतीनगर से। दूसरे नंबर पर सही जवाब लिखकर भेजा है, क्या बात है, इतने सारे गलत जवाब बीच में आए। किसी ने लिखा हम साथ साथ हैं, प्रेम, इश्क,

0: साजन चले ससुराल, लेकिन नहीं, ये नहीं है फिल्म का नाम। उसके बाद दूसरा सही जवाब लिखा है प्रकाश गोगिया साहब ने दिल्ली से, और उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं जगदीश बजाज विकासपुरी से। तो तीनों सही जवाब लिखने वाले लोग जो हैं वो दिल्ली से हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने सही पहचाना है। फिल्म का नाम है जीत। जी हाँ, जीत है वो फिल्म। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, रजाना, आपने भी बिल्कुल सही सही पहचाना है। और इसके बाद सुदर्शन, अनीता, सिमरन मुखी ने जो जवाब लिखा वो सही नहीं है। हालांकि मैंने आपका नाम पहले ही पढ़ना शुरू कर दिया कि सही लिखा होगा, नहीं है सही। इसके बाद पंकज कुमार ने बिल्कुल सही लिखा, फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फाहिरा, ताहिरा ने सही पहचाना, अनिल सरोड़े हैं, आपने बिल्कुल सही लिखकर भेजा जवाब। जीत है वो फिल्म 1996 में आई और इसे डायरेक्ट किया राज कंवर ने और प्रोड्यूस इन्होंने किया। अगर हम निर्माता की बात करें तो साजिद नादियादवाला ने इसको जो है वो इसके निर्माता रहे, और एक्टिंग सनी देओल, सलमान खान, करिश्मा कपूर, तब्बू, अमरीश पुरी, ये सब लोग इस फिल्म में रहे। सनी देओल करण के किरदार में नजर आए, सलमान खान राजीव या राजू भी इसमें कहलाए, और करिश्मा कपूर काजल के किरदार में, तब्बू वहीं तुलसीबाई का रोल प्ले करती हुई नजर आई। बहुत ही खूबसूरत इस फिल्म के गाने रहे, आपको गाना हम जरूर सुनवाएंगे यहां पर। और फिलहाल मैं आपको ये भी बता दूं कि सभी गाने एक से बढ़कर एक हैं। यारा ओ यारा, मिलना हमारा, ये तो आपने देखा ही होगा गाना, सुना भी होगा। और अगर बात होती है सनी देओल की तो उनका एक हुक स्टेप है इस गाने में जो काफी पॉपुलर हुआ था। उनके डांस की जब बात की जाती है, जिक्र होता है उनकी डांसिंग स्टाइल का, तो ये गाना उनमें से एक आता है सामने निकलकर, जिसका जिक्र जरूर किया जाता है। अभी सांस लेने की फुर्सत, ये गाना सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में, एक और बेहतरीन गाना तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। और ऐसी बहुत खूबसूरत गीत इस फिल्म में रहे, इनमें से एक मैं आपको जरूर सुनवाऊंगी, लेकिन थोड़े से ब्रेक के बाद।
1: नमस्कार, मैं प्राची सिंह, बटरफ्लाई गर्ल ऑफ इंडिया, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर बधाई देती हूँ। मेरी एक बहुत ही खास मेमोरी है आकाशवाणी के साथ। जब मैं कॉलेज जाती थी पापा के साथ गाड़ी में, हमेशा आकाशवाणी पे न्यूज बुलेटिन सुनते हुए जाती थी, और मैं बहुत ही ध्यान से सुनती थी क्योंकि मुझे मालूम था न्यूज बुलेटिन खत्म होते ही पापा मुस्कुराते हुए बोलेंगे, अच्छा समराइज करके बताओ। ये जो वहीं से आदत मेरी शुरू हुई थी न्यूज को पढ़ के हर दिन अपडेटेड रहने की, और ये जर्नी मेरी अभी तक चली आ रही है। मैं एक बार फिर से आकाशवाणी को 90 इयर्स कंप्लीट होने पे बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ। आप एक आवाज ही नहीं, एक पहचान है।

देखिए गाते गुनगुनाते कैसे ये सफर अपने अंजाम तक पहुंच गया है और मैं आपको सुनवा रही हूं, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जीत फिल्म से ये गाना। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।

0: होगा। इसी के साथ अब राजिता को दीजिए यही विदा। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल तथा समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों के बारे में दृश्यों के साथ जानकारी को लेकर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका क्वाड साझेदारी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मूज जलडमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग ने कहा कि क्वाड ने क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अब तक की सबसे मजबूत प्रतिबद्धता की घोषणा की है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की भी शुरूआत की। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

फिल्म सिलसिला का ये गीत आपने लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की आवाजों में सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में इस चैनल पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार और उसके बाद मार्केट मंत्रा।

0: Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Subodh Mish.
1: धन्यवाद लालिमा और नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर नजर डालेंगे और चर्चा भी करेंगे। आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन। पुनीत, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद सुबोध जी।
1: पहले हेडलाइंस के साथ लालिमा।
0: Thank you, Subodh. Yes, friends, let's begin with the headlines. Benchmark domestic indices end with losses. Sensex drops nearly 500 points. Nifty settles below 24,000. Most Asian stock markets end on negative note. And Quad launches maritime and energy security initiatives. Also finalize Quad critical minerals framework.
1: देश के शेयर सूचकांकों में गिरावट। सेंसेक्स लगभग 500 अंक लुढ़का, निफ्टी 24,000 के नीचे पहुंचा। अधिकांश एशियाई शेयर बाजारों में भी गिरावट का रुख। और क्वाड ने समुद्री तथा ऊर्जा सुरक्षा पहलों की शुरुआत की। क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क तैयार।
0: Before we move any further, here's a disclaimer for you all, our friends. Well, the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: चले आज खबरों की शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से लालिमा।
0: यस बोथ।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 479 अंक गिरकर 76,010 पर बंद हुआ। निफ्टी 118 अंक गिरकर 23,914 पर आ गया। लेकिन एनएससी के मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों में थोड़ी बढ़त देखी गई। मिड कैप 100 आधा प्रतिशत ऊपर और स्मॉल कैप 100 0.3% बढ़कर बंद हुआ। आज कारोबार की शुरुआत मामूली गिरावट के साथ हुई थी। पश्चिम एशिया में फिर से बढ़ रहे तनाव से थोड़ी घबराहट देखी गई। बाद में कारोबार में थोड़ी देर तक गिरावट के रुझान पर रोक भी लगी, लेकिन फिर दोपहर में बिकवाली का जोर बढ़ा और सूचकांक लुढ़क गए। निफ्टी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मासिक एक्सपायरी से भी बाजार में कमजोरी रही।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड अराउंड 0.5% लोअर टुडे। द सेंसेक्स फेल 479 पॉइंट्स टू क्लोज एट 76,010, व्हाइल निफ्टी ड्रॉप्ड 118 पॉइंट्स टू सेटल एट 23,914। हाउएवर, द ब्रॉडर मार्केट एट द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज डिस्प्लेड रेजिलियंस। द मिड कैप 100 इंडेक्स एडवांस्ड ओवर 0.5%, व्हाइल स्मॉल कैप 100 इंडेक्स रोज मोर देन 0.3%। Earlier today, markets opened marginally lower amid renewed geopolitical tensions in West Asia. Although the indices briefly paired losses in early trade, the recovery was short-lived as markets slipped back into negative territory during the afternoon session. Selling pressure intensified in the final hour with the monthly expiry of Nifty futures and options adding to the volatility.
1: जी, और देखे आज सेंसेक्स में शामिल कंपनियों का क्या हाल रहा है। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 22 कंपनियों के शेयरों में नुकसान रहा। सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें। भारतीय एयरटेल के शेयर 1.5%, ट्रेंट के 1.4% और टीसीएस के 1.3% से ज्यादा नीचे आ गए। इसके उलट टेक महिंद्रा में लगभग 1.7%, इटर्नल में 1% और मारुति में लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त देखी गई।
0: इन द सेक्टरल इंडिसेस एट द बीएसई, 13 आउट ऑफ 25 सेक्टर्स एंडेड इन नेगेटिव टेरिटरी।

0: In the top losers, consumer durables plunged almost 0.9%, top 10 banks shed 0.6%, and financial services, hospitals, as well as realty fell over 0.5%. Conversely, utilities rose over 1.1%, metal gained 1%, and power added almost 0.9%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,153 companies advanced, 2,050 declined, and 182 remained unchanged.
1: जी, और रुपए का हाल यह है कि अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए आज एक डॉलर के मुकाबले 45 पैसे गिरकर 95.68 रुपए पर बंद हुआ. छह अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर की मजबूती दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 99.03 पर कारोबार कर रहा था. तो आज हमने शेयर बाजार का हाल सुन लिया कि कैसा रहा है, और जो कल उम्मीद बनी थी लोगों को कि अब शायद अब धीरे धीरे करके अब बेहतर दिन आने वाले हैं, लेकिन अगले ही दिन फिर ये सुख भरे दिन बीते भैया.
0: स्नेक्स एंड लैडर्स गेम चल रही है ग्लोबली, आई थिंक.
2: सुबोधी, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि बाजार जो है वो अभी काफी अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रहा है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, और निवेशक जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, वो कंफ्यूज हैं कि क्या यहां से आगे की स्थिति रहेगी. देखिए, जो मैक्रो इकोनॉमिक या जियो पोलिटिकल, जिसे आप कहते हैं ब्रॉडर फैक्टर्स, हैं वो बड़े चिंता के विषय हैं. यदि हम देखें रुपए की गिरावट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, जो 10-year बॉन्ड यील्ड्स हैं उसके इंटरेस्ट रेट देख रहे हैं हम लोग, ये सब काफी चिंता बनी हुई है इनको लेकर कि क्या मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी और कैसे रहेगी. लेकिन हैरानी की बात यह है, और अगर आप अपनी आज हम रिपोर्ट को देखें तो ये भी बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है. हेडलाइन इंडिसेस अगर देखें तो उसमें काफी गिरावट थी. निफ्टी, सेंसेक्स में गिरावट थी. 30 में से 22 सेंसेक्स की कंपनियों में गिरावट थी. लेकिन ब्रॉडर मार्केट जब बात करें तो वहां पर जो एडवांसिंग शेयर्स थे, जिन शेयर में बढ़त आई, वो ज्यादा थे, और गिरने वाले शेयर्स की ओवरऑल मार्केट में देखें तो कमी थी. यानी जो हेडलाइन स्टॉक्स हैं या बड़े बड़े बड़ी मार्केट कैप के स्टॉक्स हैं, जिसे हम वैसे नॉर्मली लार्ज कैप और सेफर स्टॉक्स मानते हैं, वहां हम गिरावट ज्यादा देखते हैं या वॉलेटिलिटी हो रही है. मिड कैप और स्मॉल कैप्स, जहां पर छोटा निवेशक ज्यादा या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ज्यादा निवेश करते हैं, वहां हम ज्यादा स्टेबिलिटी देख रहे हैं. कल भी हमने वहां बढ़त देखी थी, आज भी हमने देखा है कि नॉर्मली थोड़ी मामूली वहां पर बढ़त है. कुल मिलाकर अगर अंतर्राष्ट्रीय उसमें देखें तो FIIs, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनकी बहुत बड़ी सेलिंग बाजार में चल रही है, और उनका ज्यादातर निवेश जो है वो बड़ी कंपनियों में है, और इसी वजह से आप देखते हैं कि इंडेक्स में फॉल आता है. जरा भी जियोपॉलिटिकल कुछ नेगेटिव आता है न्यूज, जैसे थोड़ा सा आज चिंता थी कि शायद खाड़ी का जो लड़ाई है थोड़ी बड़े, वहां पर फिर FIIs की सेलिंग आई, हमने देखा रुपया फिर गिरा, दो दिन से रुपया बढ़ रहा था. तो बाजार करीब करीब दो हिस्सों में बढ़ गया है. लार्ज कैप्स, जहां पर इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा रोल है, फॉरेन इन्वेस्टर्स पर्टिकुलरली उनका रोल है, वो एक अलग दिशा पे चल रहा है वो. और एक स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक, जहां पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का ज्यादा होल्डिंग है, उनका रुझान ज्यादा है, वो अलग. तो हमें इस प्रकार से इस बाजार को थोड़ा सा
1: और इंडेक्स में, चूंकि उनका वेटेज ज्यादा है तो आप देखते हैं इंडेक्स पर असर,
2: इंडेक्स पर ज्यादा असर दिखाई देता है, क्योंकि जो बड़ी इंस्टीट्यूशन फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके पास निवेश ही बड़ी कंपनियों का है, तो वहां वो सेलिंग करते हैं. आपको मालूम होगा पिछले करीब एक वर्ष में 3 लाख करोड़ रुपए का नेट सेलिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा भारतीय बाजारों में की.
1: जी बिल्कुल,
2: मतलब डेफिनेटली बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, और अनवांटेड रिकॉर्ड है, अनडिजायरेबल रिकॉर्ड है, बट अनफॉर्चुनेटली
1: पैसा निकल रहा है, और हाँ. पैसा कहाँ जा रहा है इस पर हम आगे बात करेंगे. मुझे लगता है सेक्टर्स के बारे में शायद
0: जस्ट वांटेड टू आस्क यू पुनीत जी, दैट व्हेन वी टॉक ऑफ, व्हेन वी सी द जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, दे सीम टू बी ओवरराइडिंग द डोमेस्टिक फैक्टर्स, एंड द स्ट्रेट ऑफ होमर्स हैज सडनली बिकम अ स्टिकी पॉइंट. आई जस्ट मेंशन इट सीम्स लाइक द होल ग्लोबल मार्केट सीम टू बी हैविंग सम काइंड ऑफ अ स्नेक एंड लैडर यू नो इफेक्ट, टू स्टेप्स फॉरवर्ड वन बैकवर्ड. सो हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस, एंड विच वे आर वी गोइंग, एंड देन वी कम टू the sectors.
2: So, Lalima, what has happened is that somehow the entire attention is now focused on state of Hormuz and energy costs.
0: Yes.
2: Because it is feeding into the larger inflation picture. If you look at what is happening in US, not only in India, I mean, India, of course, we have these pressures building up because of energy price transmission, whether it is petrol, diesel, LPG, and then the impact, secondary order effect that it has. If you look at other countries, if you look at our neighboring countries, if you look at Europe, you look at America, everywhere inflation has really shot up.
0: Yes.
2: And we

0: we have been managing it pretty well, okay, but it's getting out of comfort zone now. One of the estimate is that in the next month, our CPI inflation in India might shoot up to about 5%, no? Which is outside, slightly, you know, on the upper edge of the comfort zone that RBI has.
1: Mm-hmm.
0: So these macro numbers are not comfortable, whether we look at current account deficit, we look at rupee. Right now, the pressure is enormous. And it's not something which that India has done. It is something which is internationally. So geopolitics, of course, is the dominant factor which is affecting sentiment right now.
1: Mm-hmm. And when we look at the sectors, if somebody were to invest now, because we have seen the Sensex going beyond 84 as well, for some people who want to invest now, is this the right time? If yes, what sectors would you advise?
0: So Lalima, I would say the market, personally, I think I'm surprised by the resilience that Indian market has seen. So a lot of people say that, okay, Indian markets have underperformed vis-a-vis other markets. We've seen a lot of other international markets shoot up in the last 1 year.
1: Uh-huh.
0: But and India has marginally kind of fallen and it's down. But the truth is that I think India has done very well given the diversity of companies that we have, the economy we have, and the vast population we have. So if you look at the sectors which have done well in the past 1 year, we have seen defense doing very well.
1: Yes.
0: Defense sector, utilities have done well. So power sector, because there's no expectation that there will be a lot of power demand in India because of data centers, GCCs that are opening. So I think a lot of and particularly metals, because again it is all linked to inflation expectations of prices going up. So we have seen metals, utilities, power, defense, these sectors have been doing well. My guess is that they will continue to do well in future. Another sector which is kind of right now under pressure, but I think long term we will see it doing well, is financial sector. I think banks, NBFCs should also do well.
2: जी लालिमा, आसपास के और शेयर बाजारों पर भी नजर डाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद चर्चा हमारी जारी रहेगी आगे. अधिकांश एशियाई शेयर सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए. सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.8% नीचे आ गया. जापान के निक्केई और चीन के शंघाई कंपोजिट दोनों में लगभग 0.2% गिरावट रही. हांगकांग के बाजार में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखा. इसके उलट साउथ कोरिया का कोस्पी आज 2.5% से ज्यादा उछलकर 8048 पर बंद हुआ. यूरोप के प्रमुख सूचकांकों में अभी तक मिलाजुला रुख कायम है. फ्रांस का कैक 0.8% और जर्मनी का डैक्स 0.7% नीचे चल रहा था, जबकि लंदन का फुटसी 0.5% से ज्यादा की बढ़त पर कारोबार कर रहा था. और यूएस मार्केट के बारे में आप बताएंगे?
1: वेल, यूएस स्टॉक मार्केट्स रिमेन क्लोज्ड सुबोथ यस्टरडे फॉर द मेमोरियल डे हॉलिडे, सो नथिंग मच ऑन दैट.
2: जी, तो पुनीत, अभी जो हम देख रहे हैं एशियाई बाजारों का हाल, और मैं अभी पिछले एक साल के डेटा देख रहा था कि कैसा रहा है परफॉर्मेंस हमारे बाजार का और बाकी बाजारों का, क्योंकि इसके साथ साथ अभी जो अभी हमारे पास एनर्जी क्राइसिस या ऑयल की बात कर रहे हैं हम, और इसको लेकर अलग जो इकोनॉमी पे और खासकर जो साउथ एशियन देश हैं, लगभग हमारी इकोनॉमी लगभग एक जैसी चल रही थी. अभी श्रीलंका में सेंट्रल बैंक ने 100 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है रेट, एक ये भी खबर है आज अगर हम अर्थव्यवस्था की हालत देखें. हमारे यहाँ अब आने वाले दिनों में बैठकें होने वाली हैं, कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं, आशंकाएं संभावनाएं बनी हुई हैं. लेकिन इसके अलावा जो हम पूरे एशियन मार्केट पर अगर हम बाकी जो है मार्केट गौर करें, क्योंकि एफआईआई का जो खेल आप अभी बता रहे थे कि असर जो पड़ रहा है हमारे सारे सूचकांकों पर, तो क्या हमारे यहां से जो पैसा निकल रहा है आईटी सेक्टर से खास तौर पर जो पैसा निकला है, क्योंकि अब एआई की दुनिया शुरू हो गई है, तो उसका असर दिखाई दे रहा है इन सब, ये अभी ईरान और रशिया और इन सब के अलावा वो एक फैक्टर अलग काम कर रहा है कि वो हमें जो यहां के पैसे हैं वो क्या साउथ कोरिया जा रहे हैं, क्योंकि जो बढ़त हम देख रहे हैं, आपने सिंगापुर की हालत देखें, अगर हम साउथ कोरिया की हालत देखें, हर मार्केट ने जबरदस्त परफॉर्म किया है एक साल के अंदर, और भारत का बाजार एक साल में 6% गिर गया है.
0: बिल्कुल सुबोध जी, आपने सही पहचाना ये कि भारत में एक तो इकोनॉमिक जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है वो अलग बात है. जो एआई ट्रेड आया और एआई ट्रेड में एशिया में खास तौर से हमने देखा कि जापान में, कोरिया में और ताइवान, ये तीन बड़े मार्केट्स हैं जहां पर कि टेक्नोलॉजी कंपनीज का

0: काफी कंपनीज हैं, एडवांस कंपनीज हैं, वहां बहुत बड़े पैमाने पे पैसा वहां पर इन्वेस्ट हुआ। और भारत में भी प्रेशर था क्योंकि रुपए पे प्रेशर था, मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर था, तो शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि एफआईएस ने पैसा, पिछले एक वर्ष में हमने बात की करीब 3 लाख करोड़ की सेलिंग करी है भारत में, वो पैसा सारा एशियाई बाजारों में कोरिया, जापान और ताइवान के बाजार में गया। अब वहां हम देख रहे हैं, आपने आंकड़े पहले भी डिस्कस कर रहे थे आप और हम, वहां करीब करीब 100 से 200% तक बढ़त आई है पिछले एक वर्ष में, दुगना तिगना बाजार हो गया एक वर्ष में। तो वो एआई ट्रेड से जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जहां पर चिप्स जहां पर मैन्युफैक्चरिंग है साउथ कोरिया में या ताइवान में, जहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग है, वहां पर हमने बहुत बड़ा निवेश देखा। उसका डेफिनेटली असर हम पर पड़ा है, नेगेटिव असर पड़ा है बाजारों पे हमारे। मुझे उम्मीद है कि अब क्योंकि वो एक ऑलमोस्ट रिकॉर्ड लेवल पे बहुत बबल एक बना हुआ है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, पर्टिकुलरली एशिया में, ऐसा हमारा मानना है, तो हो सकता है आने वाले समय में हम देखें कि कुछ पैसा वहां से निकलकर वापस भारतीय बाजार, जो कि फिर अभी भी अच्छे वैल्यूएशन पे है, ग्रोथ अच्छी है, आ सकता है पैसा।
1: यू जस्ट मेंशन द वीक रूपी पुनीत जी, मार्केट्स हैव ऑफन सेंस्ड एन इम्प्लिसिट डिस्कम्फर्ट विद शार्प रूपी वीकनेस एंड वीक करेंसी रेजेस द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स, इट वाइडन्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स एंड इट कैन अनसेटल इन्वेस्टर सेंटिमेंट। हाउ डू यू सी दिस गोइंग?
0: नो, दिस इज ट्रू। इनफैक्ट इन द पास्ट वी हैव सीन दैट wherever currencies have depreciated, in the short term it creates a lot of turbulence, particularly for investors, because they lose there's an implied cost to currency depreciation. Mm-hmm. If you come in at a certain price and currency depreciates, then I think it leads to losses for investors. So mm-hmm. yes, it has been a negative factor, but my own guess is that the worst is behind us now.
1: Right. All right. And we move on. Well, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. The Quad nations agreed on Indo-Pacific Maritime Surveillance Initiative and on a common operating picture in the maritime domain. Dr. S. Jaishankar said in a social media post that the Quad will consider an expert panel on port infrastructure, collaborate on a pilot port project in Fiji, and on undersea cables. He said one of the key takeaways of the meeting was finalization of the Quad Critical Minerals Framework. The Quad Initiative on Indo-Pacific Energy Security in Technology Management, Policy International Market Analysis and Emergency Response Exercises was also announced today. In his statement after the Quad Foreign Ministers meeting, Dr. Jaishankar emphasized that cooperation among the Quad nations will be further strengthened.
2: Our deliberations touched on the current energy and fertilizer availability as well as that of critical minerals and resources. The goal is to intensify cooperation among ourselves while also assisting others. We, the Quad nations, are open societies who foster innovation and creativity in our quest for growth and prosperity. These forces are strengthened when we undertake more exchanges, as we intend to do.
1: In his statement, U.S. Secretary of State Marco Rubio said that Quad Critical Minerals Framework will guide these four nations to leverage economic policy tools and coordinate investment to strengthen critical mineral supply chains, including in mining and processing and in critical minerals recycling. Mr. Rubio informed that the United States will be hosting Quad partners later this year for a fuel security forum to further expand this. Critical minerals have suddenly taken center stage, Puneet ji.
0: Absolutely. In fact, the whole world was very complacent about this until recently, when China suddenly tightened the screws on everybody. Yes. In the world. Mm-hmm. And so it's not something we can't achieve. It is just that the world did not pay attention to it, thinking China will be there. So it's good for us. It's a wake-up call. And I think India and everybody else is responding very well to it.
3: जी, और अगली खबर भी इससे लगभग जुड़ी हुई है। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ।
2: This particular framework aims to deepen our cooperation across the entire critical minerals and rare earth supply chain, including mining, processing, recycling, and related investments. It will certainly strengthen resilient and diversified supply chains. It will help us to collaborate in financing and in the effective management of critical minerals and rare earth scrap. So I think it's a very important initiative. I'm very glad, Secretary.

0: that during your visit we could finalize it and sign it.
1: पुनीत, वैसे तो अभी पूरी दुनिया में बात तेल की ज्यादा छाई हुई है, एनर्जी के लिए छाई हुई है, लेकिन अभी कुछ समय पहले की बात करें अगर हम, तो रेयर अर्थ के लिए जो चाइना ने दबाव बना रखा था, रेयर अर्थ मटेरियल और मैग्नेट्स और उसके लिए अब फिर पूरी दुनिया एक नए सिरे से सब कुछ तलाशने लग गई थी, नए सोर्सेज ढूंढे जा रहे थे. अब जो सीन बनता हुआ दिख रहा है, अभी पूरी दुनिया में जो हालत है, क्या लगता है कि कम से कम रेयर अर्थ मटेरियल के लिए नए समीकरण बनेंगे अब?
2: तो सुबोध जी, रेयर अर्थ मिनरल्स जो बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट हैं इलेक्ट्रिक सिस्टम में, इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम में, टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर, सैटेलाइट्स में, चिप्स में, हर जो हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं उसमें सब में रेयर अर्थ का बहुत ज्यादा योगदान है. और पिछले कई दशकों में चाइना ने अपनी एक मोनोपोली उसमें क्रिएट करी. ऐसा नहीं है कि रेयर अर्थ मिनरल्स अवेलेबल नहीं है दुनिया में,
1: तो बहुत जगह,
2: सब जगह है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग जो उसकी जो फाइनल रिफाइनिंग है वो 90% चाइना ने एक ऐसा मॉडल बना लिया था और दुनिया ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. सबने उसको एक फॉर ग्रांटेड वो सप्लाई ली. और जब ये एक ट्रेड वॉर को लेकर जब ये चिंताएं हुई और चाइना ने उसको एक स्ट्रैटेजिक टूल की तरह, एक स्ट्रैटेजिक वेपन की तरह जब यूज किया, तब एक वेकअप कॉल थी पूरी दुनिया के लिए कि ये हम सिर्फ कमर्शियल एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक प्रोडक्ट है. तो वहां से एक नया दौर शुरू हुआ और सब कंपनी, अब करीब करीब सब बड़े देश जो है वो इसको ध्यान दे रहे हैं इसकी तरफ. और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस गुत्थी को सुलझा लेंगे जल्दी. और चाइना ने जो एक जकड़ बना ली थी इस सेक्टर के ऊपर, मैं ये कहूंगा कि चाइना ने बहुत बड़ी गलती करी और एक जकड़ बनी हुई थी, तो उन्होंने सबको सब जगा दिया. हाँ। और अब सब लोग उसका एक अल्टरनेटिव अब ढूंढ रहे हैं और जरूर वो जल्दी ही,
3: और सबको जबरदस्ती आत्मनिर्भर करने की कोशिश कर रहे हैं.
2: तो एक लोग ये कह सकते हैं दुनिया सोई हुई थी, उसको जगा
1: दिया. खास करके भारत की हालत अगर हम देखें तो एक इतना लंबा हमारे पास समुद्र तट है, अगर पूरे दक्षिण भारत में देखें, अगर हम पूर्वी और दोनों तरफ से, अगर हम पूर्वी और पश्चिमी तट जो है हमारे, तो और समंदर की रेत में रेयर अर्थ मटेरियल कई जगह पे हमारे आइडेंटिफाई भी हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ अब तक शायद वही आसानी से दूसरी जगह से मिल रहा था, इसलिए हम आत्मनिर्भर नहीं हो रहे थे.
2: यही है. और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत एक बहुत ही रिलायबल एक्सपोर्टर ऑफ रेयर अर्थ बन पाएगा, क्योंकि हमारी अपनी कंजम्पशन बहुत है. छोटे देश इसको नहीं बना सकते, क्योंकि उनके जब तक डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं है तब तक आप एक्सपोर्ट मार्केट भी नहीं बन सकते. तो मुझे लगता है कि भारत के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने लिए, अपनी जरूरतों के लिए भी इसको बना सकें और एक्सपोर्ट भी करें.
3: एंड वी आर अ कंजम्पशन ड्रिवन इकॉनमी लार्जली, सो दैट हेल्प्स अस.
2: एंड इट इज ग्रोइंग, ललिमा, इट इज ग्रोइंग सो रैपिडली, एंड वी आर नो मेकिंग सच एडवांसेस बिकॉज ऑफ सर्टन पॉलिसीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट आई थिंक इंडिया विल फाइंड इट इजी टू रिप्लेस चाइना इन मेनी ऑफ दीज एरियाज.
1: जी, और अगली खबर सेबी से. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष तोहिनकांत पांडे ने आज कहा कि कॉरपोरेट बॉन्ड जोखिम मुक्त नहीं होते हैं. हालांकि सेबी भारत के ऋण बाजार को बेहतर बनाने और निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए बड़े सुधारों की योजना बना रहा है. मुंबई में आयोजित एक डेट मार्केट समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सेबी कॉरपोरेट बॉन्ड के टोकनाइजेशन के लिए ब्लॉकचेन आधारित तकनीक पर एक पायलट परियोजना की संभावनाएं तलाश रहा है, ताकि सेटलमेंट प्रक्रिया की दक्षता, पारदर्शिता और पहुंच में सुधार किया जा सके. उन्होंने कहा कि भारत का कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार काफी तेजी से बढ़ा है. वित्त वर्ष 2015 में आउटस्टैंडिंग कॉरपोरेट बॉन्ड्स लगभग 17 लाख करोड़ रुपए के थे, जो अब चालू वित्त वर्ष में बढ़कर 59 लाख करोड़ रुपए से अधिक के हो गए हैं. वित्त वर्ष 2026 में ऋण निर्गमों के जरिए 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक जुटाए गए, जो इक्विटी बाजारों के माध्यम से जुटाई गई राशि से लगभग दोगुना है. सेबी चेयरमैन ने यह भी कहा कि अभी कई चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें खुदरा निवेशकों की कम भागीदारी और सीमित तरलता शामिल है. उन्होंने कहा कि बॉन्ड में क्रेडिट, ब्याज दर और तरलता संबंधी जोखिम होते हैं, और उन्होंने निवेशकों को जागरूक करने और पारदर्शिता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया. पुनीत, जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स बाजार है, आज भी ये आम निवेशकों के लिए, मतलब उनकी पहुंच से बाहर है, या शायद उनकी अभी वो उसको अपने समझ के दायरे में ला ही नहीं पाए हैं?
2: बिल्कुल, बहुत आपने बिल्कुल एप्रोप्रिएट बात कही कि कॉरपोरेट बॉन्ड्स एक बहुत अच्छा तरीका है इन्वेस्टर्स के लिए अपने को एक फिक्स मार्केट से, फिक्स इनकम मार्केट में इन्वेस्ट करने का. पूरे विश्व में कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट जो है वो कई

0: गुना बड़ी होती है इक्विटी मार्केट से, पर भारत में ऐसा नहीं है। करीब करीब हम देखते हैं कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है वो उसका दायरा बहुत कम है। ज्यादातर कंपनियां आज भी बैंकों से ही लोन लेती है क्योंकि वो लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट्स और जो एक्सेस टू मार्केट है वो बहुत कम है कॉर्पोरेट बॉन्ड में। एक अच्छा कदम है, लेकिन देखिए कई सालों से ये, कई वर्षों से सेबी कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, अभी इसमें सफलता हासिल नहीं हुई है।
1: हाँ, लेकिन इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि बात हो रही है कि इसको बनाया जाएगा, ये किया जाएगा, लेकिन कर क्या सकते हैं? मतलब अगर एक आम निवेशक निवेश करना चाहे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में तो रास्ता क्या है?
0: देखिए मैं, क्योंकि हम लोग इस पे रिसर्च काफी करते हैं, हम एक्सपोजर भी इस पे लेते हैं, तो इसके अंदर कई कारण है। पहली बात यह कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है इंडिया में, वो कई उसमें इश्यूज हैं, टैक्सेशन को लेकर इश्यूज हैं, इसमें अकाउंटिंग को लेकर इश्यूज हैं, लिक्विडिटी नहीं है। आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड ले तो लिया, आपको जब जरूरत पड़ेगी पैसे की तो आप आसानी से बेच नहीं पाते हैं, तो इन्वेस्टर को वो कंफर्ट नहीं मिलता है। तो कई सारे इश्यूज हैं, अभी भी सरकार को थोड़ा इस पे और ध्यान देना पड़ेगा, शायद शुरू में कुछ इंसेंटिव भी देने पड़ेंगे। अभी आज ये बाजार डेवलप नहीं है, इसको डेवलप करने के लिए कुछ डेफिनेटली कुछ इंसेंटिव देने होंगे, उसके बाद ये जब बाजार बढ़ता है तो शायद इसका फायदा होगा पूरी इकोनॉमी।
2: राइट, वेल मार्केट मंत्र इज इनकम्प्लीट विदाउट फ्यूअल। लेट्स टॉक अबाउट सीएनजी फर्स्ट। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और सीएनजी एज वी कॉल इट प्राइसेज इन दिल्ली हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 2 रुपीज पर किलोग्राम इन दिल्ली विद द लेटेस्ट रिविजन इफेक्टिव फ्रॉम 6 AM टूडे। सीएनजी इन दिल्ली विल नाउ कॉस्ट 83 रुपीज, नाउ कॉस्ट इन फैक्ट 83 rupees 9 paise per kilogram. And over to oil. Global crude oil prices displayed a mixed trend today. Brent crude was trading 3% up at $99.02 per barrel, while West Texas Intermediate crude was trading 3.9% lower at $92.79 per barrel when reports last came in.
1: सोने चांदी का हाल भी बता दें।
2: बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, उसके बगैर भी नहीं हो सकता मार्केट मंत्र। इन द इंडियन बुलियन मार्केट 24 कैरेट गोल्ड वाज ट्रेडिंग ओवर 0.6% डाउन एट 1,58,770 rupees पर 10 grams, वाइल सिल्वर वाज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 1.8% लोअर एट 2,72,250 rupees पर किलोग्राम अ शॉर्ट वाइल अगो।
1: जी, और एमसीएक्स में जून अनुबंध वाला सोना 0.7% गिरकर 1,57,900 rupees प्रति 10 ग्राम पर था, और जुलाई अनुबंध वाली चांदी 1.9% नीचे 2,71,400 rupees प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। पुनीत, अभी हमने सुन लिया गैस का हाल देश में, क्रूड का हाल बाहर और सोने का हाल, आप क्या कहना चाहेंगे इन सब पर?
0: सुबोध जी, देखिए नॉर्मली जब थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है तो हम देखते हैं कमोडिटीज का प्राइसेस, चाहे गैस हो, एनर्जी की प्राइसेस हो, सोना चांदी की कीमतें हो, वो बढ़ने की तरफ उसका रुख रहता है, क्योंकि वहां पर दीज आर कंसिडर्ड एज हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। यदि आपका सोना है तो इन्फ्लेशन को आप बीट कर सकते हैं, और बैंक में या कहीं और रखते हैं तो उसका शायद इतना फायदा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि सोने चांदी की, हालांकि काफी महंगे हो गए हैं, सरकार नहीं चाहती कि लोग ज्यादा इसमें निवेश करें, मैं भी मानता हूं कि बहुत ज्यादा कोई फायदेमंद नहीं है इन लेवल्स पर निवेश करना, पर अट्रैक्टिव बहुत है लोगों के लिए, आसान लगता है, एंड पीपल आर अट्रैक्टेड टू इन्वेस्टिंग इन कमोडिटीज एंड गोल्ड सिल्वर, तो देखिए हो रहा है, पर मुझे लगता है कि कोई बहुत फायदेमंद अब यहां से नहीं है।
2: और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था दैट वी मस्ट नॉट बाय फॉर एटलीस्ट 1 year गोल्ड फ्रॉम द मार्केट।
0: एब्सोल्युटली,
2: टू कंजर्व आवर फॉरेक्स रिजर्व्स।
1: पुनीत ने जो एक लाइन कही थी वो मैं पकड़ लेता हूं कि ये फायदेमंद नहीं है, आकर्षक बेशक।
0: हाँ, आपने सही इसका जो मर्म है कि आपको लगेगा अच्छा है पर इसका कोई बहुत फायदा आने वाले समय में मुझे नहीं लगता,
1: क्योंकि आप इससे कुछ कर तो नहीं सकते। जी पुनीत, मार्केट मंत्र में आने और बहुत सार्थक चर्चा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सुबोध जी।
2: All right, before we close, friends, is a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices end with losses. Sensex drops nearly 500 points. Nifty settles below 24,000. Most Asian stock markets end on negative note. And Quad launches maritime and energy security initiatives. Also finalize Quad critical minerals framework. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Subodh Mish, and our expert Puneet Jain signing off. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं

0: रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। श्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ और अन्य कारणों से अस्वाभाविक जनसांख्यिकी बदलाव हो रहा है। गृहमंत्री ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जनसांख्यिकी बदलाव पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अगले 6 महीनों के भीतर ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि जहां सीमा पार से आने वाले खतरे महत्वपूर्ण बने हुए हैं, वहीं देश के भीतर ऐसे खतरों में मदद करने वाले आंतरिक तत्वों पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए समुद्री निगरानी को मजबूत करने और गतिविधियों की एक साझा तस्वीर तैयार करने की पहल पर सहमति जताई। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा तथा फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की भी निंदा की है।
2: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
3: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
2: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। डॉ मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। डॉ मांडविया ने कहा कि योग की उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले भारत में हुई थी और अब इसे विश्व स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट के पहले क्वालिफायर मुकाबले में आज गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम को सीधे फाइनल में प्रवेश मिलेगा, जबकि हार

0: सुर्खियों में
1: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। आज हम चर्चा करेंगे वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में क्वाड की भूमिका पर और आने वाले समय में क्वाड की भूमिका कितनी बड़ी हो सकती है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर हर्ष वी पंत, वाइस प्रेसिडेंट ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। प्रोफेसर, आकाशवाणी में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद टीना।
1: दुनिया इस समय एक बड़े जियोपॉलिटिकल ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है, जहां इंडो पैसिफिक सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और साथ ही स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का केंद्र बन चुका है। ऐसे में नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को बेहद अहम माना जा रहा है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इस बैठक में कई बड़े और प्रैक्टिकल इनिशिएटिव्स की घोषणा की है, चाहे बात हो मैरिटाइम सर्वेलेंस की, क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन्स की, एनर्जी सिक्योरिटी की, सिक्योर टेलीकॉम नेटवर्क्स की या फिर एआई आधारित एग्रीकल्चर इनोवेशन की। चर्चा की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले सुनते हैं कि नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के दौरान विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने क्वाड की भूमिका और इंडो पैसिफिक को लेकर क्या अहम बात कही।
3: वी हैव जस्ट कंक्लूडेड वेरी सब्सटेंटिव एंड प्रोडक्टिव मीटिंग ऑफ द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स। अंडरस्टैंडेबली मच ऑफ द डिस्कशंस एंड इंडीड द बायलैटरल एक्सचेंजेस वर डिवोटेड टू द करंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। बीइंग क्वाड, we naturally focused on issues of particular relevance to the Indo-Pacific. Because we are four maritime democracies located at different ends of the Indo-Pacific, the exchange of perspectives was an exercise of considerable value. The maritime domain has seen a steady expansion of collaboration, including surveillance and domain awareness, logistics network, undersea cables, training, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड HADR एक्टिविटीज।
1: प्रोफेसर, चर्चा की शुरुआत मैरिटाइम सिक्योरिटी से करते हैं। कुछ अहम अनाउंसमेंट्स इस सेक्टर से संबंधित हुए हैं, जिनमें इंडो पैसिफिक मैरिटाइम सर्वेलेंस कोलैबोरेशन इनिशिएटिव काफी अहम माना जा रहा है। हमारे श्रोताओं को अगर आप समझा सकें कि ये कितना ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव होगा समुद्री सुरक्षा के लिहाज से।
2: देखिए, जो हिंद प्रशांत की जब हम बात करते हैं तो ये एक मैरिटाइम ज्योग्राफी है, ये एक समुद्री क्षेत्र है जिसमें एक साझा परिचालन तस्वीर, कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर की जब हम बात करते हैं, वो उसकी एक जरूरत मुझे लगता है चारों देशों को पड़ रही है। क्योंकि जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं हिंद प्रशांत में, इतने बड़े भू राजनीतिक बदलाव आए, जियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स आए और उसके बाद मैरिटाइम स्पेस में भी इतने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी बदल रही है, देशों की सोच बदल रही है और उसके साथ उनकी स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज बदल रही है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कहीं पर सबसे पहले अगर हम किसी चीज की बात, देश ये जो चार देश हैं ये अपनी साझेदारी इनकी जो बढ़ाने की जब बात करते हैं प्रशांत में, तो सबसे पहले कि ये देश जानना चाहेंगे क्या इनके पास एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर है कि नहीं है, क्या ये चारों देश एक ही तरीके से एक ही असेसमेंट रखते हैं जो हिंद प्रशांत मैरिटाइम स्पेस में हो रहा है। तो उसके लिए सर्वेलेंस की जरूरत है, उसके लिए निगरानी की जरूरत है और मुझे लगता है ये जो एक इंडो पैसिफिक मैरिटाइम सर्वेलेंस फ्रेमवर्क इनिशिएटिव को आज आगे बढ़ाया गया, इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल ये होगा कि ये आपको एक, ये जो देश है इनको एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर देगा इस रीजन के बारे में, ये उसके जो यहाँ पर चैलेंजेस उभर कर आ रहे हैं उसको, उसके बारे में आगाह करेगा और कहाँ पर इकट्ठे तौर पर इन चैलेंजेस को इकट्ठा रहकर टैकल किया जा सकता है, उसके बारे में एक रोड मैप बनाने में और आसान हो जाएगा रास्ता। ये मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा रोल होगा और इसके साथ जब ऐसा होगा तो इससे न सिर्फ इन चार देशों को मदद मिलेगी बल्कि वो सारे देश जिनके पास कैपेसिटी नहीं है, जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मैरिटाइम सर्वेलेंस कर पाए या मैरिटाइम समुद्री निगरानी रख पाए या पूरे जो ये हिंद प्रशांत है इस पर एक अपनी पकड़ बना पाए, तो उसमें इनकी मदद करने में ये क्वाड जो फ्रेमवर्क है ये हेल्पफुल होगा। तो ये सिर्फ अपने लिए नहीं होगा चार देशों के लिए बल्कि पूरे हिंद प्रशांत के लिए एक अच्छी पहल है और इसको मुझे लगता है इससे जो बाकी देशों को भी फायदा होगा वो भी इससे जुड़ने की कोशिश करेंगे आगे।
1: प्रोफेसर, आसान भाषा में अगर समझना चाहें तो क्या ये कहा जा सकता है कि कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर को विकसित करने से इंडो पैसिफिक में रियल टाइम कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग की क्षमता काफी बढ़ जाएगी?
2: जी बिल्कुल, मॉनिटरिंग होगी और उसके साथ साथ उस मॉनिटरिंग से आप कैसे

0: आपकी जो एसेट्स हैं उनको आप कैसे ऑपरेशनल यूज के लिए ला सकते हैं। चारों जो देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनके पास मैरिटाइम एसेट्स काफी हैं, लेकिन ये मैरिटाइम एसेट्स जो इनके हैं वो अपने क्षेत्र में काम करते हैं, कि भारत जो है वो इंडियन ओशन में डोमिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक में है, जापान साउथ ईस्ट चाइना सी एरिया में डोमिनेंट है। तो इनको इकट्ठा करके, इनकी कैपेबिलिटीज को इकट्ठा करके जब आप कोई तस्वीर बनाएंगे इस रीजन की, तो आपको एक तो पूरी टोटैलिटी में समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या चल रहा है, और उसके साथ अगर आप किसी और देश की कैपेसिटी बिल्ड करने में मदद करना चाहते हैं, सर्वेलेंस उसकी कैपेसिटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और अपने जो कैपेबिलिटीज है उनको और ऑपरेशनल बनाना चाहते हैं, उस सबकी जो पहली स्टेज होती है वो सर्वेलेंस होती है। तो मुझे लगता है वो जो एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर की बात हम कर रहे हैं, उससे इस जो पहल है इसको और गति मिलेगी और बाकी देशों को जोड़ने का भी अवसर मिलेगा।
1: प्रोफेसर, क्वाड ने इंडो पैसिफिक में सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क की भी घोषणा की है। आज के दौर में जब रेयर अर्थ मिनरल्स, लिथियम, कोबाल्ट, इनको सिर्फ इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक एसेट्स माना जा रहा है, क्या यह इनिशिएटिव चीन पर दुनिया की निर्भरता को कम करने और एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन सिस्टम बनाने की दिशा में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल कदम है?
0: जी बिल्कुल, मुझे लगता है क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो इस समय सबसे महत्वपूर्ण एक कैटेगरी है, जहां पर सभी देश जो हैं वो, जो पूरी दुनिया है वो इस समय एक तरह से क्राइसिस से गुजर रही है, जहां पर क्रिटिकल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी, उनकी प्रोसेसिंग, उनका यूटिलाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और जिस तरह से जो डोमिनेंस कुछ देशों की है क्रिटिकल मिनरल्स पर, रेयर अर्थ मिनरल्स पर, वो किस तरह से उसको वेपनाइज कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या देशों के सामने है, खासकर उन देशों के सामने जिनके पास इंडिजिनस मिनरल्स नहीं है और जो बहुत डिपेंडेंट है बाहरी दुनिया के ऊपर। तो मुझे लगता है जो फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ है आज क्रिटिकल मिनरल्स, जिसका की एम होगा कि कैसे करीब करीब 20 बिलियन US डॉलर्स को मोबिलाइज करे पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, जिससे कि सिक्योर और रिजिलियंट क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स थ्रू आउट इंडो पैसिफिक, पूरे हिंद प्रशांत में बन पाए, इसकी जो एक कोशिश करेगा, ये मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है दुनिया को और उन देशों को जो क्रिटिकल मिनरल्स को वेपनाइज कर रहे हैं, कि आप की ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट किए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल कोऑपरेशन बढ़ रहा है क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, और क्रिटिकल मिनरल्स की जो डिपेंडेंस है अगर वो दूसरे देशों की तरफ से देखें तो वो उसको कम करने की कोशिश, डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश यहाँ पर नजर आ रही है। दूसरा इसमें अहम बात यह है कि जब आप हम आर्थिक तरक्की की आज बात करते हैं, उसमें जिस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी, जिस तरह का इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उसमें क्रिटिकल मिनरल्स का रोल सेंट्रल है। तो आप अगर डेवलपमेंट की भी बात हम करें, अगर हम डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज हमारी हैं उसकी भी बात करते हैं, तो उसमें भी क्रिटिकल मिनरल्स का क्या रोल होगा और कैसे बाकी देश जो क्वाड के देश हैं, क्वाड मेंबर्स हैं, वो किस तरह से एक अल्टरनेटिव दुनिया को या हिंद प्रशांत के देशों को देने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस इनिशिएटिव में नजर आता है। और इसमें कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है, कि कैसे जो क्रिटिकल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है, जो उसकी स्टेबिलिटी है, उसको स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि वही जब स्ट्रेंथन आप करेंगे तब आप हिंद प्रशांत की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, जो स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस है, उसको स्ट्रेंथन कर पाएंगे।
1: जी बिल्कुल। एक तीसरा अहम इनिशिएटिव जिसका जिक्र डॉक्टर जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी किया, वो है क्वाड इनिशिएटिव ऑन इंडो पैसिफिक एनर्जी सिक्योरिटी। अब प्रोफेसर, मौजूदा ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के संदर्भ में ये कितना अहम है, और खास करके हम देख रहे हैं कि ये लगातार एनर्जी क्राइसिस हो रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भी एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रप्शन देखा गया, और अभी के मौजूदा ग्लोबल सिनेरियो को भी अगर देखें तो ऐसे में क्या एनर्जी रेजिलियंस अब सिर्फ एक इकोनॉमिक कंसर्न नहीं है बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी के दृष्टिकोण से भी एक काफी केंद्रीय मुद्दा बन चुका है?
0: जिस तरह से आपने जिसका जिक्र किया कि रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद और अब जो मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, वेस्ट एशिया में जो हो रहा है, उसके बाद एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि किसी भी देश के ऊपर अगर आप ज्यादा निर्भर करते हैं अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, तो वो आपको हानि पहुंचाने के लिए काफी होता है। और हमने ये बात अभी हम नोटिस कर रहे हैं कि किसी ने ये नहीं सोचा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको कि हम हमेशा ही मानते थे, दुनिया ये मानती थी कि अनइम्पीडेड कॉमर्स के लिए इसेंशियल है और इसलिए हमेशा खुला रहेगा, उसमें जिस तरह का बदलाव आया है, उसमें जिस तरह से ब्लॉकेड हुआ और उसको रोकने की कोशिश की गई, वो मुझे लगता है एक तरह से अलार्म बेल है दुनिया के लिए कि अगर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है जो इनिशिएटिव है ये एक तरह से ये दिखाने की कोशिश है दुनिया को कि जो चार जो पिवोटल पावर्स हैं हिंद प्रशांत की, वो इस बात को लेकर सीरियस हैं कि जो कि कैसे जो प्रत्येक देश के ऊर्जा क्षेत्र के संसाधनों को, उनकी क्षमताओं को पहचाना जाए और उनका लाभ उठाया जाए, साथ ही उनसे संबंधित जो रणनीतिक पेट्रोल

0: विनिमय प्रणालियां हैं उनको मजबूत कैसे किया जाए। तो कहीं पर जब हम चार देशों की बात करते हैं तो ये अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं, कैपेसिटीज हैं, उनको इकट्ठा करके आगे बढ़ने की जो कोशिश इसमें है वो नजर आ रही है।
1: प्रोफेसर, फ्यूचर टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो एआई एंगेज इनिशिएटिव के तहत एग्रीकल्चर इनोवेशन और फूड सिक्योरिटी पर सहयोग बढ़ाने की बात की गई है। क्या ये कहा जा सकता है कि क्वाड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ साथ अब डेवलपमेंटल पार्टनरशिप की ओर भी बढ़ रहा है?
0: जो हम देख रहे हैं अभी क्वाड में जो हो रहा है उसमें मुझे लगता है एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि क्वाड न सिर्फ स्ट्रेटेजिक मुद्दों के ऊपर, सामरिक मुद्दों के ऊपर अपनी एक पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि एक तरह से डेवलपमेंट के जो इश्यूज हैं उसको वापस किस तरह सेंटर में लाया जाए, कैसे इस डिस्कोर्स के सेंटर में लाया जाए, इसकी पहल काफी ज्यादा हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो इसको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को किस तरह से डेवलपमेंटल प्रायोरिटी से जोड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि इससे आपकी सामरिक जो क्षमताएं हैं वो उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश, पर उससे किस तरह से इकोनॉमिक रेजिलियंस और डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को साधा जाए इसकी कोशिश हो रही है। तो इसमें मुझे लगता है कि ये जो कोलैबोरेशन है इसमें हमने ये कोशिश देखी है इन चार देशों की कि एक ऑल्टरनेटिव मॉडल सेट करने की कोशिश है कि हम क्वाड जो कर रहा है वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है, अपने हितों को साधने की कोशिश नहीं, बल्कि जो क्वाड कंट्रीज के एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी कैपेसिटीज हैं, उनकी कैपेबिलिटीज हैं, उसको कैसे रीजन के लिए लेवरेज किया जाए। मुझे लगता है उसमें ये जो धारणा है इस क्वाड के इनिशिएटिव्स में, और जब हम एआई एंगेज इनिशिएटिव की बात करते हैं तो उसमें भी क्या कैसे एआई को, इमर्जिंग टेक को एग्रीकल्चर सेक्टर में लेवरेज कर पाएंगे, इसके ऊपर जिस तरह की रिसर्च होनी चाहिए, जिस तरह के फंड्स आने चाहिए, जिस तरह से इसको आप अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को हमको सशक्त बनाना है, काफी सारी जो इकोनॉमीज हिंद प्रशांत में है वो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है, तो अगर हमको उन इकोनॉमीज को रेजिलियंट बनाना है, डेवलपमेंट को अपने सेंटर में रखना है, तो ऐसे इनिशिएटिव्स की जरूरत बहुत ज्यादा है। और ये जो अल्टरनेटिव है कि क्वाड का मॉडल वो वाला मॉडल नहीं है कि जहां पर दूसरे देश आते हैं, पैसा देते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं रिसोर्सेज और चले जाते हैं। क्वाड का मॉडल अल्टीमेटली एक ऐसा मॉडल है जो कैपेसिटी बिल्ड करने की कोशिश है दुनिया भर में, हिंद प्रशांत में, खासकर उन देशों में जो जिनके पास अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज कम है या जिनको हेल्प की जरूरत है। तो मुझे लगता है उस मामले में एआई एंगेज इनिशिएटिव बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है, और एआई और इमर्जिंग टेक से आप कैसे अपनी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को साध सकते हैं उसके लिए बहुत अच्छा नमूना देशों ने पेश।
1: प्रोफेसर, एक आखिरी सवाल क्वाड के भविष्य को लेकर अगर बात करें, और जिस तरह से हमने देखा कि आज फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद जिस तरह से मैरिटाइम सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, एनर्जी कनेक्टिविटी, इन सब क्षेत्रों में देखा गया कि कोऑर्डिनेटेड इनिशिएटिव्स सबने मिलकर लॉन्च किया है, कई ऐसे नए क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई है जिसमें सहमति बन सकती है आने वाले समय में, क्या ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा संकेत था क्वाड के द्वारा कि आने वाले समय में इस ग्रुपिंग की इंस्टीट्यूशनल डेप्थ और बढ़ सकती है?
0: बिल्कुल, मुझे लगता है जितना विस्तृत क्वाड का एजेंडा आज हम देख रहे हैं और जिस तरह से क्रिटिकल एरियाज में क्वाड इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है, एंगेज करने की कोशिश कर रहा है, एक तरह से अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरफ इशारा है, उसमें ग्रेटर एंगेजमेंट की तरफ इशारा है, उसमें इशारा है कि कैसे आप ज्यादा क्लोजली काम कर सकते हैं एक साथ, अगर आप आए, चार बड़े देश आए और उसके बाद वो न सिर्फ अपने लिए काम करें बल्कि दूसरे देशों को भी एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट करें, मुझे लगता है उसकी तरफ इशारा है। तो एंगेजमेंट है, एक्सपीरियंस शेयरिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, और उसके लिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की जरूरत होगी, उसके लिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बढ़ेगा आगे। मुझे लगता है ये बात कही गई शुरू में जब ये समिट शुरू हुआ कि कैसे एक क्वाड आइडियाज से निकलकर ऑपरेशनल इश्यूज पर प्रैक्टिकल इश्यूज की तरफ मूव कर रहा है, और मुझे लगता है अच्छी शुरुआत है क्योंकि इससे जो भी डेवलपमेंट्स होंगे ऑन द ग्राउंड ज्यादा कॉन्फिडेंस बनेगा क्वाड मेंबर्स में, और वो देश जो क्वाड की ओर उम्मीद भरी निगाहें लगाए बैठे हैं कि क्वाड अगर अच्छा करेगा इन सेक्टर्स में तो उनसे उनका भी फायदा।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है आज की बैठक से ये बड़ा संदेश दे दिया गया है उन सभी को कि ये चार देश अभी सिर्फ वर्तमान की चुनौतियों का ही जवाब नहीं ढूंढ रहे हैं बल्कि भविष्य की इकोनॉमिक रियलिटीज क्या होंगी और जियो पोलिटिकल रियलिटीज को भी शेप करने की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए प्रोफेसर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सांझ ढले आपके लिए स्वागत करती हूं मैं कुसुम। कैसरुल जाफरी साहब के शब्दों में कहें तो तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। और देखिए ना, भागती दौड़ती इस दुनिया में हम सभी थके हुए हैं और शहरे दिल्ली की बात तो पूछिए ही मत। ना जाने कौन सी शय दिल्ली की हवाओं में घुली हुई है कि यहाँ पर हर कोई बस भागता ही जा रहा है। ऐसे में तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम एक शाम अपने लिए चुराएं और कुछ पल ठहरें, सोचें, अपनी दिशा तय करें। फिलहाल ये शाम आपके नाम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। देखिए ये गीत क्या इशारा कर रहा है, फिल्म वासना का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपके लिए।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

आंगन पर उतर रही है शाम, कुछ गुनगुनाती हुई, कोई इशारा सा करती हुई। शाम का इशारा प्रेमी का जो दिल है वो बखूबी समझता है। तभी तो किसी ने क्या खूब लिखा है कि शाम को आओगे तुम, अच्छा अभी होती है शाम, गेसुओं को खोल दो सूरज छिपाने के लिए। वैसे शाम ने गेसू खोल दिए हैं और सूरज क्षितिज के जाम दामन में छिप चुका है। बादलों की रेखाएं आसमान के पन्ने पर प्रेम की पाती लिख रही हैं। वैसे आपने कभी किसी को प्रेम की पाती लिखी है? जरूर लिखी होगी, पहले कागज पर लिखा करते थे और आजकल मोबाइल की स्क्रीन पर, है ना। लेकिन जमाने हो गए हाथ से कागज पर पत्र लिखे और किसी को डाक के जरिए भेजे हुए। जरा याद कीजिए, जमाने हो गए, है ना। फिल्मी गीतों में भी खूब लव लेटर्स लिखे गए हैं। फिल्म प्रेम पुजारी में जो नायक है देवानंद, वो फूलों के रंग से, दिल की कलम से एक हसीना को प्रेम पाती लिख रही हैं। किन शब्दों में वो अपने प्रेम का इजहार कर रही हैं, आइए हम भी सुनें।

वो देखो जिंदगी का एक खत वक्त के पन्नों पर रखा है। लिखा है, कुछ यूं ही गुजर जाएगी हर सांझ एक दिन, लो जी लो इस सांझ को आखिरी सांझ की तरह, क्योंकि लौट कर यादें आती हैं, दिन नहीं। एक गीत के बनने की याद कुछ इस तरह से है कि साल 1965 में मनोज कुमार और माला सिन्हा की एक फिल्म आई थी, हिमालय की गोद में। इस फिल्म में डायरेक्टर विजय भट्ट फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से एक ही गाने के दो वर्जन चाहते थे, लेकिन अलग अलग लिरिक्स के साथ। एक गाना इस फिल्म की हीरोइन की खुशी पर और दूसरा उनके दर्द पर फिल्माया जाना था, लेकिन दोनों के बोल में बदलाव किया जाना था। जी हाँ, फिल्म में बतौर गीतकार आनंद बख्शी, कमर जलालाबादी और इंदीवर साहब काम कर रहे थे। ये गीत लिखने की जो चुनौती है वो इंदीवर साहब ने ली। ये इंदीवर साहब की काबिलियत ही थी कि उन्होंने एक ही गाने को दो अलग अलग तरीके से लिखा और दोनों गाने लता मंगेशकर ने ही गाए। दोनों को ही खूब पसंद किया गया। पहले गाने के बोल में ऐसा था कि एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, मेरा दिल ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या है। दूसरे गाने के बोल ये रहे आपके सामने।

इसी गीत के साथ ही सांझ ढले यहीं तक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 8:10 पर मधुरिमा कार्यक्रम में मैं कुसुम एक बार फिर से आपके साथ रहूंगी। फिलहाल आइए जुड़ते हैं प्रादेशिक समाचारों से।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए, 78,000 की सब्सिडी दे रही है।

0: भारत सरकार 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजधानी में वायु गुणवत्ता सुधार के उपायों की समीक्षा बैठक की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना प्रगति की समीक्षा बैठक की। खाद्य और उद्योग मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, अब 2.5 लाख रुपए वार्षिक आय वाले लोग भी नए राशन कार्ड के लिए पात्र होंगे। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ी। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा, राजधानी में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को लेकर दिल्ली स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजधानी में वायु गुणवत्ता सुधार के उपायों की प्रगति पर एक व्यापक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने शीत ऋतु के प्रारंभ से पहले प्रदूषण के स्तर में पर्याप्त कमी सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्यान्वयन, मजबूत अंतर एजेंसी समन्वय और कड़े प्रवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में पूरे शहर में इलेक्ट्रिक वाहन, सार्वजनिक चार्जिंग, बुनियादी ढांचे को तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। नई दिल्ली में समीक्षा बैठक में श्री गडकरी ने राजमार्ग परियोजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में तेजी लाने और कार्यों को समय पर पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री ने परियोजना की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी को महत्वपूर्ण बताते हुए एजेंसियों को राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आधुनिक निर्माण तकनीकों और सर्वोत्तम इंजीनियरिंग पद्धतियों को अपनाने का निर्देश भी दिया है। श्री गडकरी ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के प्रमुख राजमार्ग गलियारों में यातायात की गुणवत्ता में सुधार और निर्बाध संपर्क को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजना खंडों पर मॉनसून की तैयारी के लिए अग्रिम उपाय करने का भी निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार में लोक निर्माण मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज बारापुला फेज 3 फ्लाईओवर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने काम के अंतिम चरण की समीक्षा की। श्री सिंह ने बताया कि कई साल की देरी के बाद परियोजना अब पूरी होने के करीब है। उन्होंने बताया कि फ्लाईओवर 30 जून तक खोलने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि फ्लाईओवर बन जाने से लोगों को यातायात जाम की समस्या से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का ध्यान समय पर परियोजना को पूरा करने और राजधानी के लोगों को राहत पहुंचाने पर है।
3: हमने टारगेट 1.25 साल पहले रखा था कि 30 जून 2026 तक इसको पूरा करेंगे। आज हम अपने टारगेट के कमिटमेंट के साथ खड़े हैं। लाखों गाड़ियां यहां से निकलेंगी, नोएडा, ईस्ट दिल्ली और बाकी पूरे दिल्ली की गाड़ियां यहां पर, उनको जाम से जो अपना समस्या थी उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और ये अपने आप में इसकी फ्लाईओवर की विशेषता ये है कि अलग से देश में पहली बार ऐसा फ्लाईओवर है जहां पे साइकिल के लिए अलग से लेन बनाई गई है।
2: प्रादेशिक समाचार, आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली सरकार के मंत्री और राजधानी के कई लोकसभा सांसद शामिल हुए। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सभी को

0: विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री नायडू ने कहा कि सभी राज्यों के नेताओं से भी इस पुस्तक को पढ़ने और ये समझने का आग्रह किया गया है कि कैसे दो मुख्यमंत्रियों ने राज्यों के विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिए मिलकर काम किया।
1: The very name अपनापन in our language it means ours. This book I feel is very important that it should be read all budding politicians.
0: वहीं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि ये पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवनी नहीं है। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। एकता यात्रा के दौरान श्री मोदी के साथ अपने अनुभव को याद करते हुए श्री चौहान ने कहा कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर श्री मोदी ने देश के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाई थी। जब श्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब के अपने कार्यकाल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने अपने अपने राज्यों के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम किया।
2: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है, उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है।
0: कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पुस्तक अपनापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिवराज सिंह चौहान के अनेक अनुभव संकलित हैं और ये अनुभव निश्चित रूप से सभी के लिए जीवन के सबक साबित हो सकते हैं।
3: आज का कार्यक्रम प्रेरणादायक है। अपनापन जो पुस्तक है उसमें जितने भी अनुभव हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, वो निश्चित रूप से सबके लिए जीवन का एक लक्ष्य हो सकते हैं।
0: दिल्ली सरकार में खाद्य और उद्योग मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने आज बताया कि राजधानी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए राशन की सीमा को 1,20,000 रूपये से बढ़ाकर 2,50,000 रूपये कर दिया गया है।
4: अब दिल्ली के अंदर नए राशन कार्ड बनाने के लिए जिन लोगों की 2,50,000 तक की आमदन है वह सब लोग भी इस राशन कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। उनके पास भी पीडीएस का राशन उनको भी मुहैया कराया जाएगा। दिल्ली के अंदर लाखों लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: दिल्ली में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी के दाम में 2 रूपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सवेरे 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई है। दिल्ली सरकार में विद्युत मंत्री आशीष सूद ने आज बताया कि शहर की बिजली व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है ताकि दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी में बिजली कटौती का सामना न करना पड़े। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली में बिजली का बुनियादी ढांचा अगले 2 साल में और भी मजबूत हो जाएगा, जिसके बाद बिजली कटौती पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार बिजली के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए लगातार काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इस दिवस के बारे में आयुष मंत्रालय द्वारा जारी बहुभाषी पुस्तिका अंग्रेजी, हिंदी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। मंत्रालय ने बताया कि पुस्तिका सामान्य योग अभ्यासक्रम, प्रमुख पहलों और सार्वजनिक भागीदारी के अवसरों के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है। इसमें मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे योग संगम, हरित योग, योग समावेश, योग पार्क और योग अनप्लग्ड के साथ साथ 21 जून तक की निर्धारित गतिविधियों का विवरण शामिल है। यह प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने राजधानी में जारी भीषण गर्मी और बढ़ते हुए तापमान के मद्देनजर की गई तैयारियों की समीक्षा के लिए लोकनायक जयप्रकाश एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने लू प्रबंधन के लिए किए गए इंतजामों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार, स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा दल स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं ताकि भीषण गर्मी के कारण नागरिकों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। डॉक्टर सिंह ने बताया कि अस्पताल ने लू के मामलों के लिए एक व्यापक उपचार तंत्र

0: तैयार किया है, जिसमें अलग आपातकालीन व्यवस्था, आईसीयू की तैयारी, समर्पित बिस्तर, विशेष उपचार कक्ष और मरीजों के लिए चरणबद्ध रिकवरी प्रबंधन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि लू से संबंधित विभिन्न स्थितियों के साथ आने वाले मरीजों का प्रबंधन एक सुव्यवस्थित उपचार प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है।
1: जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही थी, हमें लग रहा था कि गर्मी से लोग दिल्ली में परेशान, हीट वेव की समस्या आ सकती है, बाहर से जो लोग आते हैं उनको भी समस्या आ सकती है। उसके लिए हमने बेडों के लिए और डॉक्टर सबके लिए व्यवस्था कर रखी थी। उसी नियमित हम चेक करने आए हैं कि दिल्ली की जनता को कोई समस्या न आए।
0: ईद उल जुहा के मद्देनजर उत्तर पूर्वी जिले के सीलमपुर स्थित पुलिस उपायुक्त कार्यालय परिसर में शांति बनाए रखने को लेकर एक समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मस्जिदों और ईदगाहों के इमामों, अमन समिति, नागरिक भाईचारा समिति, नगर निगम अधिकारियों और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान संयुक्त पुलिस उपायुक्त अजित कुमार सिंघला ने लोगों से सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने, कुर्बानी केवल निर्धारित स्थानों पर करने, स्वच्छता बनाए रखने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री साझा न करने की अपील की। वहीं सभी हितधारकों ने त्यौहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं पुलिस उपायुक्त राहुल अलवल ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 1100 पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है।
2: हम लोग उसके लिए अरेंजमेंट का प्लान हो चुका है। हमारे यहाँ टोटल 1100 के हमारे पुलिस कर्मचारियों को हमने ड्यूटी पे लगाया है। उसके अलावा भी 23 कंपनीज का आउटसाइड फोर्स का हमने रिक्वेस्ट की है। इन सभी को हमने डिफरेंट मस्जिदों पे और खासतौर पे जो मेजर और सेंसिटिव मस्जिद है हमने पॉइंट वाइज डिप्लॉयमेंट की है।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। श्री मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। ये देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
3: योग ये हमारे देश की संस्कृति भी है, हमारी जीवन शैली भी है। आज से सदियों पहले योग भारत से निकल के सारे दुनिया में गया है। फिर से योगासना की फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप करके उसको पुनः भारत में एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में आयोजित करेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा।
0: श्री मांडविया ने कहा कि चैंपियनशिप में करीब 75 देशों के 500 से अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है। दिल्ली नगर निगम की उपमहापौर डॉ मोनिका पंत ने आज प्रीत विहार वार्ड में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उपमहापौर ने क्षेत्र की विभिन्न कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थलों का निरीक्षण करते हुए सफाई व्यवस्था, सड़कों की स्थिति, नालों की सफाई, पार्कों के रखरखाव, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था और अन्य जन सुविधाओं का जायजा लिया। राजधानी में आज दिन के समय तेज धूप रही और लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान रहा 26.8 डिग्री सेल्सियस। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजधानी में वायु गुणवत्ता सुधार के उपायों की समीक्षा बैठक की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना प्रगति की समीक्षा बैठक की। खाद्य और उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा अब 2.5 लाख रूपये वार्षिक आय वाले लोग भी नए राशन कार्ड के लिए पात्र होंगे। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रूपये बढ़ा दी गई है और स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा राजधानी में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को लेकर दिल्ली स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

0: केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। श्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जनसांख्यिकी बदलाव पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। गृह मंत्री ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि जहां सीमा पार से आने वाले खतरे महत्वपूर्ण बने हुए हैं, वहीं देश के भीतर ऐसे खतरों में मदद करने वाले आंतरिक तत्वों पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की। बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
1: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
2: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
1: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
0: इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कयम बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिन के दौरे पर सिक्किम पहुंची। उन्होंने ऑर्किडोरियम और नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा किया। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने ऑर्किडोरियम में राष्ट्रपति का स्वागत किया। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 76 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The center has constituted a high

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मधुरिमा आपके लिए स्वागत करती हूं। मैं कुसुम आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं राग देश के गाने। कोई जब गीत बनता है, दिल की बात कहता है, जब कोई सांस बजता है तो जिंदगी का राग बनता है, जब कोई पीर उठती है तो कोई धुन बनती है, और जब मोहब्बत होती है तो दिल गा उठता है। ये गीत

जब प्यार चुपके से होता है ना, तो दिल भी चुप ही रह जाता है। लेकिन दिल की खामोश जुबा को आवाज देता है संगीत, और संगीत के राग उसमें असर पैदा करते हैं। तो गीत हमारी दिल की धड़कनों पर बजने लगता है। राग देश के शास्त्रीय पक्ष की बात करें तो राग देश खमाज थाट से निकला है। इसके आरोह में ग और घ नहीं लगाते हैं, ग और ध नहीं लगाते हैं, जबकि अवरोह में सभी स्वर लगाए जाते हैं। इस प्रकार इसकी जाति अवरो संपूर्ण कही जाती है। राग देश के आरोह में शुद्ध नी और अवरोह में कोमल नी का प्रयोग किया जाता है। इसका वादी स्वर री और संवादी स्वर प है। राग देश को गाने और बजाने का जो समय है वो रात्रि का दूसरा पहर माना जाता है। एक और गीत राग देश पर आधारित आपके लिए।

देखिए, अगर ऐसी कोई आदत है ना, तो ये आदत अभी बदल डालिए, क्योंकि प्यार खुदा की दी हुई नियामत है और इस नियामत को जाया नहीं करते। और वो कहते हैं ना कि जिंदगी यूं भी बहुत कम है मोहब्बत के लिए, रूठ कर वक्त गंवाने की जरूरत क्या है। और अगर फिर भी कोई रूठ जाए ना, तो फिल्म आरजू का ये गीत गाकर मना लीजिए। वैसे ये गीत भी राग देश पर ही आधारित है। लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आरजू का ये गीत आपके लिए।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नब्बे वर्षों की वो मधुर गूंज, अनगिनत आवाजें, अनगिनत एहसास, संगीत, संस्कृति और यादों से सजा आकाशवाणी का सुनहरा सफर,
2: जहां हर कहानी में छुपा है एक दौर, हर आवाज में बसता है अपनापन,
1: जिसमें मिलिए आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानिए रेडियो जगत के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिन्होंने अपनी आवाज और प्रतिभा से पीढ़ियों के दिलों को जोड़ा।
2: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग।

0: और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई D&D ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई D&D ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है मधुरिमा और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ कुसुम। साथियों, शाम धीरे धीरे गहरा रही है, अभी थोड़ी देर में ये रात में बदल जाएगी। कहते हैं कि जब हम अपनी पसंदीदा धुन सुनते हैं ना, तो इससे हमारे शरीर की तंत्रिकाएं शांत होती हैं, जिससे नींद आसानी से आती है। संगीत हमारे मूड को भी बहुत इफेक्ट करता है, ये मूड एलिवेटर है। और इसलिए जब भी आप लो फील करें तो बस अपनी पसंद का संगीत सुन लीजिए, सच में ये आपको फिर से रिचार्ज कर देगा। जी हाँ, फिलहाल एक और गीत राग देश पर फिल्म बैजू बावरा से आपके लिए।

इसी गीत के साथ ही मधुरिमा यहीं तक, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। फिलहाल इस चैनल पर अब आपके लिए होगा स्पोर्ट्स स्कैन।

0: राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियार पन्नीर सेल्वम ने रैपिड और ब्लिट्स खिताब जीते। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हुआ। पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची और विश्व योगासन चैंपियनशिप 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में आयोजित की जाएगी। तो शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को कुश्ती के दांवपेचों के साथ, जहां वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने आज भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्री स्टाइल कैटेगरी में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। जानते हैं आज किन किन भारतीय खिलाड़ियों ने पोडियम पर पहुंचकर तिरंगा लहराया।
1: मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम वर्ग में किर्गिस्तान के ओस्कोनबाई 1 अब्दिस आमतोव को 12-4 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि चंद्रमोहन ने 79 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान की येरखान अबिल को 7-6 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। 92 किलोग्राम कैटेगरी में पुनीत कुमार को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वे फाइनल में किर्गिस्तान के उलुगबेक सोरोनबेकोव के हाथों 12-1 से हार गए। 125 किलोग्राम वर्ग में लकी को भी रजत पदक मिला, जबकि सचिन मोर ने 86 किलोग्राम वर्ग में उज्बेकिस्तान के बोबुरवेक रजम्बोएव को 4-1 से परास्त कर कांस्य पदक जीता। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
0: तो कहा जा सकता है कि लगातार वियतनाम में भारतीय पहलवानों का दबदबा जारी है। और अब कुश्ती की रिंग के बाद चलते हैं क्रिकेट के मैदान की तरफ, जहां आईपीएल का रोमांच अपने चरम पर है। लीग के मुकाबले समाप्त हो चुके हैं और आज पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 12वें ओवर में 3 विकेट खोकर 115 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। आप सभी जानते हैं कि इस मैच का विजेता सीधे फाइनल में पहुंचेगा, जबकि हारने वाली टीम को एलिमिनेटर के विजेता के साथ एक और मौका मिलेगा फाइनल के लिए अंतिम दांवपेच लगाने का। आईपीएल के एलिमिनेटर में कल सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे और दूसरे क्वालिफायर में प्रवेश के लिए अपने जोर आजमाते नजर आएंगे। तो आइए चलिए सुनते हैं दोनों टीमों की तैयारियों का आकलन करती हमारी ये रिपोर्ट।
2: आईपीएल के एलिमिनेटर मुकाबले में कल सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस नॉकआउट मुकाबले का विजेता आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेले जा रहे पहले क्वालिफायर मैच में हारने वाली टीम से खेलेगा। अगर दोनों टीम के इस सीजन में अब तक के प्रदर्शन की बात की जाए तो एसआरएच लीग स्टेज में तीसरे स्थान पर थी, जिसने टीम ने 14 मुकाबलों में से 9 मुकाबले जीते थे। वहीं आरआर 14 मुकाबलों में से 8 में जीत दर्ज कर प्लेऑफ में पहुंची है। दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड मैचों की बात की जाए तो हैदराबाद का पलड़ा काफी भारी है। दोनों टीमों का अब तक 23 बार आमना सामना हुआ है, जिसमें 14 बार बाजी हैदराबाद ने मारी है, जबकि 9 बार राजस्थान के हाथों जीत लगी है। वहीं इस सीजन के दोनों मुकाबलों में राजस्थान को हैदराबाद से हार का सामना करना पड़ा है। दोनों टीमों की तुलना की जाए तो हैदराबाद की मुख्य ताकत उसकी बल्लेबाजी का शीर्ष क्रम है, जिसमें अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन और हेनरिक क्लासन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज शामिल हैं, जिन्होंने अब तक अपने बल्ले से इस सीजन में खूब धूम मचाई है। क्लासन अब तक इस सीजन में 606, ईशान किशन 569 और अभिषेक शर्मा 563 रन बना चुके हैं और शानदार लय में हैं। इनके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी, लियाम लिविंगस्टन और अनिकेत वर्मा मध्यक्रम को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। गेंदबाजी की बात की जाए तो इस विभाग की जिम्मेदारी खुद कप्तान पैट कमिंस के कंधों पर है, जिनको हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा और प्रफुल्ल हिंगे का साथ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अपने अंतिम लीग मैच में मुंबई इंडियंस को हराकर प्लेऑफ में पहुंचने वाली राजस्थान रॉयल्स को सबसे अधिक उम्मीद अपने एक्स फैक्टर युवा वैभव सूर्यवंशी से होगी। वैभव इस सीजन में अब तक 232 की स्ट्राइक रेट से 583 रन बना चुके हैं। यशस्वी जायसवाल भी वैभव का भरपूर साथ देते आए हैं। ऐसे में इस निर्णायक मुकाबले में टीम को इस सलामी जोड़ी से बहुत उम्मीदें होंगी। कप्तान रियान पराग, ध्रुव जुरैल, शिमरॉन हेटमेयर और अनुभवी रविंद्र जडेजा से भी टीम को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। होगी जो टीम को गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों डिपार्टमेंट में मजबूती प्रदान कर सकते हैं। जोफ्रा आर्चर टीम के गेंदबाजी क्रम का नेतृत्व कर रहे हैं जो अब तक इस सीजन में 21 विकेट झटक चुके हैं, जिनको इस मैदान पर रवि बिश्नोई, नंद्रे बर्गर और तुषार देशपांडे से भरपूर साथ मिलने की उम्मीद होगी। ऐसे में दर्शकों को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलने वाला है जहां दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर पर सबकी नजरें होंगी। जो मजबूत बॉलिंग

0: लाइनअप को ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो लीग राउंड के बाद अब आईपीएल तैयार है नॉकआउट के अपने जलवे के लिए, जहां पर देखना होगा कि कल वैभव जीत का सूर्योदय करते हैं या फिर हैदराबाद जीत का अभिषेक करता हुआ नजर आएगा। और अब कार्यक्रम को लेकर चलते हैं चेस के काले सफेद खानों के बीच चली जा रही चालों में, जहां राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंडमास्टर इनियान पनीरसेल्वम ने श्रीलंका में रैपिड और ब्लिट्ज दोनों खिताब जीतकर दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इनियान ने प्रत्येक प्रारूप में 6.5 अंक हासिल करके दोनों वर्गो में चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। रैपिड स्पर्धा में ग्रैंड मास्टर श्रीहरि ने रजत और जीएम मित्राभा ने कांस्य पदक जीता, जबकि बिट्स प्रतियोगिता में ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा ने रजत और श्रीहरि ने कांस्य पदक जीता। मित्राभा ने क्लासिक वर्ग का खिताब अपने नाम किया। उधर नॉर्वे में नॉर्वे शतरंज 2026 की शुरुआत ओस्लो में काफी रोमांचक अंदाज में हुई, जहां आर प्रज्ञानानंदा और विश्व चैंपियन डी गुकेश ने अपने अपने मुकाबलों को ड्रॉ के साथ शुरू किया।
2: भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश दोनों ने अपने अपने पहले क्लासिकल मैच ड्रॉ खेले। इसके बाद हुए आर्मा गेडन ट्राई ब्रेकर में दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और जीत हासिल करके अपने अभियान की बेहतरीन शुरुआत की। वहीं दिव्या ने वर्ल्ड चैंपियन वेन जुन को शिकस्त दी। प्रज्ञानंदा ने आक्रामक प्रदर्शन के साथ ट्राई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया, जबकि गुकेश ने क्लासिकल मुकाबले में विंसेंट कीमर के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। कार्लसन पे फिरोजा की जीत दिन का सबसे अहम नतीजा साबित हुई। महिला टूर्नामेंट में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन जू वेन जुन को दिव्या देशमुख ने ट्राई ब्रेकर में हरा दिया। वहीं बीबी सारा असो बाएबा ने क्लासिकल शतरंज में भारत की नंबर एक खिलाड़ी कुनेरू हम्पी को मात दी। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो भारतीय ग्रैंड मास्टर नॉर्वे में भी अपनी चालों के बीच तमाम नतीजे लेकर के आते हुए, और अब बात करते हैं सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की, जो आज से शुरू हो गया है। जानते हैं आज प्रतियोगिता के पहले दिन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा।
3: स्टार भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी, दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आज पांचवी वरीयता प्राप्त कुसुमा वरदानी को सीधे गेम में हराकर सिंगापुर ओपन में महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई। पूर्व विश्व चैंपियन सिंधु का अगला मुकाबला जापान की रिको गुंजी से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता पुरुष डबल्स जोड़ी भी शुरुआती दौर में चेन जी यी और प्रेस्ली स्मिथ की अमेरिका की जोड़ी को 26-28, 21-15, 21-13 से कर अगले दौर में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी अगले दौर में ली झे हुई और यांग पो स्वान की चीनी ताइपे की जोड़ी तथा ली यू यांग और हुआंग डी की चीन की जोड़ी के बीच होने वाले मैच के विजेता से भिड़ेगी। एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी 65 मिनट तक चले पुरुष सिंगल्स मुकाबले में विक्टर एक्सेलसन के खिलाफ 21-11, 14-21, 12-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उन्नति हुड्डा भी महिला सिंगल्स में टोमोका मियाजाकी के हाथों 14-21, 10-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गयी। महिला डबल्स में भारत की कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंधी भी पाउला लोपेज और लुसिया रोड्रिग्स की जोड़ी से हारकर बाहर हो गयी। अश्विनी भट्ट के और शिखा गौतम भी चांग चिंग हुई और यांग चिंग टुन की चीनी ताइपी की जोड़ी से हार गयी। ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी ने पुरुष डबल्स में भारत के हरिहरन अमसा करुणन और एमआर अर्जुन को हराया, जबकि मिक्स डबल्स जोड़ी में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे पहले दौर के मुकाबले में यांग पो हन और हु लिंग फांग की चीनी ताइपी की जोड़ी से हार गयी। लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय और मालविका बंसोड कल अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैंस।
1: और बैडमिंटन के बाद अब बात करते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस की, जहां इस टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स में भारत के एन श्रीराम बालाजी और मार्सेलो डोमिलिनर ने कॉन्स्टिटेन फ्रेंड जेन और रॉबिन हस की जोड़ी को 6-3, 4-6, 6-3 से हरा दिया है। महिला सिंगल्स में आर्यन सबालेंका का मुकाबला जैसिका के बीच रहा, जिसमें आर्यना ने 6-4, 6-2 से बाजी मारी। भारत के यूकी भावरी और माइकल वीनस की जोड़ी अब से कुछ देर बाद टेनिस कोर्ट में नजर आएगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कहा कि भारत की 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में

0: योगासन को शामिल करने पर जोर दिया जाएगा। ये खेल 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में पहली विश्व चैंपियनशिप के साथ विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं। इस विश्व चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 529 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें 114 सदस्यीय भारतीय दल भी शामिल है। श्री मांडविया ने विश्व योगासन चैंपियनशिप की शुरुआत के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि योगासन 2030 में अहमदाबाद में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में पारंपरिक खेलों का हिस्सा होगा।
1: योग ये हमारे देश की संस्कृति भी है, हमारी जीवन शैली भी है। आज से सदियों पहले योग भारत से निकल के सारे दुनिया में गया है। फिर से योगासना की फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप करके उसको पुनः भारत में एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में आयोजित करेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा। भारत में कॉमनवेल्थ का जब आयोजन करा जाएगा तब उसमें स्वदेशी गेम्स या तो भारतीय स्पोर्ट्स के रूप में योगासना को भी स्थान दिया जाएगा।
0: ये थे खेल मंत्री मनसुख मांडविया। और अब रुक करते हैं रांची का, जहां 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता 2026 कल समाप्त हो गई। सुनते हैं हमारे सहयोगी मुनीश शर्मा की एक खास रिपोर्ट।
2: प्लीज स्टार्ट देव, गुरिंदरवीर सिंह गोज ब्लेजिंग, इट इज गुरिंदरवीर सिंह, इट इज गुरिंदरवीर सिंह, ही ब्लेजेस अवे, दिस इज नॉट फिनिश्ड येट, दैट्स व्हाट ही सेज।
3: गुरविंदर सिंह इस प्रतियोगिता के सबसे चर्चित नाम रहे। गुरविंदर सिंह रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में 10.09 सेकंड में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ पूरी करके स्वर्ण पदक जीतते हुए भारत के सबसे तेज धावक बन गए हैं। गुरविंदर की तरह ही अपनी रफ्तार से ऐसा ही एक ऐतिहासिक कीर्तिमान रचा पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में विशाल टीके ने।
2: सो नाउ द फर्स्ट 10 मीटर्स Vishal TK will push himself. Look out for lane number 4 once again. Vishal TK, he's taken that lead out here. Is this going to be a national record? 45.12. He's going blazing away. Vishal, Vishal, and Vishal it is who takes it away. 44.98.
3: विशाल दिग्गज एथलीट फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 400 मीटर में 45 सेकंड की बाधा को पार करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। विशाल ने 44.98 सेकंड के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। एक और रिकॉर्ड टूटा पुरुषों की पोल वॉल्ट स्पर्धा में, जहां देव मीणा और कुलदीप कुमार ने एक रोमांचक मुकाबले में एक साथ 5.45 मीटर की ऊंचाई पार करते हुए संयुक्त रूप से राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक होने का गौरव प्राप्त किया।
2: And it's a national record. It's a national record at 5.42 meters. It's a national record once again out here at the Birsa Munda Stadium. No emotions at all from this boy. Into the runway like a 707. There he goes into the skies and he knows that the national record is his.
3: इन तीनों कीर्तिमानों ने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में न सिर्फ भारत की बढ़ती हुई धाक को साबित किया है, बल्कि ये बता दिया है कि अब इन खिलाड़ियों की विश्व के कई और स्थापित कीर्तिमानों पर नजर है। स्पोर्ट्स कैन के लिए मुनीश शर्मा।
0: तो अब भारतीय खिलाड़ियों की नजर सट चुकी है ओलंपिक और कॉमनवेल्थ के पोडियम की तरफ। और श्रोताओं, अब समय भी हो गया है आपसे विदा लेने का। आप इस कार्यक्रम पर अपने सुझाव और अपनी राय हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580

0: रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ।
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
6: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बायपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन

0: सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Center constitutes high level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch inter-Pacific maritime surveillance collaboration, condemn terrorism in all its forms and manifestations. Government revises minimum assured procurement price of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. Sports Minister Mansukh Mandviya backs Yogasan for future Olympic Games. Ahmedabad to host first World Yogasan Championship next month. And at Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers Mohit Kumar and Chandar Mohan clinch gold medals in men's freestyle event in Vietnam. And now the news in detail. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in the Home Ministry will serve as the Member Secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said, demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty, but also to national security, law and order, profound changes in social structure, and the preservation of tribal society. A report.
3: the high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shifts at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Redford last year, had announced about the high-level committee on demographic change.
4: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
3: The committee will submit its report within 1 year. If necessary, the tenure of the committee may be extended by up to 6 months. With Anubhav Mishra, this is Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
2: Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in the process of installing anti-drone systems within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sancho border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
5: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
6: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर एरियाज थ्रेट विद इन द नेक्स्ट 6 months. हाउएवर सिंस दीज ड्रोन्स इवेंचुअली लैंड ऑन इंडियन टेरिटरीज वी मस्ट रिमेन हाईली विजिलेंट अबाउट दोज हु मे यूज द मटेरियल्स कैरिड बाय देम फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज. इफेक्टिव न्यूट्रलाइजेशन विल रिक्वायर स्ट्रांग कोऑर्डिनेशन विद सिविल अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस अलॉन्ग विद प्रॉम्प्ट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन एट एवरी लेवल.
5: परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी.
2: मिस्टर शाह सेड स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दोज इन्वॉल्व्ड. ही स्ट्रेस्ड दैट सिंस ड्रोन्स लैंड इन द इंडियन टेरिटरी, क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द लोकल पुलिस एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज एसेंशियल टू आइडेंटिफाई दोज रिसीविंग सच कंसाइनमेंट्स एंड टू न्यूट्रलाइज द थ्रेट्स इफेक्टिवली. Quad Nations today launched the Inter-Pacific Maritime Surveillance Collaboration aimed at strengthening the coordination in maritime surveillance. Addressing a press conference in New Delhi after the conclusion of the meeting, Additional Secretary in the Ministry of External Affairs, K. Nagaraj Naidu, said, Foreign ministers strongly condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. He said that in the joint statement, terrorist attack in Pahalgam was condemned. Mr. Naidu said the meeting reaffirmed Quad's commitment to a free and open Indo-Pacific.
7: The meeting reaffirmed the Quad's commitment to a free and open Indo-Pacific and emphasized that the Quad continues to evolve as a practical and an action-oriented platform, delivering tangible benefits for the region. Discussions focused around four pillars of Quad cooperation. The first pillar is maritime and transnational security. Two, economic prosperity and security. Three, critical and emerging technologies, and four, humanitarian assistance and disaster response.
2: The Quad Foreign Ministers meeting joint statement said the Quad nations discussed the situation in West Asia and reaffirmed support for

0: मंथन।
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम मंथन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। भारत में पोषण से स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में हाल ही में सेहत मिशन की शुरुआत हुई और आज हम सेहत मिशन के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज हम सेहत मिशन पर दो विशेषज्ञों से विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में उप महानिदेशक डॉ डी के यादव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में सीनियर साइंटिस्ट डॉ प्रियंका बंसल। तो हाल ही में लॉन्च हुए सेहत मिशन पर हम बात करने के लिए अब सीधे जुड़ रहे हैं डॉक्टर डी के यादव, फसल विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका।
2: धन्यवाद।
1: साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेहत का पूरा फुल फॉर्म है और इसमें जो हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि हम किस तरह से खेती के जरिए, फसलों के जरिए सेहत में पोषक तत्वों को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं सेहत मिशन में खेती के रोल को और किस तरह से इसमें आपकी भूमिका है?
2: सेहत मिशन का जिस तरह से आपने भी जो इलोबरेट करके बताया कि साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप जानते हैं भली भांति जो हमारा भोजन का जितना

0: भी सप्लाई है उसमें कृषि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और हम विभिन्न खाद्य फसलों में, जो बागवानी फसलों में किस्मों का विकास करते हैं, जो
1: जी
0: हमारे भोजन का हिस्सा बनती हैं, तो उनके द्वारा किस तरह से हम हमारे हेल्थ को सुधार सकें, किस तरह से आम जन का जो स्वास्थ्य संबंधित बहुत सी, जैसे हम बात करें कुपोषण की समस्या है, न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है, तो एक बड़ी भारी, ना कि भारत में, पूरे विश्व में एक बड़ी समस्या है। तो उस समस्या को कृषि के द्वारा किस तरह से हम एक तरह से उसको एड्रेस करें, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पोषण कार्यक्रमों के द्वारा और जिस तरह का सेहत पर जो आम जन के असर पड़ता है, तो उससे देश को काफी, जो जीडीपी में काफी नुकसान होता है, और उस नुकसान को किस तरह से कम करें। और जो भी हमारे आम जन है, चाहे वो खेतिहर मजदूर है, चाहे किसान है, सभी को कहीं ना कहीं इम्बेलेंस न्यूट्रिएंट्स की वजह से, कुपोषण की वजह से उनकी जो क्षमता है या बीमारी पकड़ने की जिस तरह की एक टेंडेंसी रहती है, वो अधिक रहती है। तो इस मिशन का मेन मुद्दा यही है कि जैसे जो कृषि में हमने जिस तरह से पोषण युक्त विभिन्न किस्में उत्पन्न की, उन किस्मों को किस तरह से हम आमजन तक ले जाएं, और उसको ले जाने के बाद उसका क्या इम्पैक्ट होता है।
1: जी
0: सेहत मिशन के द्वारा जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद है, तो उन दोनों का जो एक कोलोबरेशन हुआ है, तो उसमें एक तरह से हमने चार पांच मुद्दे उसमें रखे हैं, जिसमें एक जो मुख्य मुद्दा है, इसमें एक कंपोनेंट है कि पौधों और पशुओं से मिलने वाले बायोफोर्टिफाइड प्रोडक्ट का स्वास्थ्य पर असर। तो इसमें जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो बायोफोर्टिफिकेशन का कार्य सिर्फ फसलों में ही नहीं है, जैसे खाद्य फसलों और बागवानी में, उसमें हम पशुओं में, मछलियों में भी उस पर कार्य कर रहे हैं, और उससे किस तरह से हमारे दिन प्रतिदिन के भोजन में जो
1: जी
0: हमारी
1: जी
0: न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो, तो उसके लिए इसमें अध्ययन हम आईसीएमआर के साथ मिलकर करेंगे। तो उसमें जो हमारा मुख्य जो उद्देश्य होगा कि किस तरह से ज्यादा बायोफोर्टिफाइड किस्में पैदा करें, और इन किस्मों को किस तरह से हम आम जन तक, जो हमारी फूड चेन में ले जाएं। उसके बाद जो आईसीएमआर का जो मेन मुद्दा, जो उनके रिसर्च के कंपोनेंट रहेंगे, उसमें एक बायो अवेलेबिलिटी का इश्यू होता है कि आपने किसी किस्म में आपने कहा कि वे जो प्रोटीन है वो 12% है, गेहूं में जैसे हम कहते हैं 12.5% है, और आमतौर पर जो गेहूं में प्रोटीन 8 से 9% होता है, तो 12.5% की बायो अवेलेबिलिटी कितनी है कि भाई वो जो भी कंज्यूमर उसको खाता है उसका एक्चुअल में अवेलेबिलिटी उसको कितनी होती
1: कितना
0: है,
1: है।
0: उस तरह की स्टडी हमारे सिस्टम से हम नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से बायोमार्कर का रिस्पॉन्स क्या आता है, और उसका ओवरऑल हेल्थ पर उनके नतीजे जो आते हैं उनका मूल्यांकन कैसे
1: जी
0: करें कि
1: जी
0: भाई आपका नॉर्मल भोजन करता है और उसमें जो बायोफोर्टिफाइड जो भोजन करता है तो उससे कितना उसके हेल्थ पर उसका असर पड़ता है, उसकी स्टडीज हम आईसीएमआर के साथ मिलकर साइंटिफिक तरीके से करेंगे।
1: जी आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वो कौन सी किस्में या फसलें हैं जिन पर काम हो रहा है जिससे कि ज्यादा मात्रा में पोषण मिल सकता है, और बायोफोर्टिफाइड फसलों के उन किस्मों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, और खास तौर पर किसान उन फसलों को पैदा करने की ओर प्रोत्साहित हों इस बारे में भी क्या कुछ आईसीएआर की तरफ से कुछ काम हो रहा है।
0: हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने ये प्रश्न पूछा। अभी हम हाल में जो है 16 खाद्यान्न फसलों में और 16 ही बागवानी फसलों में बायोफोर्टिफिकेशन पर कार्य कर रहे हैं। तो जो उसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि जिन जिन फसलों में, जैसे जो आमतौर पर जितने भी पोषक तत्व, जैसे प्रोटीन है, आयरन, जिंक है, और कुछ एक में जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं उनको भी रिमूव करने का, क्योंकि उनका भी स्वास्थ्य पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो अभी तक हमने पिछले जो 11 वर्षों में 203 बायोफोर्टिफाइड किस्मों का विकास किया, जिसमें जैसे मैंने बताया 16 खाद्य फसलों की 187 किस्में हैं, जिसमें चावल की 16 किस्में हैं, गेहूं की 70 हैं, जौ की 1 है, मक्का की 43 हाइब्रिड्स हैं, बाजरा के 18 हाइब्रिड्स हैं, रागी के 4 हैं, कुटकी की 2 किस्में हैं, कंगनी की 1 है, और मसूर की 2, तथा चना और फवाबीन की 1-1 किस्म है।
1: अंत में थोड़ा सा ये भी बताएं कि किसानों तक इनके बीजों को पहुंचाने के लिए, किसान इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित हों, इस मामले में क्या कुछ किया जा रहा है।
0: इस मामले में हमने निश्चित रूप से पिछले, ये माननीय आपके 8-9 वर्षों में काफी प्रयास किए। तो बीज का जब किसान तक बीज जाता है तो उसकी पहली श्रेणी होती है प्रजनक बीज का उत्पादन, जो कि हमें विभिन्न राज्यों से और सीड प्रोडक्शन

0: एजेंसी से उसको आईसीआर में प्राप्त होता है मिनिस्ट्री के द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा। तो उनको हम जितनी भी बायोफोर्टिफाइड किस्में हैं, जब हम इसका स्टेट का सीड रोलिंग प्लान बनाते हैं, जो ब्रीडर सीड के लिए जब डिस्कशन होता है, स्टेट्स की सीड एजेंसी, प्राइवेट सेक्टर और जितने भी जो बीज उत्पादक होते हैं, पब्लिक एनजीओ है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, तो हम उनसे डिस्कस करते हैं। और हमारा एक यही प्रयास रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा बायोफोर्टिफाइड किस्मों के इंडेंट दें ब्रीडर सीड उत्पादन के लिए। उसके अलावा जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का, उसमें भी एनएफएसएम में भी जो बायोफोर्टिफाइड किस्मों के लिए एक विशेष उसको प्रोत्साहन देने के लिए एक घटक रखा गया है, ताकि किसानों के पास ज्यादा से ज्यादा उसका बीज पहुंचे। फार्मर्स के लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम जितने भी दूरदर्शन के द्वारा, रेडियो के माध्यम से, और हमारे केवीके जो काम करते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, कृषि विश्वविद्यालय है, आईसीआर के इंस्टीट्यूट, तो हमारा प्रयास रहता है कि हम बायोफोर्टिफाइड किस्मों के बारे में किसानों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें और उनका बीज पैदा कर किसानों तक पहुंचाएं।
1: बिल्कुल, तो आईसीएमआर और आईसीएआर की जो ये संयुक्त पहल है प्रिवेंटिव हेल्थ की, कि पोषण के जरिए हम अपने स्वास्थ्य को मजबूत करें देश भर में, तो इस पहल के हमें निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में वो सकारात्मक नतीजे जरूर दिखेंगे। जिस तरह से अभी हमने डॉक्टर डीके यादव के साथ चर्चा की कि किस तरह से बायो फोर्टिफाइड फसलों के जरिए हमारे शरीर तक पोषण को पहुंचाने का काम अब तेजी से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर डीके यादव, आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को सेहत मिशन के जो एग्रीकल्चर का पहलू है, खेती का पहलू है, उसके बारे में विस्तार से बताया।
0: धन्यवाद।
1: हम बात करने जा रहे हैं इस सेहत मिशन पर डॉक्टर प्रियंका बंसल के साथ। डॉक्टर प्रियंका बंसल आईसीएमआर में सीनियर साइंटिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर प्रियंका बंसल, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि सेहत मिशन में प्रिवेंटिव हेल्थ पर ज्यादा फोकस किया गया है, कि बीमारी से पहले ही देश इतना स्वस्थ हो जाए कि पूर्ण पोषण के जरिए गंभीर बीमारियों तक हम ना पहुंचे, तो कैसे आप देखती हैं इस मिशन के मकसद को?
2: आपने बिल्कुल सही बोला है कि सेहत मिशन पे हम प्रिवेंटिव की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, जहां पे हम ये कह रहे हैं कि लोग जहां बीमार होने से पहले ही हम किस तरीके से उनके लाइफस्टाइल में, उनके जीवन के तरीके में हम चेंजेस ला पाएं जो उनको हेल्थ की तरफ ले जाए।
1: जी
2: तो अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो जो ये सेहत मिशन है, इसकी सोच बहुत सरल है, जो कहती है कि जैसा भोजन वैसा मन और वैसा तन। तो हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता के लिए, जो हमारे देश के लोग हैं, हम उनकी थाली को अधिक पौष्टिक कैसे बना पाएं। तो जो हम खाना खाते हैं, हम उसी खाने को, उनको कुछ अलग से नहीं करना पड़े, मगर हम उसी खाने में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषण तत्व हैं, उसको कैसे बढ़ा पाएं। और इसी सोच के साथ ये सेहत मिशन स्टार्ट किया गया है। एक संयुक्त राष्ट्र का मिशन है, जिसमें आईसीएआर जो है वो अपने बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स और अपनी फसलें बनाएंगे जिनमें पोषक तत्व ज्यादा हैं, और उन्हीं चीजों को हम, उनका जो वैज्ञानिक प्रमाण है कि उनका स्वास्थ्य पे लाभ क्या होता है, वो आईसीएमआर टेस्ट करेगा, और जिससे कि हमारे को पता चले कि कौन सा खाना, कौन सी क्रॉप, कौन सा इनोवेशन जो एग्रीकल्चर में हुआ है, हम उसको बेहतर हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर प्रियंका बंसल, कुपोषण के हमारे सामने पहले बड़े आंकड़े आते रहे थे, और अब सरकार के पोषण अभियान पहल और तमाम पहलों के जरिए कुपोषण को हम धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। सेहत मिशन भारत में कुपोषण को खत्म करने में किस तरह से भूमिका निभाएगा, और साथ ही जो देश में हम सभी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पाई जाती है, इस तरह की समस्या को दूर करने में भी सेहत मिशन की किस तरह से भूमिका होने वाली है?
2: सरकार के जितने भी उन्होंने प्रयत्न करे हैं, उससे हम धीरे धीरे कुपोषण के अगेंस्ट लड़ पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं और उसको कम कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ ये भी एक सच बात है कि हमारे देश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, मोटापा है, ये सब बढ़ रहा है। तो इन्हीं चीजों के लिए ये सेहत मिशन बना है। जैसे मैंने बोला कि इसमें हम क्या करेंगे, जो पोषक फसलें हैं, बेहतर आहार प्रणालियां हैं, इन सबको हम टेस्ट करेंगे और हम ये देखेंगे कि इनको हम अपने राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रभावी ढंग से कैसे शामिल कर सकते हैं। जो हमारे देश में इतने राष्ट्रीय कार्यक्रम है, चाहे वो कुपोषण को लेकर है, अनीमिया को लेकर है, उनमें हम क्या बदलाव ला सकते हैं फूड से रिलेटेड, जो कि सेहत हमें बताएगा और इससे हम अनीमिया, कुपोषण और गैर संचारी रोगों की रोकथाम में हमें मदद मिलेगी। तो सरल शब्दों में स्वस्थ खेत से स्वस्थ भारत हमारा मिशन है।
1: जी, तो जो स्वास्थ्य के मानक हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले

0: जिलों में सेहत मिशन के जरिए उसमें हम सुधार देख पाएंगे, जिससे कि सूक्ष्म पोषण लोगों तक जब इस मिशन के जरिए पहुंचेगा तो क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है भविष्य में?
1: मुझे पक्का यकीन है कि इस मिशन से और इससे जो हम डेवलप कर पाएंगे फसलें या मॉडल, हम किस तरीके से फार्मर्स की हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं, किसान भाइयों की हम हेल्थ पे भी इस मिशन के अंडर काम कर रहे हैं, तो इससे जो मुझे लगता है कि एक तो हम माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जिसकी आपने भी बात की थी, चाहे वो आयरन हो, विटामिन डी है, कैल्शियम है, जिसमें हमारे देश में कई लोगों में कमी पाई जाती है, हम उसको एड्रेस कर पाएंगे। और अनीमिया या जो भी आप माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की बात करते हैं, वो हमें उस तरीके से दिखती नहीं है, मगर वो हमारी वर्क प्रोडक्टिविटी, हमारा जो डेली का रहना सहना, काम, इन सबको इफेक्ट करता है, उसको कम करता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हम ये मानते हैं कि इस मिशन से हम उसको रोक पाएंगे, उसको कम कर पाएंगे डेफिशिएंसी को। दूसरा, कुपोषण को हम इससे देख पाएंगे। और तीसरा जो हमारा बड़ा एक इसमें हम जो देख रहे हैं वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को। हम इसमें इस तरीके का देख रहे हैं कि क्या कोई फसल ऐसी है जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिससे आपका जो खून में शुगर की मात्रा है वो पता चलती है, वो आपकी कम रेज हो उसको खाने से, या फिर आपका जो रक्तचाप है वो कम हो उस चीज को खाने के लिए। तो हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हमारे देश में अभी बढ़ते हुए की तरफ है, वो हम किस तरीके से कम कर पाए।
0: हमने अभी थोड़ी देर पहले बातचीत की थी ICAR के उप महानिदेशक, जिन्होंने हमें बताया था कि किस तरह से फसलों के जरिए पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जाएगा। हम ICMR की भूमिका के भी बारे में थोड़ा संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि तकनीक के स्तर पर या चिकित्सा के स्तर पर ICMR की क्या भूमिका होने वाली है इस मिशन में।
1: देखिए, जैसे कि आपको यादव सर ने बताया कि ICAR ने क्रॉप्स बनाए हैं, फसलें बनाई हैं, जो कि नॉर्मल फसलों से ज्यादा पौष्टिक हैं, मगर उनका जो हमारे देश में और हमारे देश के राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है उसमें वो नहीं आ पाए हैं अभी तक। उसका रीजन ये है कि उसके साथ वैज्ञानिक प्रमाण नहीं जुड़ पाया है कि इसका स्वास्थ्य में लाभ क्या है। कि फसल तो बन गई, मगर उनको लोगों को खिलाकर उसका जो असर देखना है कि क्या असर हुआ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे, कुपोषण पे, वो हमारे पास अभी सीमित है। तो इस मिशन में ICMR का रोल है वो वैज्ञानिक प्रमाण को निकालना, उसको एविडेंस को जनरेट करना कि इसका स्वास्थ्य लाभ क्या है। तो हमारी जो भूमिका है, क्योंकि ICMR का जो रोल है वो यही है कि हेल्थ का, स्वास्थ्य का एविडेंस जनरेट करना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कितना खाना चाहिए, ये हम सेहत में इसी उस पे चलेंगे।
0: बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रियंका बंसल, आप कार्यक्रम में जुड़ी।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल News on AIR Official और हमारे मोबाइल ऐप News on AIR पर भी सुन सकते हैं। मंथन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौती से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि भी इस समिति के सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय ने संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। श्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीनों के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवन

0: संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मिस्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा देशों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
2: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
1: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की भी निंदा की है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ताओं मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। बोर्ड ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में भी पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ. मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्री स्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in the Home Ministry will serve as the Member Secretary in the committee. Mr. Shah said, infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty, but also to national security, law and order, profound changes in social structure, and the preservation of tribal society. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in the process of installing anti-drone systems within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanchu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country. Mr. Shah said strict legal action should be taken against

0: आर्थिक गलियारे यानी CPEC को उसकी परियोजनाओं का कड़ा विरोध करता है जो भारत के संप्रभु क्षेत्र में आती हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में चीन और पाकिस्तान को भारत का रुख कई बार स्पष्ट बताया जा चुका है। प्रवक्ता ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने चीन और पाकिस्तान के बीच तथाकथित सीमा पार जल संसाधन सहयोग का भी उल्लेख किया। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 के तथाकथित सीमा समझौते को कभी नहीं मान्यता दी है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेसवार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
2: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
2: As democratic nations,
3: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
2: Will become even more important to the world.
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क के सदस्य देशों को निवेश और आर्थिक नीतियों के बेहतर समन्वय में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि अमेरिका इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा।
4: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
1: बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। श्री के नागराज नायडू ने कहा कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
5: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ।
6: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
5: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
1: ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। बातचीत में रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे। प्रधानमंत्री ने जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। विदेश मंत्री ने कहा कि ये समझौता

0: चिली और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करेगा, दोनों देशों को वित्त पोषण में सहयोग करने में मदद करेगा और महत्वपूर्ण खनिजों तथा दुर्लभ मृदा तत्वों के प्रभावी प्रबंधन में भी सहायक होगा। ईरान ने अमेरिका के दक्षिणी ईरान में हवाई हमलों की निंदा करते हुए इसे विश्वासघात और अविश्वसनीयता का संकेत बताया है, जबकि पश्चिम एशिया में संघर्ष को समाप्त करने के लिए संभावित समझौते की दिशा में बातचीत जारी है। हालांकि अमेरिका ने इसे अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा करार दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने हमलों को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया और चेतावनी दी कि अमेरिका को इसके परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम एशिया में कई मोर्चों पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। लेबनान में इजरायली सेना ने बेका घाटी में हमले तेज कर दिए हैं, जिसमें कम से कम 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि 45 दिनों का युद्ध विराम अभी भी तकनीकी रूप से प्रभावी है। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्ला के खिलाफ कड़े प्रहार करने की बात कही है। वहीं हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल में जवाबी हमले किए हैं। गाजा में अलग अलग इसराइली हवाई हमलों में 7 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इस बीच कतर में जारी बातचीत से संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता धीरे धीरे आकार लेने लगा है। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे प्रमुख मुद्दों पर मतभेद अभी भी बना हुआ है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। डॉ मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल कैटेगरी में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। वियतनाम के दानांग में आयोजित प्रतियोगिता में मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम वर्ग स्वर्ण पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने चीन पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर के अनुचित उल्लेखों को सख्ती से खारिज किया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग पहल शुरू की। भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए अहम समझौते पर हस्ताक्षर। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया और वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज ट्यून इन किया है आपने। हर श्रृंगार में अर्पना आप सभी का स्वागत करती है, प्यार भरा नमस्कार मेरा स्वीकार करें। वक्त हो गया है 10:31:17। तो चलिए आज का हर श्रृंगार शुरू करते हैं कविता कृष्णमूर्ति, मनहर उदास और सुखविंदर सिंह की आवाज के साथ। सौदागर फिल्म से ये गीत आप सभी का एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हर श्रृंगार आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जी हाँ, कुछ सौदे ऐसे ही खूबसूरत होते हैं अगर बात हो दिल लेने और देने की। और बात ही हो रही है खुशियों की, क्योंकि मोहब्बत की बात है तो खुशियों की बात जरूर निकलेगी। मेरी हर खुशी का रास्ता तुम्ही से होकर जाता है, मेरा हर लम्हा सिर्फ तुम्हारे साथ ही मुस्कुराता है। तुम सिर्फ मेरे प्यार ही नहीं, मेरी जिंदगी का सुकून हो। इस दिल की हर एक धड़कन में तुम ही छिपे हो। अगला गीत धड़कन फिल्म से अभिजीत और अलका की आवाज में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: बहुत खूबसूरत है मेरे ख्यालों की दुनिया, बहुत खूबसूरत है मेरे ख्यालों की दुनिया, बस तुम से शुरू और तुम पर ही खत्म है। जी हाँ, ये बातें तो कभी खत्म नहीं होती, ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है क्योंकि आप जुड़े रहते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड 100.1 MHz के संग। आज आप सुन रहे हैं हर श्रृंगार और हर श्रृंगार में मैं हूं आपके साथ अर्पना। 10:46 हो चुके हैं। अगला गीत एक बार फिर से अभिजीत की आवाज है, फिल्म का नाम है जोश।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज, दामनी फिल्म से ये गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, गीतों का असली जादू यही है कि गीत संगीत हमारे दिल की गहराइयों को आसान शब्दों में खूबसूरती से पेश कर देते हैं, और जब बात प्यार की हो तो ये रिश्ता और भी खास हो जाता है। प्यार को शब्दों में बांधना मुश्किल है, पर गीत उसे एहसास को बहुत ही आराम से गीतों से माध्यम से महसूस करवा देते हैं कि हमारे दिल में आखिरकार सामने वाले के लिए है क्या। फिलहाल वक्त हो गया है 10:51 नहीं 55 मिनट हो चुके हैं जनाब, तो लीजिए इसी के साथ 10:55 और 40 सेकंड हो चुके हैं। अगला गीत होगा खूबसूरत फिल्म से कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, और इस गीत के बाद आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर समाचार। 11:10 पर होगा गीत मेरे मन में, तो आपके संग रहूंगी मैं अर्पना। फिलहाल आप लीजिए इस गीत का आनंद और इसके बाद समाचार जरूर सुनिएगा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये बात कही।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।

0: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The Centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner, along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1, in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in a process of installing anti-drone system within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanchu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
3: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर एरियल थ्रेट विद इन द नेक्स्ट 6 months. हाउएवर सिंस दीज ड्रोन्स इवेंचुअली लैंड ऑन इंडियन टेरिटरीज वी मस्ट रिमेन हाईली विजिलेंट अबाउट दोज हु मे यूज द मटेरियल्स कैरिड बाय देम फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज. इफेक्टिव न्यूट्रलाइजेशन विल रिक्वायर स्ट्रांग कोऑर्डिनेशन विद सिविल अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस अलॉन्ग विद प्रॉम्प्ट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन एट एवरी लेवल.

गीत मेरे मनमीत में आप सभी का स्वागत करती है अर्पना। और वक्त हो गया है 11:11 आपने ट्यून इन किया हुआ है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz से। ये तो चलिए गीत मेरे मनमीत की शुरुआत करते हैं आनंद बख्शी के लिखे गीत के साथ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, किशोर कुमार की आवाज में होगा ये गीत, फिल्म का नाम है कर्ज। और इसके बाद आप सुनेंगे इंदीवर का लिखा गीत, राजेश रोशन का संगीत, नितिन मुकेश और साधना सरगम की आवाज में गीत होगा, फिल्म का नाम है खून भरी मांग। तो इन दो गीतों का आप आनंद लीजिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड 100.1 MHz गीत मेरे मनमीत में। आज आपके साथ है अर्पना। 11:11 और 40 सेकंड हो चुके हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ग्यारह बजकर 27 मिनट और 6 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत। अगले दो गीत जो है उनके बारे में आपको कुछ बता दूं। आनंद

बख्शी का लिखा हुआ एक और गीत होगा। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, आवाज है अनुराधा पौडवाल और मनर उदास की, और फिल्म का नाम है हीरो। और इसके बाद आप सुनेंगे अगला गीत, एक बार फिर से राजेश रोशन का संगीत होगा, इंदीवर के लिखे हुए बोल होंगे, आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की होगी। फिल्म का नाम है कामचोर। इन दो फिल्मों से आप गीत सुनेंगे, गीत मेरे मनमीत में।

0: 90 वर्षों की वो मधुर गूंज, अनगिनत आवाजें, अनगिनत एहसास, संगीत, संस्कृति और यादों से सजा आकाशवाणी का सुनहरा सफर,
1: जहां हर कहानी में छुपा है एक दौर, हर आवाज में बसता है अपनापन,
0: जिसमें मिलिए आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानिए रेडियो जगत के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिन्होंने अपनी आवाज और प्रतिभा से पीढ़ियों के दिलों को जोड़ा।
1: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत। 11:45 और 35 सेकंड हो चुके हैं। आज गीत मेरे मनमीत में आपके संग है अर्पना। अगला गीत जो आप सुनेंगे वो है विशाल भारद्वाज का संगीत है, गुलजार के लिखे बोल है, लता जी की आवाज में होगा माचिस फिल्म से गीत, और इसके बाद होगा 1982 में आई फिल्म डायल 100 से गीत। कुमार इसके आवाज जो है वो है किशोर कुमार की है, महेंद्र कपूर ने इनका साथ दिया है, और इसके अलावा संगीत की बात करें तो संगीत है बप्पी लहरी का। तो आप इस गीत का आनंद लीजिए, दोनों गीतों का बल्कि मैं कहूंगी कि आनंद लीजिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

जी हाँ दोस्तों, रात को नींद कैसे आ सकती है जब गीतों का ऐसा सिलसिला चल रहा हो आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अगला गीत आप सुनेंगे उत्सव फिल्म से, लता जी और आशा जी की आवाज में होगा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ये संगीत है और इस खूबसूरत गीत के साथ ही अर्पणा को दे इजाजत। उत्सव फिल्म के इस गीत के बाद आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अर्पणा चाहेगी इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी ने छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया। एनआईए के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुसूचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपीलों पर अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 92 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah yesterday said the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner along with former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary for Nurse 1 in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. Home Minister Amit Shah has said that the government is in the process of installing anti-drone systems within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanshu border outpost in Rajasthan's Bikaner district yesterday, the Home Minister said that while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
3: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर एरियाज थ्रेट विद इन द नेक्स्ट 6 months. हाउएवर सिंस दीज ड्रोन्स इवेंचुअली लैंड ऑन इंडियन टेरिटरीज वी मस्ट रिमेन हाईली विजिलेंट अबाउट दोज हु मे यूज द मटेरियल्स कैरिड बाय देम फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज. इफेक्टिव न्यूट्रलाइजेशन विल रिक्वायर स्ट्रांग कोऑर्डिनेशन विद सिविल अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस अलॉन्ग विद प्रॉम्प्ट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन एट एवरी लेवल.
1: परिणाम लक्षी कार्यवाही ही भी हमने करनी पड़ेगी.
2: एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉ एस जयशंकर चेयर्ड द कोड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन द न्यू दिल्ली यस्टरडे. फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पेनी वोंग, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जापान तोशी मित्सू मोतगी एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो अटेंडेड द मीटिंग. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. S. Jayashankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. He said that the Quad nations are open societies who foster innovation and creativity in the quest of growth for prosperity. Foreign Affairs Minister of Australia Penny Wong has called on Prime Minister Narendra Modi in New Delhi. In a social media post yesterday, Mr. Modi discussed the growing India-Australia comprehensive strategic partnership in areas such as defence, trade, technology and ensuring supply chain resilience. The Prime Minister said India and Australia will continue to work for a free, open, secure and prosperous Indo-Pacific. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar co-chaired the 17th Foreign Ministers Framework Dialogue with his Australian counterpart Penny Wong in New Delhi last evening. In a social media post, Dr. Jayashankar said they exchanged views on the Indo-Pacific, the situation in West Asia and other regional, global and the multilateral issues. They also reviewed the steady progress of the comprehensive strategic partnership between the two nations. India and Romania held the second meeting of the Joint Committee on Defence Cooperation in New Delhi to further strengthen bilateral defence ties yesterday. The meeting reviewed ongoing defence cooperation and discussed ways to expand collaboration in key areas. The two sides finalised a bilateral defence cooperation plan covering cyber defence and military medical cooperation. A special court has remanded the 15 more individuals to National Investigation Agency custody till 5th of the next month in connection with the attack on judicial officer in Mothabadi, Malda, West Bengal. The accused were arrested during a series of raids conducted by the central agency in Mothabadi and its adjoining areas. The Royal Challengers Bengaluru stormed into the final of the IPL 2026, beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier one match at Dharamshala tonight. And that's the end of the news bulletin.

जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज की रात आपके साथ मैं हूँ माधुरी। कार्यक्रम है निशिगंधा, जहाँ जिंदगी की हर धड़कन सुनाई देती है। आज हम बात करेंगे जिंदगी की उस हकीकत की, जिससे रोज अंदर ही अंदर हम लड़ते हैं। बजाहिर हम दिखते खुश हैं, शायद हो भी, पर हम आज बात कर रहे हैं उस कश्मकश की जो हमें अपनों से दूर कर रही है, हमें अपने अपने अजनबी बना रही है। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? अगर हैं तो जुड़ जाइए ना हमारे साथ, देखते हैं क्या हल निकलता है इस कश्मकश से निकलने का।

आर डी बर्मन का संगीत था, किशोर कुमार की आवाज और फिल्म आपकी कसम का ये गीत सुना आप सभी ने। और आज हमारा जो मौजू है थोड़ा सा भावनात्मक भी है और थोड़ा मुश्किल सा मौजू भी है और हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है ये, लेकिन क्या करें, हकीकत का सामना तो करना पड़ेगा ना। आज का जो समय है ना, उसमें एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है, जो हमारे खून के रिश्ते हैं उसके बावजूद हमारी आपस में एक दूसरे के लिए अजनबियत जो है वो बढ़ती जा रही है। घर में ही ले लीजिए, चाचा चाची, ताया ताई, भाई बहन, सभी एक ही परिवार के सदस्य एक ही छत के नीचे बैठे होते हैं, फिर भी उनके बीच भावनात्मक दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है। ये दूरी भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक है। हम अपने अपनों को खोते जा रहे हैं और उन्हें अपने अपने अजनबी बना रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि गलती किसकी है, कौन है यहाँ बेवफा।

जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। ये सफर है निशिगंधा का और हम आज बहुत ही अपनी खास बात कर रहे हैं, अपने अपनों के दिलों का हाल जानने की कोशिश में आज हम निकल पड़े हैं। देखिए ना, आज की जो व्यस्त जीवन

शैली है, नौकरी की भागदौड़ है, शहरों का अलगाव और फिर सोशल मीडिया का प्रभाव, इससे हमारे जो रिश्ते हैं ना वो कमजोर हो रहे हैं। रविवार की एक छोटी सी फैमिली पार्टी ही को ले लीजिए। किसी शादी का उत्सव में जब सब इकट्ठे होते हैं तो मेज पर चाय नाश्ता चल रहा होता है, बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन बड़े लोग अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। अगर किसी ने पूछ भी लिया बेटा नौकरी कैसी चल रही है तो सामने से जवाब मिलता है, ठीक है चाचा, बस बात खत्म। कोई गहराई नहीं, कोई दिल से पूछताछ नहीं। ताई ने अगर बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछ लिया तो सामने से जवाब में एक औपचारिक मुस्कान आ जाती है। सब एक दूसरे को देखते हैं लेकिन देख नहीं पाते। क्या आपसी प्यार इतना हल्का होकर रह गया है? क्या हम अपने आप में सिमटते जा रहे हैं? मेरा कमरा, मेरा फोन, मेरा लैपटॉप, मेरी शर्ट, मेरा जूता। पहले हम अपनी चीजें बांट लिया करते थे, अब अपना अपना करने लगे हैं। क्या कहीं हम में बदलाव आ गया है? अगर है तो हमें फिर से बदलने की जरूरत है। प्यार की कहानी दो लफ्जों की है तो क्यों ना उसे पढ़ा जाए, समझा जाए और अपने आसपास उसे आजमाया जाए।

आशा जी की आवाज में द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से ये गीत सुन रहे थे आप, और साथ में शरद कुमार की आवाज भी थी और अमिताभ बच्चन की भी आवाज आपको इस गीत में सुनने को मिली होगी। बात कर रहे हैं निशिगंधा में आज अपने अपने अजनबी हो जाने की। ये जो अजनबीपन बढ़ रहा है आपसे रिश्तों में, इसका एक तो सबसे बड़ा कारण जो नजर आ रहा है वो है समय की कमी। लोग आज इतने व्यस्त हो गए हैं कि परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल होता जा रहा है। चाचा शहर के एक छोर पर रहते हैं तो ताया दूसरे राज्य में। मिलना सिर्फ फेसबुक पर वो जो हैप्पी बर्थडे वाली शुभकामनाएं हैं ना, उन्हीं तक सीमित हो गया है। दूसरा, आप समझिए कि आर्थिक असमानता भी एक कारण है। एक भाई की आय अच्छी है तो दूसरे की कम। इससे आपसी रिश्तों में ईर्ष्या, तुलना और जो है दूरी भी पैदा हो रही है। कभी कभी पुरानी बातें, संपत्ति के झगड़े या फिर शादी के लिए गए फैसलों पर भी मतभेद रिश्तों में दरार डाल देते हैं। बात सुनने में अच्छी नहीं लगती पर यह सच है, हम आज किसी को भी समझना नहीं चाहते और बिना समझे ही सामने वाले के लिए धारणा बना लेते हैं, और सब बिगड़ जाता है जब हम उसी धारणा में जीने लगते हैं बिना एक दूसरे को सुने, बिना किसी को समझे।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये निशिगंधा का सफर है जिसे लेकर मैं माधुरी हूँ आज की रात आप सभी के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं निशिगंधा में अपने अपने अजनबी की। जी हाँ, हर घर में ऐसा एक कश्मकश जो है वो आ ही गई है कि हम अपने अपने अजनबी होते जा रहे हैं। अच्छा, इसका एक पहलू ये भी है कि आज के युवा इस अजनबीपन को और बढ़ा रहे हैं। वो अपने दोस्तों और सोशल सर्कल से ज्यादा जुड़ गए हैं, घर वालों से ज्यादा उन्हें अहमियत देते हैं। घर पर चाचा चाची आए तो बस हेलो हाय और बाय। उनकी समस्याएं यानी कि चाचा चाची की बातें, उनकी समस्याएं

उनके अनुभव सुनने के लिए आज के युवाओं में इच्छा ही नहीं रही है। पर सारा दोष जो है युवाओं पर नहीं डाला जा सकता, शायद हमने भी कहीं चूक कर दी है। रिश्तों से ज्यादा महत्व उनके अपने समय को दिया, उनके दोस्तों को दिया। जब समझने की जरूरत थी तब शायद हम ही चुप रह गए, और या फिर हमने ही रिश्तों को उतनी अहमियत नहीं दी या उन्हें उस तरह से समझाया या उन्हें बताने की कोशिश नहीं की कि रिश्ते जो हैं हमारे कितने मूल्यवान हैं और इन्हें हमें बचाना है। तो कहीं ना कहीं किसी एक पे गलती थोपना गलत होगा। ये हमारी आपसी समझ का ही परिणाम है कि आज हम अलग अलग होते जा रहे हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। ये सफर है निशिगंधा का और आज निशिगंधा में हम बात कर रहे हैं अपने अपनों की, जिनसे हम कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। तो दूर जाने से पहले इन रिश्तों को मना लेना चाहिए, अपने पास बुला लेना चाहिए और समय निकाल कर अपने, मतलब जो अपने हमारे अपने हैं, उनके लिए सोचना चाहिए और ऐसे रास्ते निकालने चाहिए कि ये जो दूरियां हैं ये घट जाएं, कम हो जाएं।

हमारे अपने भी हमारी जिंदगी में इसी तरह से शामिल हैं। उन्हें रोक लेना है, उन्हें जाने नहीं देना है। हमारे छोटे छोटी सी कोशिशें रिश्तों को फिर से जोड़ सकती हैं। अगर परिवार में पार्टी हो तो मोबाइल बंद करके बैठ के देखिए, पुरानी यादों को ताजा करिए, एक दूसरे की समस्याएं सुनिए और अगर जरूरत पड़े तो बिना शर्त मदद के हाथ बढ़ा दीजिए। एक छोटे कदम से बड़ा बदलाव आ सकता है। बच्चों को बचपन से ही रिश्तों के महत्व को सिखाइए। रिश्ते खून से नहीं, व्यवहार से मजबूत होते हैं। आखिरकार जीवन की यात्रा में हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, अपने अपनों का साथ सबसे बड़ा सहारा होते हैं। अगर चाचा चाची, ताया ताई अजनबी बन गए तो फिर अपना कौन बचा? समय है कि हम इस अजनबीपन को तोड़ डालें और फिर से अपने बने। अपने अपने अजनबी बनने की ये जो प्रक्रिया है ना, ये धीमी जरूर है लेकिन बहुत ही खतरनाक है। इसे रोकना हमारे हाथ में है। परिवार की गर्माहट तभी बनी रह सकती है जब हम एक दूसरे को समय दें, सम्मान दें और प्यार दें। वरना भीड़ भरे घर में भी हम अकेले और अजनबी महसूस करते रहेंगे।

निशिगंधा का ये सफर कहता है कि आपसे यहीं इजाजत ले ली जाए। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार, बने रहिएगा आकाशवाणी के फिल्म गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर अपना फैसला सुनाया। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रूपये से बढ़ाकर 1,580 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। डॉ मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में खेले गए क्वालिफायर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 92 रनों से हराकर आईपीएल 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब ये सफर है गीत सुहाने का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ओल्ड क्लासिक्स। आपके साथ आज की रात मैं हूँ माधुरी।

बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग ये रहा और ये गीत था फिल्म दो आंखें बारह हाथ से लता जी की आवाज और वसंत देसाई का संगीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ये प्यारा सा जोशीला सा गीत सुना आपने गीता दत्त, महेंद्र कपूर, मुकेश मन्ना डे और साथियों की आवाज में फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म श्री 420 से।

हेमंत कुमार के आवाज में ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म अंजाल से। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं फिल्म आजाद से, आवाजें लता और उषा मंगेशकर की।

आप सुन रहे थे गीत लता जी की आवाज में फिल्म तीसरी कसम से और शंकर जयकिशन का संगीत था। अगला गीत हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म चोरी चोरी से, लता जी और मन्ना डे की आवाज है और गीत आप सभी के लिए है।

0: 90.
1: जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और ये जो सफर आपने तय किया, इसका नाम था गीत सुहाने। बहुत सारे प्यारे प्यारे गीत हम लेकर आते हैं इसमें आपके लिए, और एक आखिरी गीत इस सफर का बचा हुआ है, वो भी हम आपकी नजर कर रहे हैं। और ये गीत है फिल्म हावड़ा ब्रिज से आशा जी और मोहम्मद रफी की आवाज में, और गीत आपके लिए।

गीत सुहाने का ये सफर यहीं समाप्त होता है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। भारत ने कल नेपाल की सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 10 बंदी परिवहन ट्रक भेंट किए। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये वाहन नेपाल की सुरक्षा बलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की संचालन क्षमता को बेहतर बनाने में सहायक होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटीश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसलों को चुनौती देने वाली दोषियों की अपीलों पर अपना फैसला सुनाया। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाभाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाभाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। रेल मंत्रालय ने देश की पहली

जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और इस वक्त हम लेकर आते हैं कार्यक्रम रात सुरमई। रात सुरमई लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। नमस्कार। किसे आए नजर अंधेरे में, हाँ कोई है मगर अंधेरे में। एक दो पल को फिर से उभरा है एक दिया डूब कर अंधेरे में। इससे आगे जमीन हो शायद, सोचकर पांव धर अंधेरे में।

मोहब्बतें उल्फतें शिकस्ता, शिकस्ता दिल हसरतें शिकस्ता, रहे सहे ख्वाब टुकड़े टुकड़े, बची बची लज्जतें शिकस्ता, करार के लम्हे टूटे टूटे, सुकून की सांतें शिकस्ता।

धूप ने गुजारिश की एक बूंद बारिश की। धूप ने गुजारिश की एक बूंद बारिश की। लो गले पड़े कांटे क्यों गुलों की ख्वाहिश की। लो गले पड़े कांटे क्यों गुलों की ख्वाहिश की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 2:28 और हो गए हैं पूरे 30 सेकंड। बात लफ्जों के दरमिया रख जा, अक्ल वालों का इम्तहां रख जा। रूट कर सबसे जा रहा है तो दिल में झूठी तसल्लियां रख जा।

जो मेरा वो उसका गम हो, ये कैसे हो सकता है। शामो सहर का एक मौसम हो, ये कैसे हो सकता है। दिल में कुदूरत, जहन में नफरत और जुबां अंगारा हो, फिर लहजे का सुर मध्यम हो, ये कैसे हो सकता है। जज्बों का मासूम परिंदा उड़ता है हर मौसम में, रंजो खुशी में आंख न नम हो, ये कैसे हो सकता है। और दिल की बात समझने वाला कोई तो होगा, शहर ये सारा शहरे अजम हो, ये कैसे हो सकता है।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:30 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और ये सफर है रात सुरमई का। समय हो गया है 2:41 और पूरे 47 सेकेंड्स।

चंदन दास की आवाज में ये गजल जरूर पसंद आई होगी आप सभी को। दरवाजा बंद रखने से भी क्या मिला मुझे, आवाज दे रहा था तेरा रास्ता मुझे। दिल पे वही है बोझ, वही सुबह शाम है, फिर भी ये साल जाने क्यों अच्छा लगा मुझे। मैं खुद ही जान बूझ के नजरें चुरा गया, वरना तेरे सुलूक ने टोका तो था मुझे। अगलों की तरह उसको भी दावा था साथ का, ये और बात आज वो तन्हा लगा मुझे।

इसी के साथ रात सुरमय का ये सफर यहीं समाप्त होता है और दीजिए विदा माधुरी को। आप सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और कनाडा की आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय आपसी विश्वास पर आधारित होगा, जो दोनों देशों की साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा। कनाडा के टोरंटो में आयोजित मंत्रिस्तरीय पूर्ण अधिवेशन फ्रॉम पॉलिटिकल रीसेट टू कमर्शियल डिलीवरी को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ता विश्वास नए व्यापार और निवेश अवसरों के द्वार खोल रहा है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कहा कि भारत आने वाले 3 दशकों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोताबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोताबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली डीईएमयू रेल के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत जिंद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली आधारित ट्रैक्शन के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी क्षमता 1200 किलोवाट होगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पहले क्वालिफायर मुकाबले में 92 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्रतियोगिता में दूसरा क्वालिफायर मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर मैं हूँ आपकी दोस्त वंदना चुग हमराही कार्यक्रम में गीतों के साथ नमस्कार।

वाक्य में ही दोस्तों, जिसने इस दिल को और दिल के जज्बातों को समझ लिया, उसने सबका प्यार पा लिया। रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं लोग किसी से बात करते हैं, कोई प्यार से बात करता है तो कोई गुस्से से, लेकिन आपकी मीठी वाणी सुनने वाले के दिल को जीत लेती है। दिल एक मंदिर फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, सुमन कल्याणपुरी और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। हसरत जयपुरी की रचना थी और संगीत शंकर जयकिशन का। अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ पत्थर के सनम फिल्म से, ये गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

हसीना मान जाएगी। इस फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। अख्तर रोमानी की रचना थी और दोस्तों ये गीत था और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और अब वो गीत जो आपसे मैंने कहा था, धुन पहचान ली ना आपने, पत्थर के सनम फिल्म से ये गीत।

0: जब कोई इंसान किसी को चाहने लगता है तो देखा गया है कि उसे उसकी वैल्यू ही सब कुछ लगने लगती है, उसके बिना कुछ भी नहीं लगता।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है हमराही, और हमराही कार्यक्रम में गीतों के साथ मैं हूँ आपकी दोस्त वंदना चौक।

संजोग फिल्म से ये गीत था लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण की रचना थी और मदन मोहन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से। एसएच बिहारी की रचना है और ओपी नैयर का संगीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में।

शुक्रिया तो कहना ही पड़ेगा जब आपकी जिंदगी में इतनी कोई अमूल्य चीज आ जाती है। और अब एक और गीत सुनने का आनंद उठाते हैं।

संगम फिल्म से ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ। शैलेंद्र और हसरत जयपुरी की रचना थी, संगीत शंकर जयकिशन का।

सूरज फिल्म से ये गीत आपने सुना, सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। हसरत जय पुरी के बोल थे और शंकर जय किशन का संगीत। अरे अगला गीत ये रात फिर ना आएगी, फिल्म से आशा भोंसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ है। एसएच बिहारी की रचना है और ओपी नैयर का संगीत।

दोस्तों, कार्यक्रम के आखिर में आप सुनेंगे जंगली फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी की रचना है और शंकर जयकिशन का संगीत। पल पल के रिश्ते का वादा है आपसे, पल पल के रिश्ते का वादा है आपसे, अपनापन कुछ इतना ज्यादा है आपसे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सैर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय

न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नाव लेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने यह घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधानों के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और कनाडा की आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय आपसी विश्वास पर आधारित होगा, जो दोनों देशों की साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा। कनाडा के टोरंटो में आयोजित मंत्रिस्तरीय पूर्ण अधिवेशन फ्रॉम पॉलिटिकल रीसेट टू कमर्शियल डिलीवरी को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ता विश्वास नए व्यापार और निवेश अवसरों के द्वार खोल रहा है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कहा कि भारत आने वाले 3 दशकों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोताभाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोताभाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली डीईएमयू रेल के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत जिंद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली आधारित ट्रैक्शन के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी क्षमता 1200 किलोवाट होगी। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पहले क्वालिफायर मुकाबले में 92 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। रजत पाटीदार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में दूसरा क्वालिफायर मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर आपने ट्यून किया है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणिमा। और इस कार्यक्रम में आप सभी को गीतों को सुनवाने के लिए आ गई हूं मैं वंदना चुग। नमस्कार।

किसी की आवाज, किसी की बात आपके दिल की इतने करीब हो जाती है कि आपको लगता है ये हमारे जीने की वजह बन गई है। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आपने सुना बरसात की रात फिल्म से। साहिर लुधियानवी की रचना थी और रोशन का संगीत। अगला गीत आपकी खिदमत।

बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं तुझे इस जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं।

हकीकत फिल्म से ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज में, कैफी आजमी के बोल थे और मदन मोहन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे अंदाज फिल्म से, किशोर कुमार का गाया हुआ, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत।

दोस्तों, हर दिन की शुरुआत हमारे लिए नई होती है और हम सोचते हैं कि आज हम कुछ नया करेंगे और नया करके दिखाएंगे और अच्छा ही सोचेंगे।

0: दूर का राही इस फिल्म से ये गीत था किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज में। इरशाद की रचना थी और किशोर कुमार का संगीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: अरुणिमा इस कार्यक्रम में आप गीत सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर 100.1 MHz पर।

जिसमें ये कहा गया है कि आप कहीं भी चले जाएं, आपका दिल वहीं बसता है जहां आप रहते हैं। वैसे भी आप कहीं भी घूमने चले जाएं, लेकिन जब अपने घर आकर जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता।

जान ही गए होंगे श्री 420 फिल्म से ये गीत था। शैलेंद्र के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत आवाज वही जानी पहचानी मुकेश की थी। अगला गीत आप सुनेंगे कोहरा फिल्म से किशोर कुमार का गाया हुआ। कैफी आजमी ने गीत को लिखा है और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा और आप गीत सुन रहे हैं अपनी दोस्त वंदना चुप के साथ। दोस्तों, ये तो सच बात है ना कि जब इंसान के हौसले बुलंद होते हैं तो मंजिलें खुद ही कदम चूम लेती हैं।

दोस्तों, हम समझते भी हैं और जानते भी हैं कि हर इंसान के जिंदगी में दुख सुख के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन बहुत से लोग इन सब को हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं और परवाह किए बिना ही उन जिंदगी में आए थपेड़ों को सहन कर लेते हैं। और फिर जब वक्त बीत जाता है तो हमें खुद को भी एहसास होता है कि हम तो बहुत बड़े मंजर से गुजर गए। आपको बता दें, मेरी जंग फिल्म से ये गीत था, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। दोस्तों, बहुत से गीत हमारे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा देते रहे हैं और हमें देते भी रहेंगे। और बहुत बार किसी का मूड ठीक नहीं होता तो वहां भी हमें गीत ही याद आते हैं। और अगला गीत शोर फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश और साथियों का गाया हुआ है, इंद्रजीत सिंह तुलसी की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हर गीत में कोई ना कोई बात छिपी होती है और यहाँ भी ये गीत हमें कह रहा है कि हमें अपना स्वभाव ऐसे सम रखना चाहिए कि हर कहीं हम अपने आप को ढाल लें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। गृहमंत्री ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवास

0: शासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और कनाडा की आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय आपसी भरोसे पर आधारित होगा। ये दोनों देशों की साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा। कनाडा के टोरंटो में मंत्रिस्तरीय पूर्ण अधिवेशन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ता विश्वास नए व्यापार और निवेश अवसरों के द्वार खोल रहा है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कहा कि भारत आने वाले 3 दशकों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को पहले क्वालिफायर में 92 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। रजत पाटीदार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता के एलिमिनेटर मुकाबले में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से शाम 7:30 बजे से न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जिसका कोई नहीं होता, कहते हैं ना ऊपर वाला है और वही उसकी पालना करता है। वैसे तो सभी की पालना वही करता है, वही चिंता करता है,

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: भोर सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर 100.1 MHz पर अपनी दोस्त वंदना चौक के साथ। दोस्तों, हर इंसान अपने व्यवहार से ही पहचाना जाता है, इसलिए अपने कदमों के निशान आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छे ही छोड़कर जाएं।